आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि

0: भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाची वाडी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन। एक बड़े महान संत अपने हाइकू छंद में लिखते हैं, द्वेष से बचो, लवण दूर, दूध ना फटे। इसका अर्थ है कि हमें बुराइयों से, द्वेष से बचना चाहिए। जैसे दूध अगर छार से या नींबू से दूर रखा है तो वो फटेगा नहीं। वैसे उन्होंने यह भी कहा है कि पाप से बचना भी तो पुण्य ही है।

हम सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज़ में। हरिओम शरण के द्वारा ही लिखे गए इस गीत को मुरली मनोहर स्वरूप ने इसे संगीतबद्ध किया।

वंदना सुन रहे हैं आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना जगजीत सिंह की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान। आज आप इसका 206वां भाग सुनेंगे। कलाकार हैं शोभना राव।
1: पर सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आज इसका 9वां भाग हम सुन सकेंगे आमंत्रित कलाकार गायक एवं संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह और प्रस्तुति है अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे का समय होगा भूले बिसरे गीत का और 7:30 पर सुनेंगे हम कार्यक्रम हम है राही प्यार। सुबह का समय होगा भूले बिसरे गीत का और 7:30 पर सुनेंगे हम कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8 बजे का समय होगा समाचार प्रभात का। सुबह के 8:15 पर सुनेंगे कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। इसका 49वां भाग आज हम सुन सकेंगे। 8:30 पर चित्रलोक

सुबह की 9:30 पर एवं रात्रि की 9:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जो कि केंद्रित होगा संगीतकार पार्श्व गायक रविंद्र जैन पर। प्रस्तुति रमेश गोखले। सुबह के 10 बजे खुलेगा पिटारा, हेलो फरमाइश। संवादक है मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी। 11 बजे सुनेंगे रंग तरंग, 12 बजे का समय होगा हिंदी समाचार का। बारह बजकर 5 मिनट पर खुलेगी यादों की महफिल और दिन के ठीक 1 बजे सुनेंगे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। दो बजकर 30 मिनट पर सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। 3 बजे का समय होगा श्रोताओं और सखियों के पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। 4 बजे खुलेगा पिटारा गीतों भरी कहानी का, कहानी यादों की तपिश, इसका दूसरा भाग आज हम सुन सकेंगे। लेखिका है ममता सिंह, स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। शाम 5 बजे का समय होगा छाया गीत का। 5:30 पर तराने नए पुराने, 6 बजे का समय होगा समाचार का और 6:35 पर सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। 7 बजे फौजी भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम जयमाला और 7:45 पर सुनेंगे इंद्रधनुष गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल नाटिका आम्र मंजरी, लेखक हैं राममूर्ति चतुर्वेदी, निर्देशक रामा बाबा। 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम हम सुनेंगे। 9 बजे आपके लिए सुनेंगे यह कार्यक्रम। 10 बजे छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। 11 बजे का समय होगा कार्यक्रम रंग तरंग का। 8:00 आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम श्री रामचरितमानस का। सुनते हैं 336वां।

रावण का यज्ञ विध्वंस करने के लिए वानर भालू आ पहुंचे हैं, किंतु अपने उत्पात से जब वे उसे वेदी से नहीं उठा पाए तो उसके शरीर पर अपने भीमकाय दांतों और लातों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, किंतु उसका ध्यान तब भी भंग नहीं हुआ। वानर भालुओं ने तब वहां की स्त्रियों के केश पकड़कर महल से बाहर घसीटना आरंभ किया। रावण अब अपना धैर्य खो बैठा और उठकर वानरों के पैर पकड़ पकड़ कर उन्हें धरती पर पटकने लगा, किंतु इस प्रकार उसका यज्ञ तो भंग हो ही गया। रावण

अपनी सेना फिर से सजाकर युद्ध भूमि की ओर अग्रसर होता है। अब शकुन रूप में उसके सिर पर एक बार फिर घमासान युद्ध होने लगता है। युद्ध के बाद युद्ध, फिर और युद्ध। देवताओं का धैर्य टूटने लगा है। वे प्रभु से विनती करते हैं कि अब और विलंब न करके वे रावण का वध करें। श्रीराम अपना शारंग धनुष लेकर जब युद्ध के लिए अग्रसर होते हैं तो धरती डगमगाने लगती है।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की नौवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। एक समय था जब भजन से दिन की शुरुआत होती थी और एक ऐसा स्वर हम सुनते थे, वो है अनुराग सेन। और अनुराग सेन के नाम से

0: पे एक भजन बहुत प्रसिद्ध हुआ था, वृंदावन मत जाना। इस भजन को सुनते हैं तो हम सब अभिभूत होते हैं। अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, शेखर दादा से अनुरोध कर रहे हैं कि वो जो ओरे पथिकुआ तुम जइयो मत वृंदावन की ओर, अपने इस रचना के बारे में बताइए और इस रचना प्रक्रिया के बारे में बताइए और सुना दीजिए प्लीज।
1: ये दरअसल मेरे पहले भजन के एल्बम से समर्पण उसका नाम था
0: जी,
1: और उसमें से था। मैंने दरअसल विद्यापति जी का एक मैथिली में गीत सुना था और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। उसमें एक व्याज निंदा, व्याज स्तुति कहते हैं, जब आप किसी की निंदा करते हैं
0: जी,
1: जो साहित्यिक हो तो उसको हम कहते हैं व्याज स्तुति, और जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसको हम कहते हैं व्याज निंदा। जैसे जब कोई पत्नी अपने पति से कहती है अरे आप तो बहुत खराब हैं, तो इसका मतलब है वो कहना चाह रही कि आप बहुत अच्छे हैं, पर मैं खराब इसलिए बोल रही हूँ ताकि मेरी नजर ना लग जाए।
0: क्या बात है।
1: या हम किसी की तारीफ करते हैं उसमें बुराई छुपी होती है, कि एक लड़का देर से आया तो टीचर कहता है कि सी द मोस्ट पंक्चुअल बॉय ऑफ द क्लास। एक्चुअली वो बोल तो रहे हैं कि पंक्चुअल है, पर वो बता रहे हैं कि बेटा तुम पंक्चुअल नहीं हो, तुम 20 मिनट देर से आए। तो वैसे ही इस भजन में ये था कि वृंदावन के बाहर एक साधु बैठा हुआ है और हर एक वृंदावन जाने वाले से कह रहा है कि और कोई भी भूल करना पर वृंदावन मत कभी जाना
0: जी।
1: और अगर कभी चले गए तो कृष्ण से मित्रता ना करना, अगर मित्र भी हो गए तो फिर उनकी बांसुरी ना सुनना। तो इस तरह का ही वो पूरा प्रसंग है जो हर कड़ी में प्रश्न उछालता जी। है तो ये मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें राग मांड है जो हमारे राजस्थान की लोक परंपरा से निकल करके शास्त्रीय संगीत में आया।

0: वाह बहुत बढ़िया, बस ऐसे लग रहा है कि मंत्रमुग्ध कर दिया पूरे विविध भारती के स्टूडियो को और यहाँ मौजूद लोगों को। शेखर दादा अब बताइए इस कड़ी में
1: मैं
0: और
1: क्या
0: सुनूंगा।
1: कि एक और महान गायक जिनको हम मन्ना दा के नाम से जानते हैं,
0: जी
1: एक्चुअली उनका भी नाम मन्ना दा जो है ये उनका घर का नाम है मन्ना, क्योंकि बंगला में इस तरह के नाम मन्ना जैसे हमारे यहाँ मुन्ना कहते हैं उस तरह का नाम है। उनका जो मूल नाम था वो था प्रबोध चंद्र डे,
0: जी जी,
1: और मन्ना दा के नाम से या मन्ना डे के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। और उनकी एक रचना मैं चाहता हूँ फिल्म बसंत बहार की आप सुने, बहुत ही सुंदर, भय भंजना वंदना सुन हमारी।

0: अब इसके बाद दादा क्या सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं?
1: मैं चाह रहा था कि जो भक्ति संगीत में एक और अद्भुत परंपरा है
0: जी,
1: और वो है प्रार्थना की। और इसके लिए जो सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास है वो भी एक अमर गीत है, 1957 की एक फिल्म दो आंखें 12 हाथ, और उसमें लता जी और साथियों के स्वर में ये एक अमर रचना है, वी शांताराम जी की फिल्म, भरत व्यास जी के शब्द और वसंत देसाई जी का संगीत। मैं चाहूँगा हम लोग एक बार फिर से इस प्रार्थना में अपने भी स्वर जोड़ लें
0: जी।
1: ऐ मालिक तेरे बंदे हम,

0: अब इस गीत के बाद संगीत सरिता के इस कड़ी को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की नौवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

नमस्कार अलवर श्रोताओं, आसमान से आगे अंतरिक्ष की एक अनंत दुनिया है जो बहुत ही रहस्यमयी है। क्या आपने रात के आसमान को थोड़ी देर ठहर कर देखा है? वही आसमान जिसमें हमें छोटे छोटे चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उन टिमटिमाते तारों के पीछे कितनी बड़ी दुनिया छिपी है? हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में कितनी छोटी है, और फिर भी हमारे लिए यही छोटी सी पृथ्वी पूरी दुनिया है। श्रोताओं, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। यह सप्ताह हमें सिर्फ अंतरिक्ष की उपलब्धियों की याद नहीं दिलाता, बल्कि एक सवाल भी पूछता है कि इंसान आज धरती से उठकर अंतरिक्ष तक पहुंच गया है और आगे कहां तक जाएगा। तो आइए आज कुछ देर के लिए अपनी रोजमर्रा की दुनिया से बाहर निकलते हैं, मोबाइल, काम, ट्रैफिक और भागदौड़ से दूर, और चलते हैं उस दुनिया की ओर जहां दूरी किलोमीटर में नहीं प्रकाश वर्षों में मापी जाती है।

श्रोताओं, अक्सर हम कहते हैं हम पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हम सिर्फ पृथ्वी पर नहीं रहते, हम लगातार अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और हमारा पूरा सौरमंडल भी आकाशगंगा में गतिशील है। मतलब हम बैठे हैं लेकिन हमारी यात्रा लगातार जारी है। और मजेदार बात यह है कि हमें इस यात्रा का एहसास तक नहीं होता। यही तो अंतरिक्ष की खूबसूरती है, वह हमारे चारों ओर है लेकिन उसकी विशालता का अंदाजा लगाना आसान नहीं है।

दोस्तों, एक वो दिन था जब अंतरिक्ष में प्रथम उपग्रह भेजा गया था। इसके बाद इंसान ने अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ाए और इतनी तेजी से बढ़ाए कि फिर अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्षयान, चंद्रमा पर कदम, अंतरिक्ष स्टेशन, मंगल ग्रह की खोज। और आज हम ऐसे दौर में हैं जब अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला नहीं रहा, आज अंतरिक्ष हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। श्रोताओं, जब हम मोबाइल से किसी से बात करते हैं, टीवी देखते हैं, मौसम की जानकारी लेते हैं, किसी अनजान जगह का रास्ता ढूंढते हैं, किसी तूफान या चक्रवात की जानकारी लेते हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अंतरिक्ष विज्ञान और उपग्रहों की भूमिका है। तो अंतरिक्ष सिर्फ चांद और तारे को देखने का नाम नहीं है, अंतरिक्ष विज्ञान हमारी धरती को समझने में हमारी मदद करता है।

श्रोताओं, हमारा सबसे नजदीकी अंतरिक्ष साथी है चांद। चलिए चांद की बात करते हैं। चांद को हमने बचपन से देखा है, कभी दादी की कहानी में, कभी कविता में, कभी प्रेम के प्रतीक के रूप में। लेकिन विज्ञान ने चांद को सिर्फ सुंदर नहीं माना, उन्होंने कोशिश की है उसे जानने की। उसकी सतह कैसी है, वहां पानी के संकेत हैं या नहीं, क्या भविष्य में इंसान वहां लंबे समय तक रह सकता है, इन्हीं सवालों ने चंद्रमा की खोज को आगे बढ़ाया और भारत ने भी इस यात्रा में अपनी पहचान बनाई। श्रोताओं, भारत के चंद्रयान मिशन ने चांद को समझने की हमारी कोशिशों को नई दिशा दी। चंद्रयान 3, इसकी सफलता ने पूरे देश को गर्व से भर दिया। लेकिन असली कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, असली कहानी है लगातार कोशिश की। क्योंकि विज्ञान में हर प्रयोग सफल हो ये जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि हर प्रयास में कुछ नया सीखा जाए

तो श्रोताओं, अब बात करते हैं उस ग्रह की जिसने इंसान की कल्पना को हमेशा आकर्षित किया है, मंगल ग्रह। लाल रंग का ये ग्रह क्या कभी यहाँ जीवन रहा होगा? क्या कभी किसी दिन इंसानों की वैज्ञानिक बस्ती हो सकती है? आज इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। भारत का मंगल ग्रह मिशन भी इसी वैज्ञानिक यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय है।

श्रोताओं, अंतरिक्ष सप्ताह मनाने का उद्देश्य सिर्फ अंतरिक्ष की कहानी सुनाना नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि इंसान की जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं है। जिस इंसान ने कभी आसमान को देखकर सिर्फ तारों की चमक देखी थी, उसी इंसान ने आज उन तारों और ग्रहों तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी है।

ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हमारी रोज या खोज अभी बाकी है। इसी उम्मीद, इसी जिज्ञासा और कुछ नए सपनों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर, आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

वो कौन थी? इस फिल्म से सुन रहे थे आप ये गीत, आवाज लता मंगेशकर की। राजा मेहंदी अली खान का संगीत था और संगीत मदन मोहन का।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

कुमार सानू और साधना सरगम के युगल स्वर में आप सुन रहे थे जूम फिल्म से ये गीत। गीत इंदिवर का था, संगीत राजेश रोशन का।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे जूली फिल्म में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत राजेश रोशन का। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए। भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए।

0: हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जन सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
1: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जल आपूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
2: दूर दराज गाँव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गाँव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गाँव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
1: कि ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है तो दूसरी ओर सीमावर्ती गाँवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गाँवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गाँवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: गालिम लोशन दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग गालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी

0: 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के एमआरपी में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टनचावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
2: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-2471-234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सेना में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच 7:00 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रच्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्त

0: दिव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आए देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है, FM 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?

0: हैं? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

कार्यक्रम में अभी आपने सुनी है गजल जगजीत सिंह की आवाज में, और इस गजल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन भाई और मोतिम भाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, मेहनत हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
1: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: गाँव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते।
1: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
2: जी।
1: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताज़ा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
2: जी। आपने आगे लिखा है, दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ पांची के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
2: जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की।
2: जी हाँ श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
2: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक

0: प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
1: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
0: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क्कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
1: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
0: जी बिल्कुल। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
1: निमरेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है।
0: जी।
1: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं।
0: जी, यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
0: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
1: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
0: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
1: जी जरूर। हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं।
0: जी, तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
1: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था।
0: जी,
1: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
0: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
1: श्रोताओं, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
0: आपने कहा वाग देवी की प्रतिमा, यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा?
1: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है।
0: जी,
1: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
0: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओं, भारत की विविध भाषाएं हमारी सांस्कृतिक शक्ति हैं। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है।
0: और ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
1: जी हाँ बिल्कुल। तो आइए श्रोताओ, हम भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं।
0: क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख भेजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है श्रोताओं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी

0: सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
1: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।
0: सीखो, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण

0: यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962, जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
3: हाँ,
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोल देना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बना के रखेगा।
5: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहार।
5: सत श्री अकाल।
1: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
6: तेजा सिंह, और चाट बना दे यार, सवेर होगी।
7: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया।
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
5: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना,

0: मैं सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
1: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
2: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
3: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
4: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
5: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
4: कुसुमलता,
5: वीरेंद्र
4: और हमारी आज की विशेषज्ञ
5: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: केंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
0: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कैंसर दवाइयों की कीमतों में कमी के उद्देश्य से गैर अनुसूचित दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले मार्जिन पर सीमा तय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कल सभी पंचायत समितियों पर प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की जाएगी और बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति के दौरान जोधपुर में एयर शो आयोजित लड़ाकू विमानों और एरोबेटिक टीमों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले मार्जिन पर सीमा तय कर दी है, जो एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। इससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। अनुसूचित सूची में शामिल आवश्यक कैंसर दवाओं पर पहले से ही सरकार द्वारा निर्धारित सख्त अधिकतम मूल्य सीमाएं लागू हैं। वहीं ये नया निर्णय मार्जिन सीमित करके गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। उपमुख्यमंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने शिखर सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने राजस्थान में महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण, बालिका शिक्षा, पोषण और आंगनबाड़ी सेवाओं के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और नवाचारों की जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाने, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में कल जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है। जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में

0: जुर्मा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए किए गए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कोटा स्थित चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध बजरी खनन रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने कोटा प्रवास के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अवैध खनन रोकने के लिए संयुक्त कार्य योजना बनाने और गश्त बढ़ाने को कहा। साइबर थानों में मामलों की समीक्षा के दौरान उन्होंने बैंकों और पुलिस के बीच तालमेल बढ़ाकर साइबर धोखाधड़ी से पीड़ितों की राशि बचाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने न्यू सुधार के निर्देश दिए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अब बाघों के साथ साथ लेपर्ड की गतिविधियों पर भी अत्याधुनिक तकनीक से नजर रखने की तैयारी है। वन प्रशासन लेपर्ड की निगरानी के लिए साइलेंट डिवाइस और हाई ट्रैक सेंसर लगाने की कवायद कर रहा है। रणथंभौर के मुख्य वन अधिकारी मानस सिंह ने बताया कि इन उपकरणों के जरिए आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आने वाले वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी, ताकि ग्रामीणों को समय रहते सतर्क किया जा सके।
1: बहुत से ऐसे डिवाइसेज लगाए गए हैं, उनका हम परीक्षण और ट्रायल अभी कर रहे हैं, जिसमें एक सायरन डिवाइस है जो जैसे ही लेपर्ड का मूवमेंट होता है वो आसपास के घरों में सायरन बजता है और उनको एक बार सूचना मिल जाती है कि कोई लेपर्ड का मूवमेंट है, घर के आसपास चल रहा है। इसी तरीके से हम इंटीग्रेटेड लोकल एरिया नेटवर्क में जो हमारा कैमरा ट्रैप नेटवर्क है जो डेडिकेटेड सिर्फ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए होगा, उसको भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे ही कोई टाइगर या लेपर्ड का मूवमेंट होता है वो हमें मोबाइल फोन पर सूचना दे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कल सभी पंचायत समितियों में प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर होने वाली इन कार्यशालाओं में रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी संभावित प्रत्याशियों को नामांकन प्रक्रिया और चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों की जानकारी देंगे। साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका के बारे में भी बताया जाएगा। इससे पहले कल पंचायती संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण की लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में अजमेर, अलवर, जोधपुर, कोटा, नागौर और उदयपुर सहित 16 जिलों में जिला परिषद सदस्यों और 104 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। प्रत्याशी 13 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे, वहीं 15 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य के लिए मतदान 22 अक्टूबर को होगा, वहीं 24 अक्टूबर को पंच और सरपंच पद के लिए वोट डाले जाएंगे। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर चल रहे बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति के दौरान एयर शो आयोजित किया गया। एयरफोर्स डे पर रखे गए इस एयर शो में करीब 13,000 लोगों ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और एरोबेटिक टीमों का प्रदर्शन देखा। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 9 विमानों ने विभिन्न फॉर्मेशन बनाए, जबकि सारंग टीम के 5 हेलीकॉप्टरों ने भी प्रदर्शन किया। एयर शो में तेजस, राफेल, सुखोई 30, एमकेआई, एलसीएच, प्रचंड और F-16 विमानों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। एयर शो देखने पहुंचे स्कूली छात्रों ने इस अनुभव को यादगार बताया।
2: जैसा कि मैं खुद IAF में जाना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम हियर।
3: मेरा फर्स्ट टाइम है KV-2 AFS जोधपुर से, और यहाँ सारे अलग अलग जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स और फाइटर जेट्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल।
2: मेरे को जब उड़ते थे तब मैं सोचती थी ये तो बहुत छोटे हैं, लेकिन मैंने पहली बार पास से देखा तब मेरा एक्सपीरियंस सच बता रही हूँ बहुत ज्यादा अच्छा था। एकदम पास से देखे तब पता चला हाँ ये इतने बड़े होते हैं।
4: मेरा मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, कब से मतलब ये एक ड्रीम था कि मैं तरंग शक्ति में आऊँ कभी, मतलब यहाँ

0: मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, सहायक प्रोफेसरशिप या पीएचडी के लिए वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन 28 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कैंसर दवाओं की कीमतों में कमी के उद्देश्य से गैर अनुसूचित दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले मार्जिन पर सीमा तय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कल सभी पंचायत समितियों पर प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की जाएगी और बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति के दौरान जोधपुर में एयर शो आयोजित। लड़ाकू विमानों और एरोबेटिक टीमों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला।

0: 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए सुनते हैं स्पेशल सीरीज जनसेवा से देश सेवा की 22वीं कड़ी। ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आज हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज हम चर्चा कर रहे हैं हर घर बेहतर जीवन के बारे में और जिन अलग अलग पहलुओं की आज हम बात करेंगे उनमें एक साझा कड़ी दिखाई देती है। इनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शायद ऐसे हैं जो आंकड़ों में तुरंत दिखाई नहीं देते, चाहे वो पानी या ईंधन लाने में बचने वाला समय हो या फिर वो स्वच्छ ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ हो या फिर बिजली और बेहतर आवास से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियां हो। आज की हमारी चर्चा इन सब विषयों पर है और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग एंड पवन कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। जब भी कोई पॉलिसी अस्तित्व में आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
2: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में, पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट आपको, उसके लिए आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, देखते हैं क्या हुआ, कितना आया, कहाँ से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा या जो दूसरी और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका कितना फर्क पड़ा, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड बी 5 साल, कुड बी 10 ईयर्स ऑल्सो, बट 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने एक तरीके हैं, वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ, वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव लॉन्च्ड,
1: ताकि उसका प्रभाव न

0: नजर आए और बेहतर समझ में आए।
1: जी
0: डॉक्टर पॉल, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
1: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है, लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, फैसला हो गया
0: जी
1: कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अगले लेवल पे लेके जाएंगे, इसको बनाने का टाइम लगेगा,
0: बिल्कुल
1: 4-5 साल 3 साल लगते हैं बनाने में, इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे कवरेज, फिर क्वालिटी। तो कुछ चीजों में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द इनिशिएटिव, इट टेक्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू सी द इम्पैक्ट। लेकिन एट अ गुड बेंच मार्क इज, आई एग्री विद सर दैट 5 years इज अ गुड बेंच मार्क फॉर मेनी ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट will and have changed the ease of living for our families.
0: Okay.
1: तो उस benchmark से आपसे आगे बात बढ़ाते हैं।
0: जी बिल्कुल, और क्योंकि आज का जो विषय है वो हर घर बेहतर जीवन के बारे में है, तो शुरुआत घर से करते हैं। अब जब हम घर को परिभाषित करते हैं या हम आवास की बात करते हैं, तो क्या आवास को केवल एक छत के रूप में देखना चाहिए या फिर परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आधार के रूप में भी उसे देखना चाहिए?
2: घर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको घर में पहुंच के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप 5 दिन कहीं बाहर रहे, आप घर में जाए, घर से ज्यादा कहीं खुशी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हम जब घर बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें रहने की जगह होनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसमें घर में रहकर आप, आपके बच्चे हैं, आपके जो परिवार है उसकी देखभाल करिए आप। तो आप मेरे लिए घर जो है, इवन सरकार की स्कीमों के हिसाब से घर जो है केवल छत दे दिया तो वो घर नहीं है, पूरा एक होलिस्टिक आकार प्रकार है उसका, वो जब आपके पास है तो आप उसको घर बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
2: मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाह रही थी आप।
0: जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी और ये मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए पूछना चाह रही थी। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप पवन जी की बात से सहमत हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि भारत में कई दशकों से गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकारी आवास योजनाएं चलती आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने किन चुनौतियों को भापा या किन कमियों को भापा जो वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, या कौन से ऐसे गैप्स थे जिसे इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया?
2: पहले भी सरकार जो है वो आवास योजनाओं पे काम करती थी। इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, साथ ही साथ जो सरकार एक ओवर और होलिस्टिक एटीट्यूड जो पहले था उसमें पूरा एक कल्चरल इमोशनल चेंज लाया, उसमें चेंज लाया जिसमें बोला कि साहब ये आवास जो है ये, मैंने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है। तो पहले भी हम लोग गांव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पे कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ है, आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है, पैसा खत्म हो गया था। इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसमें बात को आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में। अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए डिग्निटी है, उनके लिए उनका रिकॉग्निशन है। अब सोचिए कि एक फैमिली के लिए ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब हमें पता चला कि अच्छा सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं है। उसमें डॉक्टर साहब से आप मेडिकल पे ज्यादा बात करेंगे, जैसे फर्ज करिए कि हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था, ये लोग उसके विद्वान है उस पर ज्यादा बात करेंगे। अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया, आप कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहां सांप बैठा हुआ है, दूसरे जानवर बैठे हुए हैं, बिच्छू है, जगह नहीं है, दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में
0: जी।
2: तो ऐसा नहीं, घर केवल उनके लिए अभी आज की तारीख में रिकॉग्निशन है, प्राइड है, गौरव का भाव है, उसके अलावा एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो पूरी चेन है, वो घर है इसलिए वो सबसे पहला तो उनको एक साहब अच्छा हमें घर मिला। अब जब घर देंगे अभी क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे आगे बिजली की बात करिएगा, सब सरकार के अलग अलग मंत्रालय निहारिका हो सकते हैं, वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं।

0: सारी मंत्रालय के जो चेन्स हैं वो जाके सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है, वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है। हम देखिए कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा। और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है, तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क पड़ा है। एक फर्क ये पड़ गया कि लोग कहते थे कि अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं कि हम कैसे रह रहे हैं, उनको इस भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे बराबर के आर्थिक समानता वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक बेहतरी आई है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ, वो उनके लिए अपलिफ्टमेंट का एक
1: यानी काफी लेयर्ड टर्म है। जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं। आपके विचार क्या है सर इस पे?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है। एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से घर में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया, हर घर नल जल की उन्होंने परिकल्पना करी। दूसरा है, और शायद उससे पहले आता है, कि टॉयलेट हो
1: जी,
2: घर में एक टॉयलेट हो, ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये। और हम इतना बड़ा काम हुआ है सिर्फ दीवार बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना, या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना, या उस तक का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को, तो अधूरी बात है। तो अगर हम ये दो चीजें देखें तो प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत गांवों में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया। उसके कितनी डायमेंशंस है, ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, आप उसके बारे में सोचिए। तो जो घर में जो बदलाव आया है, ये एक मुद्दे को अगर देखें तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है जो काम पूरा नहीं हुआ था
1: जी।
2: और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ूं तो पब्लिक हेल्थ का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है वो अच्छा पानी है और एक एनवायरनमेंट है जो कि सफाई वाला हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, और टॉयलेट आती है आसपास गांव में, सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है, तो जो जीवाणु है वो मुंह के रास्ते से, गंदगी से मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते। दस्त नहीं की बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए। यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में, अब सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और इसके फॉर्मल एस्टिमेट हमारे पास है कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में, तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी, और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरनमेंट से, सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है कि लाइव्स बच रही हैं और उनको नहीं दौड़ना पड़ रहा, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है कि डायरिया के लिए और दस्तों के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे कि हर घर नल जल से कितना ईज ऑफ लिविंग हुई है, वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा।
1: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे, दोनों की मेरा ख्याल से एक साथ बात हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और दूसरा असर वुमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए, और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो उसे पढ़ाई से, रोजगार से दूर रखता था, और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था। तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
0: कल्पना कीजिए सुबह सुबह के 6 बजे हैं और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से लौट के आना। ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज हमने किताबें पढ़ी, बाद में हमने पत्रकारिता की तो हमने देश के अलग अलग इलाकों में भी देखा, राज्य का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे। वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती थी, पति नहीं जाता था। पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था, वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी नियर का, जाना आना और तैयारी, ये वक्त ज्यादा लग

0: जाता था, एनर्जी जाता था। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
1: बिल्कुल।
0: तो आप देखिए कि क्या हालत क्या थी, वो सीन नहीं है। जैसे बुंदेलखंड के इलाके में, मध्य प्रदेश के बाकी और इलाके में, यूपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया, जल जीवन मिशन पे। ये जल जीवन मिशन, इसमें जो सफरिंग कम्युनिटी थी वो महिलाएं थी, पुरुष नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मैं ये कहूंगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट, महिलाओं के लिए टाइम खराब होता था, एनर्जी जाती थी, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, ये सब समय की बचत हुई। तो आप देखेंगे जल जीवन मिशन से न केवल क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम मच बेटर।
1: और शायद इसका जो प्रभाव है आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक नजर आएगा, इसका पीढ़ीगत प्रभाव शायद ज्यादा होगा। शायद हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को इतना ना मिले, लेकिन आगे जाकर, जैसे आपने शुरू में कहा था कि हर पॉलिसी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है,
2: इतना प्रभाव तो जिस दिन पानी आ गया
0: उस
2: घर की तो दशा उसी दिन बदल गई।
1: उसी दिन बदल गई।
2: अब देखिए मैं इसके एक आंकड़े से जोड़ता हूँ, पवन जी आपने जो बातें कही है, एक स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना इस काम का, मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा। उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करो, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक पे चल रहा था, उस टाइम पे एवरी सेकंड एक नया टैप वाटर नए हाउस होल्ड में पहुंच रहा था, एवरी सेकंड। इसका थोड़ा सा अगर मैथ्स करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, तो 86,000 टैप कनेक्शन एक दिन में लग रहे थे, 86,000 घरों में पानी लग रहा था। मैथ्स है ये, रिफ्लेक्ट कर। आप सोचिए लाइफ कितनी बदल रही थी। 86 घरों के साथ में एस्टीमेट है कि 3.5 लाख लोग उसमें रह रहे होंगे, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करिए। आप सोचो आज ये 3.5 लाख लोग पानी ला रहे हैं, जिंदगी और है, कल बदल गया। ये स्पीड है, तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका स्केल देखिए, स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में से सिर्फ 3.23 करोड़ 17% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और वो 17% था, और आज हमें 79% 80%। 17 से 80 की जर्नी, और रोज बदलाव हुआ होगा उस घर में एक दिन के अंदर छोटे ड्यूरेशन में, ये सोचने वाली बात। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली, मल्टीप्लाई करिए आप। और वो पता कितनी पॉपुलेशन है, आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ में जोड़ो आप ब्राजील की 21 करोड़, अमेरिका 33, ब्राजील 21, और फिर जोड़ो इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5-6-7 साल के अंतर अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, उतने बड़े हाउस होल्ड उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की। ये सर खास बात है जिस सरकार में, जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये काम हुआ है। और हेल्थ से जोड़ू अगर तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट्स हैं पब्लिक हेल्थ के। पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
1: जी,
2: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, पर्सनल हाइजीन से इसी से शुरू होता है। तो उसमें 4 लाख बच्चों की डेथ, अगेन बच्चों पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, 4 लाख डेथ जो है वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जो बुनियादी बदलाव है, उस घर की दशा बदल गई, और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
1: जी,
2: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई। ये दो मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
1: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था, इसको शुरू करने के पीछे का कारण और उससे आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
2: स्वच्छ हो भारत, गाँव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है, और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जाम्पल पैदा किया। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसमें एक टारगेट बांधा गया, टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटजी बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई, और सबसे बड़ी बात इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन जब बना तो असली चेंज जो है तभी होती है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है
1: जी।
2: ठीक है, आइडिया बन जाता है, वो रिफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया कि चलो पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए, लेकिन जब जनता जुड़ती है उस, तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समितियां हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखती हैं, उन्होंने देखा कि

0: इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो इतने स्केल पे इस तरह से जो काम हुआ है तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाया, राज्यों ने भी दिखाई, और उसको करने के लिए एक जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूंगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
1: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना का जिक्र करूं तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है भारत सरकार की सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना की क्या भूमिका रही है ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में?
2: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात की, अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो में, राइट
1: जी।
2: पर आरबीआई सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और पहले, लेकिन रफली 7 साल पहले आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूं, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही हूं तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के, अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको, कोने पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने, आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको उद्योग भवन के कोने पे, फिर आगे जाएंगे तो आपको नेशनल मीडिया सेंटर के कोने पे, वगैरह वगैरह। ये अपने आप नहीं आया है, सरकार आपको टॉयलेट बना के दे सकती है, सरकार आपको घर से उठा के टॉयलेट तक नहीं ले जा सकती। देखिए कुछ चीजें समझने की, हर बात के लिए हम सरकार को बोलें कि साहब आप ही जिम्मेदार हैं, ये सही तरीका नहीं है, ये रिजल्ट अच्छे आउटकम पे नहीं ले जाएगा। सरकार टॉयलेट बना के हमको दे सकती है, सरकार टॉयलेट में जबरदस्ती पकड़ के हमको नहीं ले जा सकती,
1: बिल्कुल
2: राइट। मेरा ये मानना है कि स्वच्छता में कम से कम आधा हिस्सा हमारा होगा, सरकार के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमारा हैबिट्स नहीं चेंज कर सकती, सरकार हमारा बिहेवियर नहीं चेंज कर सकती, सरकार को हमारे लिए एक टॉयलेट का प्रमोशन या जो भी स्वच्छता अभियान उसका प्रमोशन कर सकती है, लेकिन हमें उसमें शरीक नहीं करा सकती,
1: बिल्कुल
2: वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जो है वहां पे महिलाएं देती हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं जब घर की बात कर रहे होते हैं तो, कि उसमें पुरुष नहीं है, उसमें महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं। उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो इंश्योरेंस है, आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क पाएंगे दोनों,
1: अलग अलग नजरियों
2: दोनों के रिस्पॉन्स में, क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन की बात है। अब घर है तो घर में साहब बिजली है, आधा काम आपका खत्म, घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और भी 10 उपयोग है, मिक्सी कैसे चलाएगा, मिक्सी से चलाएगा, पहले आप लगे रहते थे सिलबट्टे पे
1: जी।
2: आधा घंटा आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे सिलबट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास, अब जिस स्कीम की बात आपने की है, जैसे बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ है अब, और जब पूरा रसोई का लैंडस्केप बदला हुआ है तो ये पूरी, आपको अगर इकोनॉमिक समझना हो तो किसी के रसोई में घुस जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिए, पानी है, रसोई है, बिजली है, घर में बिजली है, तो आखिर में जो सबसे बात, वो डॉक्टर साहब इस पे प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा, महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन अगर मान लीजिए सिला हुआ है, धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही होगी, झुंझला रही होगी, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी, अगर उसका लंग खराब है, मैं तो उसका विशेषज्ञ हूं, मैं केवल आपको इंडिकेटिव बता सकता हूं, फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा, वगैरह वगैरह। उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है, तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के आप उसके देखियो बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है जो
1: जनता
2: की कैटेगरी में जरूरत है, तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
1: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रास रूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
0: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में और फिर दो उसके बाद आए। पहली जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने

0: फिर क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको थोड़ा बाद में लाते हैं। हम पीएमजे की बात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत पड़े, या सेकेंड उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना, इन पेशेंट इलाज होना, आउट पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले, पहली बात एक्सेस हो, दूसरा है कि एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े
1: जी,
0: ये उसका मेन पर्पस है। अब सोचिए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टीमेट या 2014 के एस्टीमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टीमेट कहते थे कि हमारे देश में 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग 9 करोड़ लोग, डिफरेंट एस्टीमेट्स हैं, बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे
1: जी,
0: इतने लोग। और वो किस तरह से, और इंडिविजुअल पे जाइए कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है तो क्या होगा, या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो
1: जी।
0: और गए तो घर बेच के जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, गहना, तो ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है, जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद होके इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए, 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके ये सुनिश्चित कर दिया गया कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है, वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। अब ये बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है, इसमें मैं सिक्योर होता हूँ। और ये जब बीमारियाँ कवर हो रही हैं ना, उसमें कोई भी छूटी नहीं है, 1900 से ज़्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लग गई है उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डालनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15, इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं इन परिवारों को। तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से लोगों के, एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और अभी जो NSSO का साइकिल आया उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं हैं, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहाँ पे एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बार कोशिश करो डालने की, तो हर रोज़ लगभग 90,000 से 1 लाख लोग, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर। आजकल अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फायदा हुआ है। और उसमें मैं कहना चाहूँगा, मेल फीमेल का प्रपोर्शन पवन जी एग्जैक्ट
2: जी,
0: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए, या जितने कार्ड मेल्स के बने उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2 लाख करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया, वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब जो है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल, आप किसी भी तबके से हो उनके लिए भी 5 लाख का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है, और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है। लेकिन ये वो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक वाले हैं, डिप्राइव्ड है, उनके लिए नहीं है, ये सब के लिए है। तो एक ये ऐसा कार्यक्रम है, और ऐसी ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, जो कि आम जिंदगी को

0: बहुत बेहतर करता है और लाइफ बचती है और खर्चा बचता है।
1: और शायद पब्लिक हेल्थ पर जो तनाव रहा है इतने सालों से, शायद वो भी काफी कम हो जाएगा इन कदमों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से।
0: इन स्कीमों से, ये दोनों स्कीम अगर हम जोड़ें
1: जी,
0: कि यहाँ तो सेकेंडरी टर्शरी अंदर, फिर प्राइमरी केयर वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हम स्कीम को जोड़ें, जिसमें कि एक नया, एक जो हमारा सब सेंटर लेवल है 6000 की पॉपुलेशन के लिए, उनकी जो दवाइयाँ जो बढ़ गई हैं वहाँ पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ गए हैं, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वहाँ पे व्यक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो गया है, उन सब के वजह से हेल्थ केयर जो है वो लोगों के पास, क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं। क्या ये काम पूरा परफेक्ट करना है? हाँ। लेकिन इन सालों में व्यवस्था बन गई है और इसको सक्सेस करना, जैसे पवन जी ने कहा, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जनता को भी जुड़ना है। वो इन सुविधाओं का फैसला लें, वहाँ जाके बोलें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मेरा ब्रेस्ट कैंसर चेक करिए, मेरे 3 साल हो गए हैं, या पिछली बार आपने देखा मेरा डायबिटीज़ मैंडेटेड है हर साल चेक होना, जाइए वहाँ जाके लाइन में लगिए, आप भीड़ करो, उसका इस्तेमाल करिए, वहाँ टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से अगर हम देखें, तो एक्सेस बढ़ना एक फर्ज है उसमें, और एक्सेस हेल्थ का बढ़ने के साथ साथ जेब के ऊपर, मेरे पर्सनल खर्चे के ऊपर, मेरा फाइनेंशियली मुझे सिक्योर रहना है, ये दोनों को जोड़ते हुए एक बड़ा ही नोबल मिशन हुआ है, बहुत हद तक सक्सेसफुल है, बहुत हद तक आप भी आगे जाना है।
1: बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पवन जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये नवंबर 2023 में स्कीम आई थी, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं या जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम की, इस कदम की, इस योजना की क्या भूमिका है?
2: देखिए, फिर इसमें केवल ग्रुप बदला है निहारिका, आप मतलब बाकी चीज़ें तो सबके लिए है, ये केवल आदिवासी इलाकों में है, जिसमें सरकार ने आइडेंटिफाई किया था मेरे ख्याल से 72 या 75 कुछ जनजातीय ग्रुप थे जिनके लिए लॉन्च किया था वो, इसलिए क्योंकि वो और उनकी स्थिति और थोड़ी ज़्यादा विकट है। तो ये बहुत नया इस्टेब्लिश किया है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा असेस करने के लिए, लेकिन सरकार का इंटेंशन वही है, सरकार की ऑनेस्टी वही है, सरकार का ऑब्जेक्टिव वही है, केवल ग्रुप लोगों का डिफरेंट है। कुल मिला के इस पे बात करिए कि देखिए, जन सेवा की कसौटी जो सरकार काम कर रही है, जो पब्लिक सर्विस सरकार कर रही है, उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना है कि आम आदमी की जिंदगी में ये कितना बदलाव आया। इसमें ये भी आम आदमी है
1: जी।
2: जो अभी तक जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो बात हम कह रहे थे, वो सब आम ही आदमी के लिए है, राइट। इसमें ग्रुप केवल चेंज हुआ पड़ा है, पर ये सब आम आदमी, वो पूरा भीड़ जो है वो आम आदमी का है। आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, आपकी बातचीत का आज का जो है केंद्रीय तत्व यह है
1: जी।
2: और आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है और महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बात कह रहा था कि जो सोसाइटी अपने 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दे, उसकी चिंता नहीं करे, उसको छोड़ दे अपने हाल पे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस सरकार ने आके वापस ये केंद्र में इस डिमांड को, इस अटेंशन को वापस लाया है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल।
2: कवरेज क्या है? नंबर एक देखिए, आपको पता चलेगा उसको कवरेज, उसका यूसेज क्या है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं मेजरमेंट और अल्टीमेटली टेस्ट करने की बात कर रहा हूं कि सरकार जब टेस्ट करेगी अब से 5 साल बाद तो क्या होगा, कवरेज कितना है, यूसेज कितना है, इसका आउटकम क्या रहा है, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कल को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कल को ये नहीं कहेंगे साहब कि मैं ओपन डिफेकेशन में जाऊंगा, वो पूछेंगे कि हमारे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। उसको पता है कि साहब ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर में टॉयलेट चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं इसको नापने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा
1: जी।
2: इसीलिए बदलाव है, सरकार की सीरियस एफर्ट्स हैं, अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग इंपैक्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आम आदमी की जिंदगी में ढेर सारे बदलाव हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे ख्याल से इसमें और बेहतर हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा क्या? कोई नहीं,
1: कोई नहीं। बहुत खूब, मेरा ख्याल है इसी विचार के साथ हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा, और धन्यवाद आपका, आप दोनों हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े और हमारे स्टूडियो आए, थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया।

ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: मॉर्निंग दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। एक छोटी सी बात ना, हमेशा
1: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: उसमें भारतीयता की आत्मा झलकती है। रविंद्र जैन उर्दू शायरी और कविता के गहरे जानकार थे। एक उम्दा संगीतकार होने के लिए ये जरूरी भी है। वो भारत की सांस्कृतिक धार्मिक लोक परंपरा की गहरी समझ रखते थे, इसलिए विषयानुकूल संगीत सृजन करने में उन्हें महारत हासिल थी।

रविंद्र जैन की कई धुनें ऐसी हैं जो जब भी सुनाई पड़ती हैं अपने जादुई असर से हमें बांध लेती हैं। उनके शब्दों में, गीतों में कभी भी ओछापन या सस्ती तुकबंदी नहीं रही। रविंद्र जैन किसी भाव की मर्यादा क्या होगी इसके प्रति सजग थे। उनके गीतों में लालित्य है, भाषा और भावों का सौंदर्य है, और सौंदर्य है आंचलिकता का।

व्याकरण की मर्यादा तोड़ते, पहचान के लिए छटपटाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भौंडे फूहड़ प्रयोगों में सस्ती तुकबंदियों में कराते, शिष्ट से अशिष्ट होते, चीखते चिल्लाते, शोर करते और लगातार हमें मंत्रमुग्ध करते चले जाते हैं।

रविंद्र जैन ने एक ओर जहां फिल्म जगत के प्रतिष्ठित बैनर राजश्री की कई स्तरीय फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा, तो वहीं उन्होंने शोमैन राज कपूर के प्रतिष्ठित बैनर की फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

बल्कि उसकी परिधि और विराट थी। रविंद्र जैन ने गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम, भोजपुरी, बांग्ला, उड़िया, राजस्थानी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी संगीत दिया। इससे पता चलता है कि क्या थी उनकी प्रतिभा की ऊंचाई। हिंदी सिने संगीत को गायक येसुदास का अद्भुत स्वर मिला रविंद्र जैन जी के ही कारण। रविंद्र जैन गायक येसुदास को भारत का स्वर कहते थे। येसुदास जी ने रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में गाए कुछ बेहद लोकप्रिय और यादगार की

0: आज से पहले।
1: संगीत और अपना काम रविंद्र जैन के लिए पूजा की तरह था। फिल्म सौदागर के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इस हृदय विदारक समाचार के मिलने के बाद भी रविंद्र जैन पूरे समर्पण से रिकॉर्डिंग करते रहे। भीतर से बहुत विचलित, किंतु बाहर से वो यूं प्रदर्शित करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिल्म सौदागर रविंद्र जैन के सुरीले संगीत का एक और उदाहरण है।

फिल्मों के अलावा रविंद्र जैन ने कई गैर फिल्मी रचनाओं को भी संगीतबद्ध किया। इनमें भक्ति रचनाओं के अलावा कई दिलकश गजलें भी शामिल हैं। रविंद्र जैन ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अनेक लोकप्रिय धारावाहिकों को भी अपने संगीत से संवारा। इनमें से कुछ के नाम हैं अलिफ लैला, इतिहास की प्रेम कहानियां, लवकुश, दादा दादी की कहानियां और रामायण

कुछ प्रसिद्ध बैले कृतियां हैं महालक्ष्मी, दुर्गा, नृत्यमालिका, रामायण, कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण। रविंद्र जैन के संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं नदिया के पार, सौदागर, चित्तचोर, गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही जो पिया मन भा।

एक टेलीविजन चैनल के संगीत कार्यक्रम में उन्होंने महागुरु का दायित्व भी संभाला था। उनकी शायरी का एक दीवान भी प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था उजालों का सिलसिला। उनकी जीवनी का शीर्षक है सुनहरे पल। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से साहित्य और संगीत में अपने अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी जीवन संगिनी बनकर आई दिव्या जैन। रविंद्र जैन जी के सुपुत्र का नाम है आयुष्मान। 9 अक्टूबर सन 2015 को संगीत के साधक रविंद्र जैन ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। रविंद्र जैन सदैव याद किए जाएंगे अपने मधुर संगीत के लिए, मीठे गीतों के लिए।

0: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन पर केंद्रित ये कार्यक्रम। प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: है कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना है।
2: तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।

अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम। लेते हैं थोड़ा सा विराम।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
6: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
5: हाँ।
6: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
5: हाँ।
6: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
5: हाँ? पता नहीं।
6: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है, आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: कहते हैं कि अपने माता पिता के साथ रहो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा में स्वर्ग है, जन्नत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता को थोड़े थोड़े बातों पे दुख दे रहे हैं, कभी उन्हें थोड़ा दुख हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमारे सबसे ज्यादा दुनिया में दूसरा रूप भगवान का माता पिता होते हैं, और माता पिताओं के साथ में रहना ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा भविष्य है।
3: बहुत अच्छी बात आपने कही, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी होगी और निश्चित रूप से आपने भी अपने माता पिता का ख्याल रखा होगा।
2: जी हाँ
3: जी, बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
2: जिनका नाम है मिस्टर नटवर लाल, परदेश क्या ये सच्चे क्या, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया।
3: क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए, कौन बोल रही हैं?
1: जी दीदी, कहते हैं नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। मैं तेरी खुशबू हूँ, आरजे शबनम अब्बासी है मेरा नाम। दीदी
0: क्या बात है, क्या बात है, शबनम जी बोल रही हैं, आरजे हैं आप?
1: जी जी दीदी। दीदी आज आपसे बहुत टाइम के बात हो रही है, मतलब लगभग एक साल हो चुका है मुझे कॉल करे हुए दीदी। जी दीदी, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्या करें दीदी, मतलब पार्लर में हम काम करते हैं तो थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता।
0: कोई बात नहीं, तो अपना काम पहले है ना, काम ही तो पूजा है। आप अपना काम कर रही हैं, वो आपकी रोजी रोटी होगी।
1: दीदी आपकी आवाज़ जब गूंजती है तो ये दिल करता है बस जल्दी से दीदी से बात हो जाए।
0: आवाज़ तो आपकी भी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी लग रहा है कि मैं आपसे घंटों बात करती रहूं।
1: थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमारे पार्लर में रेडियो बजता रहता है, हम सुनते रहते हैं, कस्टमर भी सुनते हैं।
0: क्या बात है, तो एक बात बताइए, कस्टमर के साथ किस तरह से व्यवहार करती हैं आप?
1: जब हम प्यार से उनसे बात करते हैं, जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं, जब हम प्यार से बात करेंगे तो वो हमारे पास दोबारा आएंगे। हम उनका मतलब जैसे पहले आते हैं तो हम उनको पानी पिलाते हैं, फिर प्यार से बात करते हैं, पूछते हैं ठंडा लोगे या गर्म लोगे, तो हमें हमारे पास वो जरूर आते हैं दीदी।
0: क्या बात है, जब आप प्यार दोगे तो लोग आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि प्यार बांटने से आपको सम्मान और प्यार वापस मिलता है ना?
1: ये देखो, बड़ा हो ये छोटा हो, जब हम प्यार देंगे तो प्यार लेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: ये फिल्म का नाम रहेगा दिल तेरा आशिक, उसका टाइटल सॉन्ग है, यही सुनवा देना दीदी।
0: आइए सुनते हैं ये बड़ा मस्ती भरा गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: हम राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: जी बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: मैम जी हम तो बस अभी तो ड्यूटी चल रही है हमारी।
0: ड्यूटी चल रही है कहाँ?
1: जो लाइसेंस बनते हैं, हाँ, गाड़ियों के वाहन के, चाहे चार पहिया हो या दो पहिया हो या जितने बड़े वाहन हो, सभी के जो बनते हैं
0: वो काम करते हैं?
1: नहीं, इसमें ड्यूटी चल रही है।
0: अच्छा, क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपकी ड्यूटी के?
1: ड्यूटी तो खैर इसमें तो अभी तो चालू होने में बता रहे हैं कि इस महीने बाद चालू हो जाएगा, अभी तो हम अकेले ही हैं, बाकी 24 घंटे रहना पड़ता है मैम जी।
0: बहुत कठिन काम है ये तो, फिर परिवार के साथ समय बिता पाते हैं?
1: नहीं मैम जी, हम अकेली हैं, परिवार तो हमारा अंत है।
0: तो दैनिक दिनचर्या क्या रहती है आपकी?
1: दैनिक दिनचर्या यही रहती है कि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, टहलते हैं, टहलने में और काम भी करते रहते हैं मैम जी।
0: और अपने स्वास्थ्य और अपनी दिनचर्या का कितना ख्याल रखते हैं?
1: बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं कि अगर जैसे अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है तो ना ज्यादा धूप है, ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा सर्दी है, मीडियम सॉफ्ट है। जब मौसम बदलेगा तो हानिकारक तो होगा ही मैम जी। नींद भी पर्याप्त समय पे लेते हैं, जैसे 7 से 8 घंटे नींद तो जरूरी है मैम जी।
0: बिल्कुल अच्छी बात है। तो बताइए गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप?
1: मूवी का नाम है सौदागर, जाने के बोल है, तेरी याद आती है।

0: जी तो लाइने हैं, फोन पे इजाजत हो आपकी?
1: सुनाइए।
0: जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की बात है, जो मुस्कुरा के जी ले आज को उसका कल भी उसके साथ है।
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आपका जुमला श्रोता नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। मुंडा जी,
0: नाम क्या है आपका?
1: बालाजी दोनकले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। नांदेड़ से हमारा गांव 60 किलोमीटर है।
0: अच्छा, नांदेड़ से 60 किलोमीटर अंदर है आपका गांव?
1: ओहो, ग्राम विभाग का खेड़गांव है।
0: क्या नाम है?
1: खंडा गांव।
0: अरे वाह, बड़ा सुंदर नाम है।
1: अभी तो नया तालुका है, नया गांव, उसमें खंडगांव गांव है।
0: अच्छा, तो बताइए अपने गांव के बारे में।

0: बारे में, कैसा है आपका गांव?
1: काशी सब आदमी, सभी गांव, सभी किसी के सुख दुख है, कौन सा ही कुछ दुख आया शादी के लिए, कुछ अनेक अनेक जो अलग कार्यक्रम है कुछ है, तो सभी आदमी मिलके करते हैं, कोई वाद नहीं, संटे नहीं, कोई नहीं, सभी आदमी इलेक्शन हो या कौन सा ही कारण हो, एक दिन में न हो कि सभी आदमी एक तरफ बैठ के सभी कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम, बहुत अच्छे आदमी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर आज भी ये मानवता जिंदा है, सब मिलकर रहते हैं।
1: वो मंदा जी
0: जी,
1: आपने जो आज के फन करे ना कार्यक्रम, क्या बढ़िया कार्यक्रम है, और मंचे है जीत,
0: वो भी अच्छा लगता है आपको?
1: हो, और सेहत नामा का डॉक्टर है ना, उसकी जानकारी मिलती है हर दवा के बारे में, हमारे ग्रामीण भाग में हर टाँडा वस्ती वाले में डॉक्टर का इंचार्ज क्या कर रहा है क्या नहीं, सब सुख दुख के कारण में सभी पहुँचते है ना।
0: बहुत अच्छी बात कही, सेहत नामा में आपको पूरी जानकारी दी जाती है, और उस डॉक्टर से हम ये भी कहते हैं, जो भी डॉक्टर साहब आते हैं, कि हमारे ग्रामीण तबके के लोग भी इसे सुन रहे हैं, तो कृपया उस बात को इस तरीके से समझाइए कि हमारी ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण बच्चे भी उस बात को समझ पाए।
1: और इसके लिए जो महिला का जो तुम्हारा सखी सहेली ना, हमारी महिला, हमारी पत्नी सभी मिलके वो कार्यक्रम सुनते हैं, हेलो सखी,
0: सखी सहेली भी सुनते हैं, अरे वाह क्या बात है, हेलो सहेली सुनते हैं, है ना,
1: तो
0: बहुत अच्छी
1: पूरा जानकारी मिलती है ना हर आदमी की, हर कहाँ से फोन लगा, कुछ मैडम ने हमारे जो बहन रहते हैं धन, उन्हें कहाँ से बात कर रहे क्या नहीं, सब मिलते है ना हमारे लेडीज को।
0: हाँ बिल्कुल मिलता है, खुराक मिलती है आपको, मानसिक खुराक देता है विविध भारती आपको, है ना।
1: वो भारत का सबसे बड़ा लोकप्रिय चैनल बोले तो देश में कहाँ भी जाओ।
0: चलिए आपकी खुशी को हम महसूस कर रहे हैं, आप कितने खुश हैं विविध भारती को सुन के। अब बताइए कौन सा गाना आपके लिए आज पेश करें?
1: गोरा और काला धीरे धीरे बोल कोई,
0: सुनिए ये प्यारा सा गीत, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी दीदी, हम ग्राम किड़ाउत कंजर डेरे से बात कर रहा हूँ। मैं देवास जिला मध्य प्रदेश से।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: संतोष जी हाड़ा।
0: कैसे हैं आप? संतोष रखते हैं अपने जीवन में?
1: जी जी दीदी, आप लोगों का शुक्र है, बिल्कुल संतोषी है।
0: बस यही होना चाहिए ताकि जो है जीवन अच्छे से चले। क्या करते हैं आप संतोष जी, बताइए?
1: खेती गृहस्थी करते हैं दीदी।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में, क्या बोया है?
1: जी दीदी, सोयाबीन बोया था, अभी कटाई हुई है 4 दिन पहले।
0: और सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं?
1: नहीं, अब सोयाबीन की कटाई हो गई है, हम अब गेहूं, चना, लहसुन, प्याज की तैयारी करेंगे।
0: अच्छा, गेहूं, चना, लहसुन, प्याज की तैयारी करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले की तैयारी क्या होती है, जब आपको लगता है कि अब तो हमें खेत में ये बीज डालने हैं, तो किस तरह तैयार करते हैं आप अपने आप को?
1: दीदी इसमें क्या होता है, पहले तो 2 से 3 बार खेत को हाँकना पड़ता है, उसके बाद में रोडा रोटर एक मशीन है जो उसको मिट्टी को बिल्कुल एक में कर देती है, उसको ढाक के और फिर हम सरिया बना के पालियां, और उसमें जैसे लहसुन बोना है तो उसको चौपाई होती है, प्याज की चौपाई होती है, और गेहूं चना तो डायरेक्ट मशीन से डाल देते हैं और उसमें पानी छोड़ के पैदावार करते हैं।
0: मौसम खेती बाड़ी के लायक है?
1: हाँ, खुला है और हमारे इधर सूखा घोषित हो गया है दीदी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी गिरा था बरसात में, हमारे सोयाबीन पैदा हो गए और होल अभी से ही कमजोर चल रहे हैं।
0: अच्छा,
1: ऊपर वाला यदि पानी गिरा देता है तो बहुत फायदा हो जाएगा, जो हमारा देवास जिला है उसमें बहुत पानी कम है।
0: अच्छा, पर हिम्मत नहीं हारनी है आपको, मन छोटा नहीं करना है।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: हाँ। चलिए गाना बताइए, कौन सा सुनेंगे?
1: बंटवारा फिल्म का है दीदी, अरे वाह तेरे ढोला नैन मेरे जागे
0: रे जागे। अरे वाह, ये गाना मुझे इतना पसंद है, आपने तो मेरी पसंद का गाना ही कह दिया यार। चलिए आपके साथ मैं भी इस गाने को जरूर सुनूंगी, आपको आपकी पसंद का गीत हम सुनवा देते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जम्मू कश्मीर सोना मार्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: लतीफ जी स्वागत है आपका। मौसम कैसा है बताइए?
1: यहाँ आज तो मौसम लगे बहुत गर्मी है, दिन में तो गर्मी रहता है, सुबह शाम ठंड रहता है।
0: तो ठंड कितनी रहती है? स्वेटर पहनना पड़ता है, शॉल ओढ़ना होता है या चलता है थोड़ा सा?
1: नहीं, वार्मल तो पहनना पड़ता है सुबह शाम, तो दिन में तो बहुत गर्मी रहता है, पसीना आ जाता है इतना गर्मी।
0: दिन की गर्मी परेशान कर देती है। आप क्या करते हैं लतीफ जी?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या है आपके खेत में अभी?
1: आज तो सरसों का बुआई करते हैं यहाँ पे।
0: अच्छा, और कुछ नहीं होता?
1: होता है, तो फसल की कटाई खत्म हो चुकी है ना सितंबर का महीने में, धान और मक्के की।
0: अच्छा, खेत में ही रहते हैं दिन भर?
1: नहीं, बाकी काम कर लेता है ना, जैसा अखरोट का अभी गिरी का मौका है, अभी गिरी निकालते हैं, अखरोट ये पैकिंग करते हैं, ऐसा ऐसा रहता है।
0: कैसे निकालते हैं अखरोट की गिरी, थोड़ा बताएंगे हमें?
1: ये थोड़ा निकालते हैं ना अखरोट, उठाते हैं उसमें तो दो फाट गिरी निकालते हैं, वो निकालते हैं, तो फिर डब्बा में भरते हैं।
0: अच्छा, कोई मशीन होती है?
1: नहीं, हाथ से निकालते हैं।
0: अरे?
1: पत्थर पे। हाँ।
0: अच्छा, कितने अखरोट को तोड़ लेते हैं?
1: बस ये लगभग एक क्विंटल किसी को निकलता है, एक क्विंटल किसी को निकल जाता है, 40-50 किलो ऐसा ऐसा रहता है।
0: तो एक बात बताइए, जैसे अखरोट को जब हम तोड़ते हैं, हल्का हल्का एक नट क्रैकर आता है, उससे हम दबाते हैं तो टूट जाता है ना? आप कह रहे हो हाथ से करते हैं?
1: हाँ, हाथ ही, वो तो हल्का हो, उसको उतना ये नहीं होता है, छिलका पत्थर पे रखते हैं, फिर तो हथेड़ी से दम मारते, वो तो तोड़ जाता है, फिर उसमें गिरी निकालते हैं।
0: तो गिरी चूरा भी नहीं होनी चाहिए निकालते समय, इस बात का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना?
1: बहुत ध्यान रखना पड़ता है,
0: बहुत मुश्किल काम है ये भाई।
1: अब तो मशीन आया ना इसका, उससे भी तोड़ते हैं।
0: चलिए, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही मुश्किल काम करते हैं आप।
1: बहुत मुश्किल, मेहनत तो अब यही है, रोजगार,
0: बिल्कुल
1: मेहनत करनी पड़ती।
0: आपने समय निकालकर विविध भारती आप सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
1: हाँ, सही बात, मैं दिल से सुनता हूँ, पिटारा ज्यादा सुनता हूँ, हेलो फरमाइश, सेहत नामा प्रोग्राम बहुत पसंद भी करता हूँ। सारे प्रोग्राम सुबह से लेके शाम तक प्रोग्राम आते हैं, वो मैं सुनता रहता हूँ, आज की फनकार भी सुनता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत खूब। गाना बताइए जो हम आपको सुनवाएं आपकी पसंद का।
1: फिल्म का नाम है किंग अंकल, लता मंगेशकर की आवाज में है वो, इन जहाँ की तुम्हारी आंखें।
0: तो बहुत ही प्यारा गीत सुनना चाहते हैं, हम मिलके सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: जिलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से मुकेश जी बोल रहा हूँ।
0: क्या करते हैं मुकेश जी?
1: भाई टू व्हीलर गाड़ी जो है सीट कवर के काम है।
0: तो क्या डिजाइन वाले बनाते हैं सीट कवर? आजकल तो कई तरह के डिजाइन आ गए हैं सीट कवर में मोटर बाइक के।
1: डिजाइन वाले बना देते हैं और ज्यादा प्लेन पसंद करते हैं।
0: प्लेन पसंद करते हैं? अच्छा, कपड़े का या वो जो वेलवेट आता है उसका या किस तरह?
1: वो लेदर के आते हैं अलग से, वो सीट कवर बनते हैं जो पानी वानी नहीं जाते हैं। लेदर वाले भी बनते हैं, सीट कवर वेलवेट वाले भी बनते हैं।
0: ज्यादा कौन से प्रचलन में है?
1: ये सीट कवर ही जो नॉर्मल आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं जो।
0: अच्छा, पर एक बात बताइए मुकेश जी, जब मैं स्कूटी चलाती थी तो उसमें ये जो सीट कवर नायलॉन के होते थे, या ये गर्मी के दिनों में तो हम बैठ ही नहीं पाते थे। जब बाहर आए ऑफिस से और हमने अपने स्कूटी या मोटर बाइक स्टार्ट की तो इतनी गर्म सीट हो जाती थी कि कई बार पानी डाल के ठंडा करना पड़ता था पहले उसे।
1: अभी क्या एक नेट वाला कवर आ रहा है, जाली वाला, वो लगाते हैं गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में।
0: हाँ,
1: कुछ तो जाली वाला आता है जो वो थोड़ा ठंडक रहता है, उसमें गर्म नहीं होती।
0: ये पते की बात कही आपने, क्योंकि वो सीट कवर इतना गर्म हो जाता था कि उससे तो कई दिक्कतें आ जाती थी और आदमी ढंग से चला भी नहीं पाता था दुपहिया वाहन। तो ये बदलाव आ गए हैं और आप बनाते रहते हैं तरह तरह के। तो कितने बना लेते हैं एक दिन में सीट कवर?
1: ये मेरी दुकान है, गैराज के ऊपर है। गैराज जितने आए, जितने टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का काम करता हूँ, ऑटो के हुड वुड में सीट कवर ये भी बनाता हूँ।
0: तो फोर व्हीलर के जो सीट कवर बनते हैं या टू व्हीलर, इसमें कुछ अंतर होता है जो आप नहीं बना पाते हैं? या
1: सीटें बड़ी होती है, गाड़ी खड़ी रखने की भी जगह होनी चाहिए। हमारी छोटी दुकान है, छोटी गाड़ी टू व्हीलर आराम से खड़ा रह जाता है, दो गाड़ियाँ तीन गाड़ियाँ चार गाड़ियाँ खड़ी रह जाती है आराम से। उसके लिए जगह की भी स्पेस चाहिए ज्यादा।

0: बड़ी गाड़ियों के लिए
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए, आप तो उदयपुर में रहते हैं, झीलों की नगरी में, कैसा गाना सुनना पसंद करेंगे?
0: उदयपुर में फिल्माया गया गाना है राजपूत का।
1: कौन सा?
0: मेरे संग संग आया यादों का मेला।
1: अरे वाह, ये उदयपुर में फिल्माया था।
0: उदयपुर राजस्थान किशोर कुमार।
1: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, अभी अच्छा है। मैं कम से कम एक महीने से प्रयास कर रहा था मैडम, तो इसके बाद इतना ब्रस्ट तो आज लगा है, तो बड़ा मुश्किल से लगा था, बेचारा अच्छा हुआ लग गया मैडम। और सबसे पहले आपको दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, आने वाले छठ पूजा की ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: अरे इतने सारी शुभकामनाएं एक साथ दे दी, कहाँ रखेंगे हम?
1: क्या बोलते कि खुशी में रखिएगा, बांटते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल, आपको भी सभी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, पर्वों की। क्या करते हैं आप चंद्रभान जी?
1: मैं साउथ ईस्टर्न कोर्ट फील्ड में नौकरी करता हूँ मैडम, और नौकरी पीरियड में कई केंद्रों में फोन करता हूँ, लाइव फोनिंग करके मैं जुड़ता हूँ, रिकॉर्डिंग में जुड़ता हूँ, ईमेल में जुड़ता हूँ, बड़ा मोबाइल में बात करता हूँ, छोटा मोबाइल में प्रसारण सुनता हूँ, सभी केंद्र का सुनते रहता हूँ। बहुत केंद्र का मेरा प्रसारण आया मैडम, और आपके केंद्र में लगा बहुत अच्छा लगा। आज मैं दिशा मूर्ति में मनोरंजन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम, और गीत के बोल है खींच मेरी फोटो, गायिका है नितिन मोहन, दर्शन रावल और अन्य गायक हैं।
0: तो आप सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्ते जी।
0: नमस्ते,
1: नगर से बात कर रहा मच्छिंद्र हरिदास चांडवले। मैं को जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट का, तो पहली पहचान करने वाली अपनी गुरु होती है माता जी, उसके बाद पिताजी होते है, पिताजी के बाद शिक्षक होते है, शिक्षक के बाद जो अपने को आध्यात्म वाला जो गुरु मिलता है उसको हम बोलते है, जो अपने आँख पे जो मोती बिंदु की पट्टी रहती वो निकलने वाला गुरु मांगता जिंदगी में, तो वो सही रहती वो माँ, सब सुख दुख झेल के सब काम करके अपने को छोटे से बड़ा करती। तो आप उन सबका कर्ज अदा कर सकते, माँ का दूध का कर्ज जिंदगी में कभी अदा नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो।
1: हमारे माँ से पिताजी से जो संस्कार आए ले, हमने हमारे माता जी पिताजी को कभी नहीं बोले।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने मच्छिंद्र जी।
1: अभी मेरा वीर भारती का दुकान में कार्यक्रम चालू है, मेरा टेलर काम का बिजनेस है, तो मैं ये बिजनेस कर रहे ले 50 साल से,
0: स्कूल
1: में चौथी में से था जब तक, तो आज तक लेके हम विविध भारती बचपन से सुन के बड़े होते आए ले। और आप जो लोग जो कार्यक्रम करते हैं, एक से एक तक का सही सब कार्यक्रम, मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम त्रिवेणी, मैं को जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी, सबसे पहले तो जबलपुर मध्य प्रदेश संस्कार धानी से प्यार भरा नमस्कार।
0: किसका?
1: अभिषेक सिंह ही बोल रहा हूँ मैम। सबसे पहले तो दीदी, मैं सभी विविध भारती परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको मैं जो स्थापना दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
0: चलिए, अच्छी बात है, हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बताइए, क्या आपने वो स्थापना दिवस का जो लाइव ब्रॉडकास्ट था 11 बजे से शाम 4 बजे तक?
1: शानदार, बहुत ही शानदार प्रोग्राम थे, बहुत ही अच्छा लगा। दिन भर बहुत ही आनंद आता रहा, हम तो दिन भर चालू करके लगातार सुन ही रहे थे। जो प्रस्तुति थी और जिन कलाकारों को बुलाया गया दीदी, बहुत ही काबिले तारीफ। विविध भारती में राष्ट्रीय सेवा परिवार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी ऐसी ही चीजें आती रहे, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: आपने उसमें अपने विचार प्रकट किए थे, कुछ लिखा किसी विशेष के लिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, शिरकत की थी?
1: जी, सभी सभी प्रोग्राम में जितने भी लाइव चल रहे थे सभी में कमेंट और सभी में किया हुआ। दीदी, मैं नियमित श्रोता फेसबुक से भी जुड़ा रहता हूँ, हर प्रोग्राम हर पोस्ट पे आपको कमेंट रहेगा दीदी।
0: हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लगभग जो कार्यक्रम है वो श्रोताओं को फेसबुक से हम लोग जुड़े रहते हैं और तब करते हैं, तो आपकी जो टिप्पणियाँ हैं, संदेश हैं, वो बहुत जरूरी हो जाते हैं किसी खास प्रोग्राम के लिए जब वो लाइव हो।
1: जी।

0: बहुत ही अच्छे प्रोग्राम थे।
1: तो हम भी अपने सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमें संदेश भेजते रहे और हमारे इस खुशी में वो भी शामिल थे क्योंकि उन्हीं की है विविध भारती। बताइए अभिषेक जी, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: 1989 की पिक्चर है भ्रष्टाचार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया, आनंद बख्शी जी के बोल है और अनुराधा पोरवाल और सुरेश वाडेकर जी ने गीत को गाया है, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं।
1: आइए सुने आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222-8670288, 0224-00-24662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम। लेते हैं थोड़ा सा विराम।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। कलाम था राजेश रेड्डी का, मौसिकी पंकज उदास की, एल्बम का नाम था नबील।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओ टी

0: मिताली मुखर्जी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: जागीर को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो।
1: छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है, हमें तो इन हसीनों की नजर ने मार डाला है। नजर जो उठी तो दुआ बन गई, नजर जो झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। नजर जब उठी मेहरबान हो गई, नजर जब मिली तो जवां हो गई, जो पलटी तो दिल की जबां हो गई, जो बदली तो एक दास्तां हो गई। नजर से हमने नजर को एक दिन नजर मिलाते नजर से देखा, नजर जो पहुंची नजर तक उनकी नजर।

झूठा तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा हर तमन्ना हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी जफा झूठी, सितम झूठा करम झूठा, कसम है सर से लेकर पांव तक तू ऐ सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा, तुम्हारा काम झूठा, तुम्हारा मैं कदा

से बढ़ के कोई बेमुरवत नहीं, प्यार करने की अब हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें

0: दिलावर बाबू और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये कव्वाली।
1: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
1: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
2: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।

0: अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। रेखा भारद्वाज की आवाज है ये।

0: रेखा भारद्वाज की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे संजय आनंद झा। आइए अब सुनते हैं सनसेट पॉइंट एल्बम से भूपेंद्र की आवाज में ये रचना। रचना है गुलजार की, संगीतकार विशाल भारद्वाज।
1: रात कच्ची पड़ रही थी, कोई पंछी पास के पेड़ से उड़ा।
0: ये आवाज गुलजार की है।
1: आसमान की तरफ निकल गया। वो पुल के उस किनारे पर आकर खड़ी हो गई जहां से अगला कदम जिंदगी का आखिरी कदम था। एक भोले भाले भेड़ के बच्चे ने उसे रोक लिया। गडरिये भटकी हुई भेड़ों को राह दिखाते हैं, ईसा भी यही करते थे। उसका हाथ पकड़ के वो उसे अपने घर ले गया। अरे ताल से पानी सूखा है, आसमान तो नहीं सूख गया? फिर मेघ आएगा, फिर जल भरेगा। चल

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जगजीत सिंह की आवाज थी, जावेद अख्तर के बोल थे। इसी के साथ आज का रंग तरंग प्रोग्राम खत्म होता है।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी।

0: में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद को 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 4,876 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है, जबकि तमिलनाडु में सत्ताधारी मधुरांतकम में टीवीके और धारापुरम में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक

0: ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा के मधुरांतकम और दारापुरम उपचुनावों में सत्ताधारी टीवीके पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को चार हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में EDAR, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने का अनुमान है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 72,381 पर, जबकि निफ्टी 254 अंक की बढ़त के साथ 22,486 पर था। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। सिलसिला फिल्म का गाना है अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल हैं, शिव हरी का संगीत।
3: मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती,

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम, लेते हैं छोटा सा विराम।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
4: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है, आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अनजान के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गाना है ये। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं।

0: खूबसूरत फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, शब्दकार थे गुलजार, संगीतकार राहुल देवबर्मन। विविध भारती से ये है कार्यक्रम यादों की महफिल। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म उमराव जान, आशा भोसले की आवाज, शहर यार के बोल, खयाम की तर्ज़।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

इजाजत फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। ये घर फिल्म का गाना है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
2: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं।

जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: सौतन की बेटी इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। रचना थी सावन कुमार की, संगीतकार थे वेदपाल। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़ें, ताकि फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके।

इन प्लेटफॉर्म में EDAR, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। इनके जुड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और इंश्योरेंस के रिकॉर्ड और पहले के क्लेम का इतिहास आसानी से शेयर किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और पीएम राहत स्कीम भी शामिल होंगी। कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रसन्ना बी वराली

के EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कुछ इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमुखों को कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। प्रदेश में कल तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ में 3 और जयपुर पीठ में 4 विशेष लोक अदालतों का गठन किया गया है। पाली में भी न्यायालय परिसर स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें बिजली बिल, चेक बाउंस, बैंक ऋण और अन्य भुगतान से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश में 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डाक दिवस का उद्देश्य डाक विभाग की पारंपरिक सेवाओं के साथ डिजिटल बैंकिंग, बीमा और पार्सल सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अलवर डाक मंडल की ओर से इस दौरान रैली, क्विज, पत्र लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता, डाक चौपाल, वित्तीय समावेशन शिविर तथा नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे। भरतपुर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही नए डाक बचत और बीमा खाते खोलने तथा आधार संबंधी जागरूकता गतिविधियां हुई। वहीं करौली जिले के सपोटरा उपखंड के करनपुर और मंडरायल के दुर्गम डांग क्षेत्र में डाक विभाग ग्रामीणों तक सेवाएं पहुंचा रहा है। पहाड़ी रास्तों और दूर दराज की बस्तियों में डाक पहुंचाने के साथ विभाग बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में भी मदद कर रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज बूंदी के साइबर थाने का निरीक्षण कर वहां की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वे एक दिन के दौरे पर बूंदी पहुंचे थे। साइबर थाने में जिला कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा सहित जिले के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर जिला प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौराहों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने की कार्य योजना बनाई है। इनमें रामबाग सर्किल, जेडीए चौराहा और ओटीएस चौराहा शामिल हैं। कार्य योजना के तहत जेडीए, नगर निगम, पुलिस, यातायात विभाग और स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। ये अभियान 30 अक्टूबर तक चलेगा। रामबाग सर्किल और जेडीए चौराहे पर अभियान आज से शुरू हुआ, वहीं ओटीएस चौराहे पर कल से इसकी शुरुआत होगी। डीग जिले में रबी फसलों की बुवाई से पहले कृषि विभाग खाद बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों और गोदामों का निरीक्षण कर रहा है। अब तक 13 विक्रेताओं के गोदामों की जांच की गई है। इस दौरान मूल्य और स्टॉक सूची प्रदर्शित नहीं करने तथा किसानों को बिल नहीं देने पर संबंधित विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कृषि हब्बल सिंह ने विक्रेताओं को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराने और कालाबाजारी तथा टैगिंग से बचने के निर्देश दिए। विभाग ने किसानों को सरसों की बुवाई में डीएपी के बजाय सिंगल सुपरफॉस्फेट और यूरिया के उपयोग की सलाह दी गई। करौली में 70वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। पीएम श्री स्वतंत्रता सेनानी चिरंजी लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो रही इस प्रतियोगिता में 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के लिए 622 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में दौड़ सहित विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाएं आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: क्या किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का लिख दो।

डाके डाक लाए भाई, किसके यहाँ अभी भी डाके आते हैं और चिट्ठी ले आते हैं? हमारे घर तो आते हैं और हमें तो आज भी इंतज़ार रहता है चिट्ठियों का, पत्रिकाओं का, किताबों का। आपको इंतज़ार रहता है क्या? इंतज़ार कीजिए और आप कुछ ऐसा कीजिए कि डाकिया आपके घर आपके दरवाजे पर दस्तक दे। थोड़ी स्टाइल बदल गई है इस गाने में, डाकिया साइकिल से आ रहे हैं और लोग दौड़ रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। पैदल भी आते हैं, बाइक से आते हैं, ऑटो रिक्शा से आते हैं। बहरहाल इंतज़ार कीजिए तो डाकिया आया करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ चिट्ठियाँ आती रहें तो पहले आप तो लिखिए चिट्ठियाँ। किसको लिखते हैं आप चिट्ठी, और क्या आज भी कभी किसी मौके पर चिट्ठी लिखते हैं? कुछ ख़ास त्यौहार हैं जहाँ पर बगैर चिट्ठी के काम नहीं चलता है, जैसे कि राखी का त्यौहार है। बहन भाई को चिट्ठी ज़रूर लिखती है, भाई बहन को चिट्ठी ज़रूर लिखते हैं। आप कब किन मौक़ों पर लिखते हैं? एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अतीत के गलियारे खोल दिए और मैं हॉस्टल की यादों में खो गई। कैसी चिट्ठियाँ सभी की आती थी और हम सब बेल बजाने का इंतज़ार करते थे, चिट्ठियाँ लेने के लिए उत्सुक रहते थे। जिनकी चिट्ठी नहीं आती थी वो निराश हो जाती थी। हॉस्टल वार्डन हमेशा आश्वासन देती थी कि कल ज़रूर पत्र आएगा। तो अब ज़रा बताइए कि ये जो इंतज़ार वाला लम्हा है, बहुत सारी फिल्मों में भी है। किस फिल्म में खत पढ़ने वाला दृश्य है? किस फिल्म में आपने देखी कोई फिल्म जिसमें कि पत्र का इंतज़ार हो रहा है? और वो गाने भी सुझाते चलिए, वो फिल्में भी सुझाते चलिए। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी थे इस फिल्म में, बहुत त्वरित जवाब दिया है। एक श्रोता ने शिकायत लिखी है, भाई पत्र में शिकायतें भी लिखी जाती थी, जैसे कि बहुत सारी बातें, अरे आपने तो चिट्ठी का जवाब जल्द नहीं दिया, इतने दिन हो गए और आप तो आए नहीं, और हमने कितना इंतज़ार किया, और भी बहुत सारी शिकायतें होती। आप कौन सी शिकायत किया करते थे? हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि दो बार डाला कमेंट लेकिन किसी को दिख ही नहीं रहा, शायद आपको भी नहीं दिख रहा है ममता जी। मैं क्या करूं, ऐसा दो तीन दिन में एक बार होता ही है। भाई हमें तो दिख गया, लेकिन शिकायत के अलावा कोई बात भी तो लिखिए कि हम श्रोताओं तक आपकी बात पहुंचा दें चिट्ठी से जुड़ी हुई। एक श्रोता ने लिखा है कि तेरा खत लेके सनम पांव कहीं रखते हैं हम। फिल्म के इस गाने में नायिका चिट्ठी पढ़कर बेहद खुश है। कभी कभी किसी की चिट्ठी आने पर इस तरह की खुशी मिलती है, और दरवाजे बंद कर ऐसे ही हाव भाव हुआ करते थे और किसी के सामने नहीं पढ़ना होता था, उसे छुपाकर ही पढ़ा जाता था, क्योंकि चिट्ठियां भावनात्मक लगाव से जुड़ी होती थी और आँखों को पनीली कर देती थी। तो बताइए ज़रा कि आपने कौन सा पत्र ऐसा पढ़ा है कि आपको छुपाने की ज़रूरत पड़ी? किसको लिखा था वो पत्र कि आपने छुपाया? हालांकि बहुत सारे पत्र छुपा कर लिखे जाते थे। बहरहाल चिट्ठियों में फूल भी भेजे जाते थे और गुलाब की पंखड़ी चिपकाई जाती थी, और एक विद्यापत्ति आती थी वो भी चिपका दिया जाता था जब कुछ पढ़ने लिखने की बात होती थी। आपने कभी गुलाब या कोई फूल चिपका कर भेजा है? ज़रा बताइए। ये तो फिल्म का नाम तो आप बूझ गए, सरस्वती चंद्र। इसमें कौन है हीरोइन? हीरोइन का नाम बूझना है आपको, चाहे तो हीरो का नाम भी बता सकते हैं।

फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। बहुत सारे श्रोताओं से हमने पूछा कि भाई आपने भी कभी फूल भेजा था, तो अभी तक तो जवाब नहीं आया, लेकिन अगर हाँ आपने कभी पत्र में फूल रखकर भेजा था तो ज़रूर बताइए। और फूल मुरझा जाते थे लेकिन उसकी खुशबू बाकी रहती थी, जब कभी कई साल बाद वो चिट्ठी निकाली तो उसमें मुरझाया हुआ फूल, लेकिन ऐसे लगता था वो ताजगी वापस लौट आई है, वो खुशबू वापस लौट आई है। हमने पूछा था कौन है हीरोइन, नूतन। सभी श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया, और मनीष और साथ में सुलोचना भी है इस फिल्म में। एक श्रोता ने लिखा है कि बस कुछ ही लम्हों के बाद लाजवाब प्रस्तुति में सुरीला सफ़र शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही शुरू होगा ममता जी द्वारा पूछे जाने वाले एक से बढ़कर एक दिलचस्प सवालों का सिलसिला। तो हम भी कमर कस के आपके पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हैं, तो फिर दीजिए उत्तर फटाफट। और जब ये हम पहली पूछते हैं तो पहली का जवाब तो आप फटाफट दे ही देते हैं, साथ में ये भी बताते चलिए कि चिट्ठी आप अभी भी लिखते हैं या नहीं, किसका पत्र आपके नाम आया और बड़ा लंबा हुआ करता था पत्र, क्योंकि कई लोग पत्र लंबे लिखने के आदि होते हैं, कि जैसे किसी के घर में भाई होते हैं लंबा पत्र लिखते हैं, कुछ कविताएँ भी उसमें लिख देते हैं, कुछ थोड़े से किस्से भी बयां कर देते हैं, बहुत तफसील से और फुर्सत से पत्र लिखते हैं। ऐसा कोई पत्र आपके पास है, संभाल कर रखा है, आपने कोई चिट्ठी संभाल कर रखी है तो ज़रूर बताइए। अब जो श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा पूछा जाने वाला पहला प्रश्न शायद यही होगा कि बताइए अपनी पहली बार सबसे पहले खत किसको लिखा था। क्या बात है भाई, ज़रूर बताइए। और अब दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि बताइए आपने विविध भारती में कभी कोई पत्र लिखा है, बिल्कुल ये भी हम पूछ रहे हैं। और हमारी ओर से जो आप सवाल कर रहे हैं ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर बताइए, क्योंकि हमने तो विविध भारती के नाम पत्र लिखे थे, पत्रावली कार्यक्रम में शामिल भी हुआ था, तो आपकी कोई याद है तो ज़रूर साझा कीजिए। और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भी आप पत्र लिखते ही होंगे तो वो भी आप बता सकते हैं।

और आगे इन्होंने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गीत सुनाए जा रहे होंगे और हम भी आनंदित होकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और शुरू से आखिरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि डाकिया जो खाकी वर्दी में होते थे, बरोठे की कुंडी खड़खड़ाकर जोर की आवाज लगाते थे। सारे घर के लोग सब काम छोड़कर घर के दरवाजे पर दौड़ पड़ते थे, किसकी चिट्ठी है, किसके नाम आई है। फिर डाकिया एक एक करके जो पोस्ट आती थी दे देकर चले जाते थे। फिर सब पहले चिट्ठी पढ़ते थे, बाद में बाकी काम। और बहुत अच्छी बुरी खबर देने का काम तार करता था। पति या घर के और आदमी जो बाहर काम करते थे तो पहली तारीख को मनी ऑर्डर का इंतजार बड़ी सब्री से होता था। वो हड़बड़ाहट, वो बेचैनी, वो सिर्फ एक डाकिया की वजह से ही संभव होता था। पर अब वो जमाना कहाँ, एक सेकंड भी नहीं लगते खबर पैसा और हालचाल आदान प्रदान करने में। बिल्कुल सही बात है, रक्षाबंधन में राखी हो या भाई दूज में टीका, सब डाकिया ही बाहर पहुंचाते थे। और डाकिया का बड़े बेसब्री से इंतजार होता था। डाकिया का लोग स्वागत करते थे उन्हें, गाँव में तो बाकायदा गुड़ की डली ले आते थे, गुड़ और पानी पिलाया करते थे। कई लोग दरवाजे पर अपने खाट बिछाकर उनका स्वागत करते थे। अगर कोई अच्छी खबर ले आते थे तो उनके साथ देर तक गुफ्तगू होती थी। फिर पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर सुनते थे पत्र। पढ़ने वाला कोई एक होता था, सुनने वाले सभी, और सबकी आंखें नम होती थी। कोई अपने आंचल से आंसू पोंछ रहा होता था, कोई रुमाल से। बहरहाल बहुत सारी यादें, आप अपनी यादें साझा कीजिए। और अब अगला गाना ये

कि वो खुशबू से भरी चिट्ठियां महका देती थी रोम रोम को, संवेदनाओं से भरे शब्द कितने सुकून भरते थे। और हाँ, हर रोज 11 बजे पोस्टमैन का इंतजार सबको रहता था। और एक श्रोता ने बताया है कि उपन्यास गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी के उपन्यास से बनी फिल्म थी सरस्वती चंद्र। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ज़्यादातर खत मामा जी को राखी पर भेजती थी और मुझसे लिखवाती थी। उसमें सबसे पहली लाइन होती थी, आदरणीय मामा जी, यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा करती हूँ वहाँ भी सब कुशल मंगल से होंगे, मुझे बहुत याद आता है वो सब। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं एक बंगालन हूँ, सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के पत्रावली कार्यक्रम में चिट्ठी लिखने के लिए मैं अपने आप बगैर हिंदी की कोई औपचारिक तालीम के हिंदी सीखी, वो भी विविध भारती सुन सुन कर। क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ज़्यादा उस दौर में आने वाले हल्के पीले रंग का पोस्ट कार्ड और उसके साथ जवाबी पोस्ट कार्ड भी साथ में आते थे, जब पोस्ट कार्ड को अन्य व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। अंतर्देशीय पत्र जो नीले रंग का चारों तरफ से पैक हो जाता था, उसे दूसरा नहीं पढ़ सकता था। इसके अलावा बैरंग चिट्ठी, ये एक सफ़ेद कागज़ पर लिखे जाने वाला अपनी व्यथा का पत्र होता था, जिसका पेमेंट पेनल्टी के रूप में जिसके पास पहुँचता था वो अदा करते थे। कई बार बहुत आर्थिक तंगी के कारण भी कुछ चिट्ठियां बैरंग आती थीं जो आपको अदा करना पड़ता था, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाम अभी भी पत्र आते हैं, वे बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने कार्य में बहुत ही कुशल हैं वो जो चिट्ठी पहुंचाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सगाई और शादी के बीच 6 माह का गैप होने के कारण हम दोनों का पत्रों का सिलसिला चला, वो चिट्ठियां हमने आज भी सहेज कर रखी, उस लिफाफे को हमने दिया है अमोल्य निधि और 36 बरस हो गए। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अमीन साहनी साहब को पत्र लिखा था। और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं अपनी बातें, अपने जज्बात। तो आप भी अगर आपने नहीं लिखा तो लिखिए और ज़रा बताइए फिल्म का नाम और कौन है हीरो हीरोइन। लिखे जो

कन्यादान फिल्म का ये गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन। शशि कपूर और आशा पारेख हैं और सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया है। इधर हमने सवाल पूछा नहीं कि उधर जवाब आने शुरू हो गए। वही साथ में अपनी बातें और यादें भी साझा करते चलिए कि किनके पत्र आपने संभाल के रखे हैं। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमने तो आज भी कुछ चिट्ठियाँ संभाल के रखी हैं, क्या आपने भी रखी हैं? वैसे जब ये बात आती है संभाल के रखने की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब जगह नहीं बची है। भाई बाकी चीज़ों के लिए आपके पास जगह है लेकिन किसी की लिखी चिट्ठी के लिए जगह नहीं है। किसके पत्र आपके पास ज़्यादा आते थे ज़रा ये बताइए, सहेलियों के पत्र, पिता के पत्र, पति का या फिर किसी और का? क्या एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे को पत्र लिखा है? कई बार एक ज़माना था जब लड़कियां बहुत जल्द से घर से नहीं निकलने पाती थीं तो वो पत्रों से अपनी बात एक दूसरे से अपनी सहेलियों से साझा करती थीं। क्या आपने भी ऐसा किया है? एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पास मेरे पापा जी का पत्र है, अब वो नहीं है पर पत्र में उनकी यादें हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज छत्तीसगढ़ के एक डाकिये की याद आ गई जो ठीक 11 बजे आया करता था। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मैंने विविध भारती के नाम पत्र लिखे मनचाहे गीत में, अब तो पोस्ट कार्ड आसानी से नहीं मिलते हैं और पत्र वाला डब्बा भी नहीं मिलता है, मतलब पोस्ट बॉक्स भी आसानी से नहीं मिलते हैं। भाई अगर शौक है तो विविध भारती के नाम तो आप पत्र लिख ही सकते हैं। वैसे भी अभी लंबी तादाद में श्रोताओं के पत्र आज भी आते हैं मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो पहली बार और सिर्फ एक ही खत मेरी दीदी ने मेरे लिए भिजवाया था मेरी छोटी बहन के हाथों। वो खत आज भी मेरे पास है पर अब न ही मेरी दीदी मेरे साथ है न छोटी बहन। मैं जब भी उसे पढ़ती हूँ आँखें नम हो जाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपका खत मिला फिल्म शारदा रामेश्वरी पर ये फिल्माया गया हुआ है, मतलब जो मैंने पूछा था कि कोई फिल्म की सिचुएशन जहाँ पर खत है पत्र पढ़ा जा रहा है, हकीकत फिल्म में भी एक दृश्य आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात बहुत हंसी की है, मैं आप सबको लेकिन बताऊँगा। उस समय 16 बरस का रहा होऊंगा, मैंने एक लड़की को चुपके से एक पर्ची में कुछ लिखने के बाद उस पर्ची को किसी बच्चे के हाथों उस लड़की को देने के लिए कहा, लेकिन वो पर्ची लेकर उस लड़की की मम्मी को दे आया। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसे विषय को आज आपने छेड़ दिया है जिससे 90% श्रोताओं का अतीत जुड़ा हुआ है, अतः सभी अपने अतीत को खंगाल अनुभवों को साझा करने में जुटे हुए हैं। तो ज़रा जल्दी अतीत को साझा कीजिए क्योंकि अब घड़ी की ओर देखिए 1:30 हो रहे हैं, तो अब आधे घंटे और हैं आपके पास। जल्दी जल्दी अपनी अतीत की बातें साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है पत्र, गांव से शहर पढ़ने आया तब घर वालों से खत के द्वारा ही संदेश का आदान प्रदान होता था और तब उन संदेशों का बड़ी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता था। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको बूझना है एक बार फिर कौन है हीरो कौन हीरोइन।

तीन देवियां फिल्म का गाना था और सभी श्रोताओं ने सही बूझा है, देव आनंद और नंदा पर फिल्माया गया था ये गाना और सचिन देव बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी का गीत था। और बहुत सारे श्रोता अपनी यादें साझा कर रहे हैं, सचमुच हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी यादें और बातें पढ़ते हुए और आपको पढ़कर सुनाते हुए। ऐसे लग रहा है कि हम भी कोई पत्र लिए हैं, पढ़कर सुना रहे हैं और आप सभी हमारी आंखों के सामने, माइक्रोफोन के सामने बैठे हुए हैं विविध भारती के स्टूडियो में। सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो काफ़ी पत्र उनको लिखा है, मतलब हमारे एक श्रोता ने लिखा है, ये लिखी है ये बात बहुत पहले, पर वे उन्हें संभाल कर रखे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये एक तरफा डैश डैश डैश रहा है। भाई पता कर लेना चाहिए था ना चिट्ठियों के माध्यम से। एक श्रोता ने लिखा है कि आर्मी में ड्यूटी के दौरान अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली इलाकों में घर वालों की चिट्ठियां बहुत देर से मिलती थी, पढ़ने के बाद सुकून मिल जाता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि फरमाइशी कार्यक्रम में एकमात्र पत्र लिखा गया जो शामिल भी हुआ था आकाशवाणी ग्वालियर में। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेरे साथी दोस्तों के पत्र ज़्यादा आते थे, हम जब पढ़ाई करते हुए स्कूल से कॉलेज गए तब बिछड़ गए थे। इस समय हम एक दूसरे को खत लिखा करते थे। एक श्रोता की टिप्पणी है, जब मेरी शादी होकर राजस्थान गई, दिल्ली से मम्मी पापा खत लिखते थे, मैं भी उन्हें लिखती। मेरी माँ बाबूजी के खत आज भी मेरे पास संभाल कर रखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक मेरे कमेंट ना पढ़ें कोई बात नहीं, पर विविध भारती से शिकायत वाला पत्र तो पढ़िए,

दो अन्य बहनों ने भी विविध भारती के अक्षम में लापरवाही बताई है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि ये शिकायती प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको विविध भारती के किसी कार्यक्रम से शिकायत है तो कृपया मेल पर आप शिकायत भेज सकते हैं। ये तो सुरीला सफ़र इसका नाम है, सुरीली बातें सुरीली गाने। अगर हाँ इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई कोई बात है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हम शामिल करें ना करें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई बात हम ज़रूर शामिल करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने आज भी अपना अपॉइंटमेंट लेटर संभाल कर रखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अब कोई पत्र नहीं भेजता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमने तो सबसे ज़्यादा पत्र लिखे अपने दादाजी को, वो बहुत रोते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैंने प्यार किया फिल्म देखी थी तो वो कबूतर वाले गाने को देख कर हमने पोस्ट कार्ड को कबूतर के आकार में काट कर चाचा चाची को पत्र लिखते थे। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, खत के बारे में मेरी एक याद है जो बहुत ही मजाकिया है। एक लड़के ने मुझे खत लिखा था और मैंने पढ़ने के बाद उसको जमीन में दबा दिया था। उसके बाद मैं भूल गई वो जगह कहाँ थी। क्या बात है भाई, लगता है घर वालों से छुपाई होगी बात। बेहतर बात ये होती कि आप घर वालों को बता देती कि ये पत्र आया है फलाने की ओर से, या जो भी नाम था। बहरहाल चलिए, अब बहुत सारी बातें आ रही हैं और हम गानों के बीच बीच में पढ़ते जाएंगे। ज़रा ये गाना सुनिए और बूझिए कौन है हीरो कौन है हीरोइन। फिल्म का नाम तो बता ही सकते हैं आप।

शक्ति फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत था, अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया था ये गाना। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया है इसका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब ख़त की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है, जिस पर हमारी आँख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा तुझे कागज़ वही हमने लिखा कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई, अब ज़माना और है, ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए ही मोहब्बत का इजहार हो जाता है, लेकिन उसमें वो रूह नहीं। आज भी हम ख़त पर विश्वास करते हैं, माँ पिता का पत्र

0: प्रेमी या किसी सहेली का पत्र, क्योंकि उन पत्रों के शब्दों में होती है आत्मीयता, लिखावट से पता चलती है प्रेषक की तन्मयता, और पत्र पढ़ते समय पत्रों में से झांकता है चेहरा लिखने वाले का। क्या बात है भाई, अब तो मोबाइल के जरिए अगर प्रेम का इजहार होता है तो तुरंत इमोजी के जरिए पता चल जाता है या तुरंत शब्दों के जरिए, वाक्यों के जरिए। तब जब पत्र लिखे जाते थे, प्रेम पत्र, तो इंतज़ार होता था, इंतज़ार में रात भर आँखें तकती थीं कि कब वो उस पत्र का जवाब आएगा। कभी ऐसा भी अनुभव आपके साथ हुआ होगा, और ये इंतज़ार होता था कि लिखने वाला कब लिखेगा, क्या लिखेगा, जाने कौन सी बात होगी, ये भी जिज्ञासा हुआ करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र केवल कागज़ का टुकड़ा नहीं होते थे, उनमें लिखने वाले का प्यार, आशीर्वाद, भावनाओं और स्नेह का स्नेह छिपा होता था। उन पत्रों का इंतज़ार और उन्हें पढ़ना भी कितना खूबसूरत होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि ख़त में एक ऐसा शब्द है जो बरसों जैसे लगते हुए इंतज़ार की घड़ियों को ख़त्म कर देता ज़रूर है, पर आगे इंतज़ार को बहुत पीड़ादायक बना देता है। ख़त को लिखते हुए हर उस शख्स के उंगलियों का स्पर्श, उनके ख्वाब, उनके भाव और प्यार, सभी उस लिफाफे में बंद होकर हम तक पहुंचाया जाता रहा है, जिसके आते ही धड़कनें बढ़ जाती थीं। सचमुच कुछ पत्र पढ़ते हुए दिल की धड़कनें तेज़ हो जाया करती थीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या आपने इस गाने के बारे में सोचा था। और हाँ, आगे कुछ श्रोता अगर गाने सुझा रहे हैं तो वो गाना हम आपको सुनवाएंगे। सुनिए ये गाना और बताइए कौन है हीरो, कौन है हीरोइन।
1: लिख

फिल्म थी आए दिन बहार की, आशा भोसले की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था और सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया। आशा पारिख हीरोइन होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि डाक प्रणाली का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि इसका विकास प्राचीन सभ्यताओं के साथ धीरे धीरे हुआ है। और बहुत सारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं। एक

गुलिस्तान ने लिखा है कि एक गज़ल याद आती है, प्यार का पहला ख़त लिखने में देर तो लगती है। सच में ऐसा ही होता था, कई पन्ने फाड़कर ख़त लिखे जाते थे, सचमुच संतुष्टि नहीं होती थी दोबारा तिबारा। अब तो ऐसा धीरज बचा ही नहीं है, जैसे तैसे एक पत्र लिख दिया बस काफ़ी है, फिर ये समझ में नहीं आता दो लाइन लिखने के बाद कि अब क्या लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र की शुरुआत हम करते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु, बहुत सारे लोग ऐसे लिखा करते थे, हम भी ऐसे ही शुरुआत करते थे, पहले सामने वाले का नाम और संबोधन, प्रणाम नमस्कार, उसके बाद ये। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे दादा ने अपने ही घर के एड्रेस पर शुभकामना का पोस्ट कार्ड भेजा था, ताकि पोस्ट कार्ड पर जो तारीख का स्टैंप लगाया जाता है ये प्रूफ अपने पास रहे। क्या बात है भाई। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने हेलो फरमाइश आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में अपनी बातचीत और अपनी पसंद शामिल होने पर हर बार व्यक्तिगत आभार के पत्र लिखे थे, पर हाँ एक बात ज़रूर की थी कि किसी महिला प्रस्तुतकर्ता को पत्र लिखा था, तब पते में उनका नाम नहीं पर अन्य कोई साथी उद्घोषक का नाम लिखकर उनको पहली लाइन में विनती की थी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब ख़त की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है, और एक श्रोता ने लिखा है कि एक इस रक्षाबंधन पर हमने 100 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड अपने सैनिक बंधुओं को लिखे और राखी भेजी थी। क्या बात है भाई, सलाम करते हैं आपकी इस बात को। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहली बार जब पत्नी का खत मेरे कॉलेज के पते पर आया, दरअसल शादी के कुछ महीने बाद पत्नी की विदाई हो गई, वे मायके चली गई थी, मैं कॉलेज में पढ़ने में व्यस्त हो गया। अचानक एक दोस्त ने एक खत एक दिन दिया, तुम्हारा खत मेल काउंटर पर रखा है, ले आता हूँ। खत को ले जाकर लाइब्रेरी में कोने में बैठ कर पढ़ने लगा, तमाम शायरी दोहे पढ़ते ही मन ही बदल गया, उनकी याद ने माहौल ही बदल दिया। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं इन्होंने। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय बहुत ही बढ़िया लगा, सुरीला सफ़र का आज, खतों की बात, मुझे तो गाने भी बहुत सारे याद आ रहे हैं, और गानों की फेहरिस्त इन्होंने लिखी है। अब चलिए अगला गीत सुनते हैं, बूझिए ज़रा फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम भी बूझना है आपको।

हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और संगीतकार का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी दुल्हन और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सिर्फ नियुक्ति पत्र ही संभाल के मैंने रखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है निदा फाजली का शेर, सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। क्या बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र बहुत बढ़िया लग रहा है। ख़तों की बात है, मुझे बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं और गानों की लिस्ट इन्होंने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का प्रोग्राम ख़ास है क्योंकि बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि हम मेरे घर आ रहे चिट्ठी डाकिया डाक लाया, एक डाक और डाकिया एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों को देखकर चेहरे पर चमक आ जाती थी। और मेरे घर आ रही चिट्ठी आए या ना आए, लेकिन हमें इंतज़ार रहता था। डाक वाले का पूरा शहर सम्मान करता था। अब वो ज़माना गुजरे ज़माने में सालों में तब्दील हो गया। दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड, शादी के निमंत्रण, कुशलता का समाचार, कोई अन्य खबर, नौकरी से संबंधित सूचनाओं के पत्र भी, और भी बातें, बहुत कुछ यादें ताज़ा हो गई जब लोग चिट्ठी लिखने को कहते और आई चिट्ठी को पढ़कर सुनाया करते थे। तो ऐसी तमाम चिट्ठियां होती थी जब, और ये भी आपको याद होगा कि अड़ोस पड़ोस की महिलाएं जब, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जिन्हें पत्र पढ़ने नहीं आता था, वो पत्र लेकर आती थी घर में और कहती थी कि ज़रा ये पत्र पढ़कर सुना दो। और उसमें कई बार मजाक भी होता था, बच्चे शरारत भी करते थे, चिट्ठी लेकर भागते थे इधर उधर, वो दादी काकी दौड़ती थी पीछे पीछे, वो भी एक अलग आनंद था। एक श्रोता ने लिखा है कि क्या वो खूबसूरत दौर था जब किसी अपने के नाम चिट्ठी लिखना अपने ही मन के आंगन में उतरने जैसा हुआ करता था। कलम की नोक से कागज़ पर उतरते शब्दों में न जाने कितनी भावनाएं घुल जाया करती थीं। शब्द केवल पढ़े नहीं जाते थे बल्कि जिए जाते थे। आज तो डिजिटल युग में उंगलियों के एक स्पर्श से संदेश पहुंच जाते हैं, पलक झपकते ही जवाब आ जाते हैं, लेकिन वो चिट्ठी वाले स्पर्श कहाँ मिलती है। चलिए अब सुनिए ये गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम, और गीतकार और संगीतकार का नाम भी पूछिए।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह राष्ट्र मंत्र अपना सा लगा। क्रांतिकारियों से लेकर सत्याग्रहियों तक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर किसी में वंदे मातरम शब्द के प्रति एक आकर्षण पैदा हो गया। इससे यहाँ के कलाकार भी अछूते नहीं रहे। अवनींद्रनाथ ठाकुर, राव बहादुर धुरंधर, दीननाथ दलाल, रघुवीर मुड़गांवकर और अल्लाह बख्श जैसे अनेक चित्रकारों ने भारत माता के चित्र बनाकर वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

0: इससे यहाँ के कलाकार भी अछूते नहीं रहे। अवनींद्रनाथ ठाकुर, राव बहादुर धुरंधर, दीननाथ दलाल, रघुवीर मुड़गांवकर और अल्लाह बख्श जैसे अनेक चित्रकारों ने भारत माता की चित्र बनाकर वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। फिर संगीत क्षेत्र का इसमें पीछे रहना संभव ही नहीं था। संगीत क्षेत्र के दिग्गजों को राष्ट्रीय आंदोलन का आकर्षण होने लगा। इस क्षेत्र के अनेक कलाकारों की राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की शुरुआत वंदे मातरम से ही हुई। वंदे मातरम के निर्माण से लेकर पिछले 150 वर्षों में भारतीय संगीत क्षेत्र के लगभग सभी नामी कलाकारों ने वंदे मातरम का गायन किया है या उसे संगीतबद्ध किया है। इसमें शास्त्रीय संगीत के नामी घरानेदार गायकों से लेकर आज के रॉक, पॉप, आधुनिक संगीत तक के सभी संगीतकर्मी शामिल हैं। वंदे मातरम ने जिस तरह इतिहास रचा है, उसी तरह वंदे मातरम की संगीत यात्रा भी हैरान करने वाली है।
1: इन सभी रिकॉर्डिंग्स को कालक्रम के अनुसार सुना जाए तो इसमें पिछले 150 वर्षों में भारतीय संगीत के बदलते स्वरूप को सुना जा सकता है। एक ही गीत की इतनी संगीत रचनाएं और इतनी बड़ी संख्या में नामी कलाकारों द्वारा गाया गया वो गीत, ऐसा उदाहरण पूरे विश्व के संगीत इतिहास में किसी अन्य गीत के बारे में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा संगीतमय सौभाग्य और एकमात्र अद्वितीय गौरवपूर्ण स्थान केवल वंदे मातरम गीत को ही प्राप्त हुआ है। वंदे मातरम की ये संगीत यात्रा मनोरंजक और रोमांचक है। ये कलाकारों द्वारा देश प्रेम के लिए दिखाए गए स्वाभिमान का प्रतीक है।
0: इस गीत को लिखने वाले ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अंग्रेजों की सेवा में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट जैसे न्याय विभाग के उच्च पद पर काम कर रहे थे। उसी समय
2: 4 AM and 2 PM tomorrow will be cancelled at source. The Railways Ministry said this decision has been taken in view of the anticipated severe road traffic congestion in areas around both the railway stations tomorrow. 5,000 passengers missed their trains yesterday after access roads to New Delhi Railway Station were blocked amid traffic restrictions in central Delhi during the opposition's protest. The disruption affected passengers' travel plans, resulting in financial losses and missed onward connections. Among those affected were 56 students from IIT Jodhpur who missed the Dibrugarh Rajdhani Express scheduled to depart at 4 p.m. According to reports, opposition MPs and Congress workers gathered at Rajghat for the protest. Following a luncheon hosted by Congress President Mallikarjun Kharge at a restaurant in Connaught Place, the traffic restrictions imposed in the area caused severe inconvenience to thousands of passengers attempting to reach the railway station. People who had nothing to do with the protest had to suffer inconvenience. The government has advised social media intermediaries to exercise enhanced diligence in respect of information being disseminated on their platforms and which has the potential to adversely affect public order or social tranquility. The Ministry of Electronics and Information Technology has said certain information, including false, misleading, manipulated or out of context, content is being circulated through various social media platforms in relation to ongoing public events and developments. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day departmental summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. More from our correspondent.
3: It is second in the series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer center-state collaboration. The summit is focusing on four key themes, including nutrition, early education, child protection, women's safety, and empowerment. The departmental summit model is bringing together stakeholders from the union and state governments to deliberate on sectoral priorities, share good practices, address implementation challenges, and agree on time-bound actions for improved governance and service delivery. With Priya, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: Union Communications.

0: progress, with the sex ratio at birth improving from 929 to 941 during last decade. The celebration of the birth of daughters in the state has further strengthened the message that a daughter is not a burden but a source of strength for the family and society. Over the past 10 years, Beti Bachao Beti Padhao has grown beyond a government scheme into a powerful social movement promoting the dignity, education and equal opportunities of the girl child. With Jitendra Dwivedi, Saleha Ghazi, Akashwani News, Jaipur.
1: The External Affairs Ministry has said that U.S. Department of Labor's decision concerning the Permanent Labor Certification PERM program for certain companies is distinct from the H-1B visa program. The ministry in a statement said the suspension of PERM applications does not by itself affect the validity of existing H-1B visas or the status of H-1B visa holders and their dependents. It added that though there could be some impact on the permanent residency or green card process of eligible employees of the affected companies. Earlier, the Trump administration had announced the suspension of a key employment-based green card process for 8 major technology and outsourcing companies, including Indian firms Infosys, TCS, Wipro, and HCL. The action also covers Cognizant, Capgemini, Microsoft, and Adobe. In cricket, India will take on the West Indies in the second of the 5-match T20 international series in Ranchi today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. India lead the series 1-0 after winning the opening match, with skipper Shreyas Iyer's century powering the hosts to victory. The Inter Meteorological Department IMD forecast heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Heavy rainfall is also likely to prevail over South Interior Karnataka and Uttarakhand during the day. IMD said Lakshadweep, Bihar, Andhra Pradesh, East Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, West Bengal and Sikkim are also expected to witness thunderstorms, lightning and gusty winds today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi may remain closed from 9 p.m. today till tomorrow. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stand cancelled at source stations. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. All India NR Congress wins the Tarun Chavadi Assembly constituency in Puducherry, counting on 4 Assembly seats and 1 Lok Sabha seat underway. Ministry of External Affairs clarifies U.S. suspension of PERM applications does not affect H-1B visas. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
3: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया।

0: है और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
4: 550 million users. भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज

0: सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्ता में भाजपा उम्मीदवार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
2: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
3: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं, बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंग अनुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है।

0: इंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्र, कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इसमें कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में राजा मेहदी अली खां का लिखा एक गाना। फिल्म थी वो कौन थी और संगीतकार थे मदन मोहन। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो। उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो।

0: आप सुन रहे थे फागुन फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कमर जलालाबादी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही
4: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
5: यह ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
4: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नागिन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्रेम धवन का लिखा गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में। फिल्म थी सावन।
1: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
1: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
2: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं।

0: अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गुमराह फिल्म का गाना था महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। ये महुआ फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज।

महुआ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कमर जलालाबादी के बोल थे, सोनिक ओमी का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: दोस्त मंजरी वर्मा का कीजिए नमस्कार स्वीकार। हम सभी के जीवन में बचपन की प्यारी यादें जैसे दादी बाबा माता पिता के साथ बिताया वक्त यादों में जुड़ा होता है और दादी बाबा से सुनी कहानियां या सीख वही माँ के हाथ का बना खास व्यंजन जो आज तक आपको याद है, आपकी माँ को क्या पसंद है और पिताजी को क्या पसंद है, उस दौर के गलियारों में चलते हैं जहाँ अपनों की यादें आज भी दिल में बसी हैं, जिसे याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है या नम आँखें हो जाती हैं। अब फोन की घंटी बज उठी है, लेते हैं पहली कॉल और देखते हैं किस सखी से होंगी बातें। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद साकी से बोल रही है रेखा मुखर्जी।
0: रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में और बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी पहली कॉल लगी है। तो बताइए आप कैसी हैं?
1: हम ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए कि बचपन की जो यादें होती हैं प्यारी प्यारी से दादी बाबा के साथ।

0: से बोल रही हैं?
1: पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद सातुई से बोल रही है रेखा मुखर्जी।
0: रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में, और बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी पहली कॉल लगी है। तो बताइए, आप कैसी हैं?
1: हम ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए कि बचपन की जो यादें होती हैं प्यारी प्यारी से, दादी बाबा के संग, माता पिता के संग, वो गुजरा हुआ जो दौर होता है, तो उसकी कुछ यादें आप ताजा कीजिए।
1: हाँ, याद आती तो है, लेकिन सब तो गुजर गया
0: जी।
1: दादा दादी, मामी पापा, सास ससुर जी, सब गुजर गया।
0: तो ये बताइए कि आपको अपनी मम्मी के हाथों का बना हुआ कुछ खाना याद है? वो क्या अच्छा बनाती थी?
1: हाँ, जैसा पीछा का टाइम पीछा बनाता था
0: जी,
1: सब्जी बनाता था
0: जी,
1: ये सब भी माँ का याद आता है।
0: आप बनाती भी होंगी फिर उनका सिखाया हुआ?
1: हाँ, माँ का पास, मेरा सासू माँ का पास हम बहुत तरीका खाना बनाने सीखे।
0: अच्छा।
1: और हमको नया नया खाना बनाने बहुत अच्छा लगती है। जितना आपने से खा के खुश नहीं मिलता है, हम दूसरे को खिला के हमको खुशी मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जिनको खाना बनाने का शौक होता है तो वो मन से बनाती हैं और सामने वाले को भी बहुत अच्छे से दिल से खिलाती हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और कुछ अपने पापा के बारे में बता सकती हैं, कुछ यादें उनकी?
1: पापा हमको बहुत कुछ समझाता था
0: जी,
1: कोई चीज का काम तुम करोगी
0: जी
1: तो 10 बार तुमको सोचना होगा, और 1 बार कोई काम तुम कर लेगी तो वह दोबारा नहीं घूमेगा।
0: सही बात है। और ये बताइए, हमारा विविध भारती जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ के प्रोग्राम आप कितने सारे सुनती हैं?
1: हाँ हाँ सुनते हैं जी, क्या बोलेंगे, 2 महीना हो जाता है तो मेरा पूरा मन छटपटाने लगती है
0: जी।
1: और जो रात को जो विविध भारती का गाना होता है ना
0: जी, जी।
1: वो भी हम सुनते हैं। शुक्रवार को जो गीत होता है वो भी सुनते हैं हम।
0: अच्छा, क्या बात है, यानी आप बहुत पुरानी श्रोता हैं विविध भारती की।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बताइए, आज आप फिर क्या सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम तेरी मेहरबानियाँ
0: जी,
1: और गाना वैसे ही भी है, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ। मेरे एक वो कुत्ता था
0: जी,
1: ये वही कुत्ता जब चल गया ना
0: जी,
1: एक हफ्ता हम लोग कुछ नहीं खाए।
0: हाँ,
1: और ये गाना मेरा दिल में बैठ गया।
0: ओहो, सही बात है।
1: मेरा बच्ची भी अभी तक कुत्ता का बारी में रोती है, हमको बोलती है कि माँ जब आप विविध भारती में आप फोन लगाइएगा तो माँ ये गाना को भी जरूर दीजिएगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम किसी पशु को पालते हैं तो हमारा उनसे बहुत जुड़ाव हो जाता है, उसकी यादें तो दिल से कभी जा नहीं सकती हैं। तो हम आपको आपकी पसंद का ये गाना सुनवाते हैं रेखा जी, और फोन कॉल करने के लिए आपको हेलो सहेली में बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर इचलकरंजी से जयश्री पाटिल बोल रही हूँ।
0: जयश्री जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपनी जो बचपन की यादें होती हैं, जो आपने दादी बाबा के संग गुजारी हैं या मम्मी पापा के संग गुजारी हैं, उन यादों को हम चाहते हैं कि आप आज हमसे साझा करें।
1: दादी तो नहीं थे हमारे बचपन में, हमारी दादी गुजर गई
0: जी,
1: लेकिन बाबा के साथ एक याद है कि सुबह हमारे बाबा कभी हमें उठाते नहीं थे। सुबह 5:30 बजे आकाशवाणी सांगली केंद्र लगता था ना, तो वो रेडियो ऑन करते तो हम सब जाग जाते थे।
0: अच्छा,
1: और तब से लेकर आज तक रेडियो इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती।
0: क्या बात है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं कि आप रेडियो कितने प्यार से सुनती हैं और कितने समय तक सुनती हैं। ये बहुत अच्छी सी बात आपने बताई। और आप अपनी पसंद के बारे में बताइए कुछ, या आप क्या कहना चाहती हैं?
1: मैं तो इतना कहूंगी कि आपका वो गीतों भरी कहानी है ना, वो मुझे बहुत भाती है।
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपने।
1: अच्छा लगता है वो कि आप बीच बीच में जो बोल लेते हो ना, वो मेरे मन को इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मुझे आज इतना आनंद हुआ है कि पूरे 6 महीने हो गए मैं इतना लगातार कोशिश कर रही हूँ, आज जाके मेरा कॉल लगा है। अभी
0: देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आपकी कॉल लग गई और आपकी मेरे से बात भी हो रही है।
1: और आपके लिए मुझे एक कहना है कि जब भी ऑन करोगे रेडियो तब कुछ भी नया ही पाओगे, ऐसा विविध भारती का है। और संगीत जो रहता है ना, सबके दिलों की धड़कन विविध भारती, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। दिन भर रेडियो के सिवा मेरा कोई सका नहीं रहता, इसलिए सखी भी वही है और सका भी मेरा रेडियो है।
0: क्या बात है,
1: मैं दिल से यही कहूंगी जब तक सूरज चांद रहे ना, तब तक विविध भारती रेडियो हमेशा बजता रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी प्यारी सी बात कही है। और बताइए, और क्या आपके शौक हैं या क्या आप करना पसंद करती हैं?
1: मैं तो गेहूं और नाचनी का बिस्किट बना के देती हूँ, घर में छोटा सा उद्योग खोल रखा है मैंने।
0: क्या बात है, मतलब घर के लिए बनाती हैं या आप बिजनेस भी करती हैं इसका कुछ?
1: बिजनेस भी करती हूँ, मैं दूसरों को बना के देती हूँ।
0: हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं दिल से आपके लिए कि आपका जो व्यवसाय है ये बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े।
1: जी, खोल के आपके लिए धन्यवाद।
0: लेकिन ये बताइए कि आज आप हेलो सहेली में कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम 16 साल में पहुंच गए, है ना? जी। तो चलिए जयश्री जी, आपको आपकी पसंद का गाना सुनाते हैं।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: हेलो नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं सोनिका बात कर रही हूँ मैडम, हिसार हरियाणा से।
0: सोनिका जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपका शहर कैसा है, वहाँ की क्या खास बात है?
1: जी शहर मेरा बहुत अच्छा है मैडम, साफ सफाई बिल्कुल रहती है वहाँ पे।
0: जी
1: वैसे मैं गांव से हूँ।
0: अच्छा,
1: वैसे जिला तो मतलब मेरा हिसार है, गांव में रहते हैं मैडम। वैसे
0: गांव तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े हरे भरे खेत होते हैं, है ना?
1: जी मैडम।
0: तो आपके यहाँ क्या होता है काम?
1: हमारे यहाँ पे मैडम फसल में धान वगैरह होते हैं मैडम, नरमा की कपास होती है।
0: अच्छा,
1: गेहूं भी होती है मैडम
0: जी, दाल गेहूं वगैरह होता है।
1: जी मैडम।
0: और सोनिका जी, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके दादी बाबा या मम्मी पापा की यादों को ताजा करने वाले हैं। आपने जो वक्त गुजारा है उन लोगों के साथ में, तो कुछ उनकी यादें, किस्से, कहानियाँ, कुछ सीख, वो अगर आपको याद है तो आप हमें बताइए।
1: जी दादा दादी तो मैडम मैंने देखे नहीं
0: जी,
1: ये पहले ही एक्सपायर हो चुके थे।
0: जी
1: पापा भी एक्सपायर हो चुके और मम्मी है भी फिलहाल।
0: तो मम्मी से आपने क्या क्या चीजें सीखी?
1: खाना बनाने में जो डिश होती है मैडम वो सीखी मैडम, जैसे आलू के परांठे है, मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम, उसी से मैंने सीखा मैडम। मतलब मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनाती हूँ मैडम यहाँ के परांठे।
0: क्या बात है। और सोनिका जी ये बताइए कि आपको भी कुछ कढ़ाई कशीदाकारी का शौक वगैरह रखती है क्या आप?
1: नहीं मैडम मैं ये नहीं करती, जैसे मैं ग्रुप में काम करती हूँ मैडम, हरियाणा में जैसे एक स्कीम है NRLM की तरफ से, तो उसमें जैसे 10 लेडीज होती है, 10 लेडीज इकट्ठा करके उनका समूह बनाते हैं हम
0: जी,
1: और उस समूह में जैसे लेडीज को बचत करना सिखाते हैं, जैसे हर महीने वो 100 रुपए जमा करे या 200 रुपए जमा करे, उनका एक अकाउंट खुलवा देते हैं मैडम किसी नाम के, तो उसका अकाउंट बैंक में खुलवा

0: देखते हैं और बैंक से अगर लेडीजों को जरूरत होती है पैसों की तो उनका मतलब लोन वगैरह भी करवा देते हैं मैडम।
1: बस सोनिका जी, जो आप काम करती हैं वो तो बहुत अच्छा है कि आप महिलाओं की मदद करती हैं, इस तरह से बचत भी करवाती हैं, खाते भी खुलवाती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करती हैं।
0: मैडम हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी यूपी में अमेठी जिले में।
1: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमारे विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
0: मैं मैडम सुबह से सुनती हूँ सखी सहेली और हेलो सहेली, तो मैडम फोन कार्यक्रम तो सुनती हूँ। और जैसे 1 बजे वो कमेंट वाला फेसबुक वाला आता है ना,
1: जी जी जी,
0: वो भी कार्यक्रम मैडम सुनती हूँ।
1: क्या
0: और
1: बात,
0: कमेंट भी करती हूँ मैडम।
1: अच्छा बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट भी करती है। और सोनिका जी, आपको कुछ गाने वाने का भी शौक है क्या?
0: जी गीत मैं सुनती रहती हूँ मैडम, ज्यादातर ओल्ड गीत ही पसंद है मैडम।
1: तो आज जो आप मुझे गाना बताएंगी कि हेलो सहेली में आप ये गाना सुनना चाहती हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना के बताइए तो मजा आ जाएगा।
0: एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी, यही गीत सुना दीजिए।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना सोनिका जी।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हाँ मैम, मैं मरका खंडा से जिला गोंदिया महाराष्ट्र से बोल रही हूँ
0: जी। आपका क्या नाम है?
1: वो मिंद्रा नोनार है।
0: तो मिंद्रा जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए अपने बारे में कुछ मन की बातें।
1: हाँ मैम, हम ग्राम सालेकसा तहसील में रहते हैं
0: जी।
1: सालेकसा से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है
0: जी,
1: और हम खेती किसानी का काम करते हैं मैम।
0: अच्छा, खेती किसानी में आपने खेत में क्या बोया है इस समय?
1: हमने खेत में धान बोया है मैम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा है। तो यानी कि फिर आप उसको अपने लिए रख लेती होंगी कुछ, और कुछ भाग आप उसको बाजार में निकाल देती होंगी, बेच देती होंगी, है ना?
1: हाँ मैम, कुछ यानी आधी फसल बेचने के लिए रहती है और आधी फसल खाने के लिए घर में।
0: अच्छा, और बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में सास है, दो बेटे हैं और हम पति पत्नी दो जन हैं।
0: क्या बात है, यानी कि भरा पूरा परिवार है। और आज हम बात करने वाले थे कि अपने माता पिता की और दादी बाबा की, या आपकी सास ससुर हैं जो परिवार में, उनकी कुछ यादें जो आप बताना चाहेंगी, क्या आपने उनसे सीखा?
1: हाँ मैम, सीखा तो बहुत कुछ है, काम वाम सीखा है, कुछ खेती किसानी का काम सीखे है
0: जी। बहुत अच्छा लगता है जब कोई बड़ा सिखाता है और हम उस काम को अच्छे से सीख जाते हैं और करने लग जाते हैं, है ना?
1: हाँ मैम।
0: तो

0: आप अपने बच्चों को किस तरह से काम सिखाती हैं?
1: हाँ मैम, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे?
1: एक फाइनल ईयर में है, एक फर्स्ट ईयर में है।
0: अच्छा, तो बताइए आप विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैम मेरे को हेलो फरमाइश सबसे अच्छा लगता है, और हेलो सहेली, सखी सहेली
0: जी, क्या बात है,
1: मनचाहे गीत।
0: अच्छा,
1: और तो सबसे फेवरेट प्रोग्राम हेलो सहेली और हेलो फरमाइश।
0: क्या बात है, यानी कि आज आपके फेवरेट प्रोग्राम में आपकी कॉल लग गई है ना?
1: हाँ मैम।
0: तो बताइए आज आप क्या गाना सुनना चाहती हैं?
1: मुकद्दर का, सिकद्दर का, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं प्रिया बोल रही हूँ, दिल्ली से।
0: प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। तो बताइए अपने बारे में कुछ समय।
1: बस अपनी ऐसी प्राइवेट जॉब है।
0: अच्छा, तो किस तरह की आप जॉब करती हैं?
1: कपड़ों की दुकान है, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना।
0: जी जी जी, यानी कि आप शॉप पे काम करती है, तो बहुत अच्छी
1: बात। हाँ जी हाँ जी, वीर भारती के सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, इतना पसंद है। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं रेडियो भी लेके आई एक नया।
0: अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनना पसंद करती हैं?
1: मैं सखी सहेली और जो प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं तो सारे ही, लगभग रेडियो चलता ही रहता है।
0: क्या बात है। तो अपने बारे में और बताइए कि आपकी पढ़ाई आपने कितनी करी?
1: पढ़ाई तो मैंने बीए बीएड सब कुछ किया हुआ है।
0: बीए और बीएड भी कर रखा है
1: जी।
0: तो बीएड करने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि आप टीचर बनने के लिए आगे जाएं?
1: बहुत कोशिश की लेकिन जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे जा नहीं पाए।
0: कोई बात नहीं, आप जो काम कर रही हैं आप उससे खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात है, है ना? बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना अलका याग्निक का है, शायराना सी है जिंदगी।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं जयपुर से रहमाना बानो बोल रही हूँ।
0: रहमाना जी, आप जयपुर से बोल रही हैं, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपने बारे में, अपने शहर के बारे में बताइए, कैसा है आपका जयपुर शहर?
1: जयपुर बहुत अच्छा है मैडम, सब घूमने आते हैं यहाँ पे।
0: पिंक सिटी कहलाता है जयपुर।
1: हाँ, बढ़िया है, आप भी आइए।
0: बिल्कुल, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा बस जयपुर घूमने आएंगे।
1: हाँ मैडम।
0: और बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं आप?
1: बस बच्चों को संभालना, घर का काम करना। हम पांच बहनें एक भाई हैं।
0: जी, तो और आप क्या क्या करती हैं इसके अलावा? कुछ आप कढ़ाई वगैरह करती हूँ कुछ?
1: हाँ, कढ़ाई भी करती हूँ, साड़ी भी करती हूँ, साड़ी पे सितारे लगाना
0: जी,
1: और कड़े जो होते हैं कड़ों पे सितारे लगाना, कड़े पहनते हैं ना
0: जी जी जी
1: के साथ।
0: लाख के कड़े होते हैं, जो
1: लाख के कड़े होते हैं जो, वो वाला काम करते हैं हम।
0: मुझे सुनकर के अच्छा लग रहा है कि रंग बिरंगे कड़े होते हैं और उनमें आप नग वगैरह लगाती हैं।
1: और मैडम फराकों में ना बटन भी लगाते हैं हम।
0: जी,
1: कमीज होती है ना जो पहनने की, और क्या कहते हैं कुर्ते होते हैं उस पर बटन लगाती हूँ मैं, निशान लगा के।
0: क्या बात है, तो एक दिन में कितनी कमीजों में आप बटन लगा सकती हैं?
1: जैसे मैंने 1000 फराकों में निशान लगाए तो मेरे 500 रुपए हो गए।
0: क्या बात है। और खाना वाना क्या बनाती हैं आप? अच्छा अच्छा
1: खाना ग्रीन स्टू बनाती हूँ।
0: मीठे में क्या बनाती हैं?
1: मीठे में खीर।
0: अच्छा, खीर यानी किस चीज की खीर बनाती हैं आप?
1: तान की, दूध की, और उसमें चावल डालते हैं मैडम।
0: अच्छा, चावल वाली खीर बनाती हैं, यानी कि
1: हाँ।
0: तो उसमें मेवा वगैरह डाल के बड़ा स्वाद हो जाता होगा उसमें तो।
1: हाँ, चाहे आप उसमें सेवइयां डाल लो।
0: हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा, मैं तो स्वाद आ गया यहाँ पर बैठे बैठे।
1: आइए खिलाएंगे आपको पका के।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए रहमाना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते?

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो मैडम, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। मैं दुर्गा नाम है मेरा।
0: दुर्गा जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि और आप क्या करती हैं?
1: दोनों बच्चे जॉब करते हैं, हस्बैंड भी जॉब करते हैं
0: जी।
1: मैं ब्लाइंड हूँ, घर पे रहती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, और साथ में रेडियो भी सुनती जाती हैं?
1: हाँ, रेडियो चलते रहता मेरा, अभी बंद कर दिया मैंने।

0: यानी कि आप हमसे बात कर रही हैं इसलिए बंद किया है
1: जी मैडम।
0: अच्छा, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम जो आप सुनती हैं उनमें से आपको कौन कौन से प्रोग्राम सबसे पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली आता वो सुनती हूँ मैं, और रोज सखी सहेली आता वो भी सुनती हूँ, मंचाय जीत आता वो शनिवार रविवार वो भी सुनती हूँ।
0: जी जी, बहुत अच्छा लगा।
1: सुबह 6 बजे चालू करती है
0: जी,
1: तो अपना काम भी हो जाता तो रेडियो भी सुनती हूँ।
0: दुर्गा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद का फिल्म का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
0: जी दुर्गा जी, चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, और कॉल लगाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हाँ, मैं सिकंदरा से सुनीता उइके।
0: जी सुनीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं आप?
1: मैं ग्रहणी हूँ दीदी।
0: सुनीता जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, माता पिता के संग बिताई हुई, दादी बाबा के संग बिताई हुई, तो कुछ यादें हैं जो आप बता सकती हैं?
1: हाँ दीदी, बचपन में तो हम बहुत थे, ये सब करते थे, मतलब वो खेलते थे, जैसे डिब्बे वाला खेलते थे ना
0: जी,
1: वो कबड्डी ये सब खेला करते थे।
0: जो सारे खेल होते हैं, लंगड़ी है या सिकड़ी।

0: या रस्सी कूद है ना, इस टाइप के खेल।
1: रस्सी कूद है, हाँ छिपन छिपाई ये सब खेला करते थे। अभी भी मैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी खेला खेलती हूँ।
0: जी
1: छोटे हैं तो उनको कभी ज्यादा टीवी में देखना, आप छिप जाओ मैं आपको ढूंढती हूँ ऐसा।
0: बिल्कुल, अपने बच्चों के साथ आप उनको अपने समय में जो आप खेल खेला करती थी वो बच्चों को बताइए कि टीवी बंद करो, मोबाइल हटाओ और अब मेरे साथ आके तुम लोग ये खेलो खेल। तो उससे क्या
1: हाँ
0: होगा, एक आपस में जो संबंध बनता है प्यार का बच्चों के बीच में, वो बहुत अच्छा
1: हाँ
0: बनेगा।
1: बिल्कुल
0: और दोस्त जैसा अगर आप बन के रहेंगी, उनके साथ खेलेंगी इंजॉय करेंगी, तो वो बच्चे भी बहुत खुश होंगे, है ना।
1: हाँ हाँ जी। मैं हम मेरे घर मोबाइल बहुत कम देखते हैं, बच्चे बहुत
0: जी
1: ज्यादा खेलते कूदते हैं।
0: सुनीता जी, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती हैं, और उससे क्या होता है बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी मिलती है।
1: हाँ जी। उनके साथ तो आराम तक की मतलब कभी कभी बैट बॉल खेल लेती हूँ ऐसे।
0: बिल्कुल, आप थोड़ी देर क्या, आप तो एक नियम बना दो कि 1 घंटे हमारे साथ तुम लोग को खेलना है ना। तो आप भी एक्टिव रहेंगी और बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना।
1: हाँ
0: तो सुनीता जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे वो अलग गीत सुना था दीदी, चलो बुलाया आया है, माता ने बुलाया है।
0: जी सुनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं अहमदाबाद से जरीना बात कर रही हूँ।
0: जरीना जी, और बताइए आप कैसी हैं?
1: जी मैं अच्छी हूँ।
0: अहमदाबाद का मौसम कैसा है इस समय?
1: अहमदाबाद का मौसम तो अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है।
0: अच्छा, और अपने बारे में और कुछ बताइए।
1: मैं स्टोर चलाती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा।
0: अच्छा जरीना जी, तो इसमें क्या क्या चीजें आप बनवाती हैं?
1: बनवाती नहीं हूँ, होलसेल में लाती हूँ मुंबई से, और यहाँ पे मार्केटिंग करती हूँ। हमारा जो

0: दसरा आने वाला है ना, उसका सीजन चल रहा है, उसमें मैं बैंगल्स है, फिर नेकलेस है, वो सब लोग हम लाते हैं और उसको बिक्री करते हैं, स्टोर में रखते हैं।
1: क्या बात है, यानी कि सीजन आते ही बिजनेस बहुत तरक्की करता है ना।
0: जी जी जी आप मंजरी जी बात कर रही हो ना?
1: हाँ, मैं मंजरी वर्मा बोल रही हूँ।
0: जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके।
1: चलिए, धन्यवाद, अच्छा लगा। जरीना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
0: वो गीत नहीं है बल्कि वो भजन है, मैं अम्बी जगदम्बी, क्योंकि अभी नवरात्र आने वाला है ना।
1: जी जी जी जी,
0: तो मैं वो गीत सुनना चाहूंगी।
1: जरीना जी, बिल्कुल, आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, और आपने कॉल किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं बबीता कुर्मी, जिला सागर।
0: बबीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, सागर के क्या हाल हैं?
1: बस मैम जी, बढ़िया है। आप सुनाओ, आपकी मुंबई की क्या हाल है मैम?
0: मुंबई बहुत अच्छी है, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बबीता जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: पढ़ाई करते हैं दीदी, और घर में रहते हैं तो माता पिता का हाथ बटाते हैं। जैसे खेती किसानी होती है हम लोगों को यहाँ पे
0: जी,
1: तो दीदी उसमें अभी हम लोगों के यहाँ पे वो करता है सोयाबीन और उड़दा बज जाते हैं यहाँ पे उड़द। कभी आओ तो दीदी, यहाँ की मूंगफली है बहुत फेमस अर्जुनी की।
0: क्या बात है, फिर देखिए जब कभी मौका मिलेगा, ऐसा सौभाग्य होगा तो जरूर आएंगे और जरूर खाएंगे वहाँ की मूंगफली। मूंगफली के साथ में जो नमक मिलता है उसका स्वाद भी अलग होता है ना?
1: हाँ दीदी, और दीदी देसी मूंगफली की तो बात ही अलग है दीदी। हम लोगों को यहाँ पे वैसे तो दीदी बुंदेली भाषा जानती हो आप?
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए, बुंदेली में क्या कहना चाहती हैं आप?
1: तो बुंदेली में मतलब बोलती तो मूंगफली है जो हम लोगों को रहती है यहाँ पे, हर खेतों में लगती है दीदी।
0: जी जी जी,
1: यहाँ के दीदी जो बेर होते हैं अभी तो मतलब नहीं फरे हैं, यहाँ पे फरने वाले हैं बस।
0: बेर जो उबाल के खाते हैं, छोटे वाले बेर होते हैं ना, लाल लाल।
1: हाँ वो उबाल के दीदी जब वो फरते हैं, जब वो पक जाते हैं उनको तुरंत खाते दीदी, इतना अच्छा लगते हैं वो बेर।
0: जी जी जी, और बबीता जी बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आप बुंदेली में कोई गीत गुनगुना सकती हैं?
1: जी दीदी, बुंदेली में एक छोटा सा गाना है दीदी बेटी के ऊपर से।
0: सुनाइए।
1: बिटिया को

0: अगर बच्चे होने तो बहू कहते ना हो, नारी नर की खान कहावे, बिटिया घर को नाम चलावे। आज की बिटिया बहू काल की, परसों माँ बन गए हो।
1: यहाँ पे दीदी ऐसे गाना गाई जाती है लोग
2: नहीं, बहुत प्यारा सा गाना है बिटिया के बारे में कि बिटिया की क्या अहमियत होती है परिवार में।
1: जी दीदी, दीदी सबसे पहले तो आपके लिए और विविध भारती की पूरी टीम के लिए आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: बिल्कुल, आपको भी हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बबीता जी, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आज?
1: दीदी सुहाग फिल्म का गाना सुनवा देना, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेर वाली।
2: बबीता जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

के कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। मुंबई का एसटीडी कोड है 022, वो नंबर है 4002466 2, यानी 4002462। दूसरा नंबर है 2867-0288, यानी 2867-0288। तो बस हेलो सहेली में लगाइए ये नंबर्स और कीजिए अपनी दोस्त से बातें। प्रोग्राम हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। आप सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, कभी ना कभी आपकी कॉल लग जाएगी। जिन सखियों की कॉल आज लग गई है उनसे निवेदन है कि 2 महीने तक कॉल नहीं लगाएं। आज हेलो सहेली कार्यक्रम में सहयोग संपादन रहा झरना सोलंकी का और तकनीकी इंजीनियर

0: समृद्धि नायक, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए अब मंजरी वर्मा को अनुमति। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ये

0: जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर है ममता सिंह का।
2: अब तक आपने सुना आज अचानक ठंड बढ़ गई है। गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करते हुए लॉन में आ गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था। मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में। हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे। जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। सही मायनों में तो प्रणव सर जो उसके मेन गाइड हैं उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती। बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कॉम्पिटिशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज

वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन। वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठ कर कमरे में बंद हो गई थी। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना। एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं, अरे समय के साथ

के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना। एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं। अरे, समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी, जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। अब सुनिए आगे की कहानी।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था, सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही है, क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है, तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में। दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है, जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी, मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं मां? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हाँ, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना। हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ

अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ, पर अब नहीं। मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, ऊबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना। इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर है आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोस ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब से खिली थीं। टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह उड़

0: मन से बहुत बिंदास अल्हड़ दिव्या के चेहरे के पीछे एक संवेदनशील रचनाशील सृजनकर्मी भी छिपा है। शायद उसकी संवेदनशीलता, उसकी रचनात्मकता ही उसे बार बार टेलीविजन की दुनिया में जाने को उकसा रही थी। पहले मास मीडिया की पढ़ाई पूरी करनी है और कम से कम इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो, ताकि बाद में पीएचडी की जाए और फिर तैयारी से टेलीविजन की दुनिया में काम किया जाए। उसकी तमन्ना है कि वो खुद लिखे और खुद ही प्रोड्यूस करे। सिर्फ धारावाहिक ही नहीं बल्कि एनिमेशन फिल्म भी बनाने के सपने का अंकुर उसके मन में फूट गया था। दिव्या की आंखों में अनगिनत चमकीले सपने परवाज लेते हैं। उसका हर सपना घर वालों के विचारों की वेदी पर झोंक दिया जाता है। उसके घर वालों के लिए ये सब कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं। उनका मानना है कि पढ़ाई कोई भी कर लो, पढ़ाई के बाद ब्याह करके घर गृहस्थी तो संभालनी है, जबकि दिव्या ने गृहस्थी को कहीं तीसरे या चौथे पायदान पर रखा था। पहाड़ों के सरपीले रास्तों से गुजरते हुए जब दिव्या अपने दोस्तों के साथ लौटने लगी तो सामने से विनोद भैया आते दिखाई दिए। मन तो किया कि झटके से वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। विनोद भैया आकर दिव्या के कान में फुसफुसाकर बोले,
1: उस लंबू से सट सट कर ताली दे देकर इतना खींचे क्यों निपोर रही थी तू, हैं?
0: विनोद भैया, दिव्या को जलती आंखों से लिलोड़ते हुए विनोद भैया बाइक स्टार्ट करके पल भर में आंखों से ओझल हो गए। दिव्या तिलमिलाकर

पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए थे। इस घर में ये वक्त लड़कियों के लिए बाहर से लौटने का नहीं है। छोटे भाई सोनू ने दरवाजा खोला और अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने में वो मशगूल हो गया। चाचा हाथ में रिमोट लिए टीवी के चैनल बदल रहे थे। टीवी बंद करते हुए उन्होंने दिव्या को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराध करके लौटी हो। कॉरिडोर पार करती हुई वो बेडरूम तक पहुंची भी नहीं थी कि चाचा की रौबदार आवाज ने कानों में चोट पहुंचाई। बेतरह थकी हुई दिव्या का मन कर रहा था कि चाचा की पुकार को अनसुना करके सीधे बिस्तर पर पड़ जाए, लेकिन चाचा की हैसियत इस घर में पापा से भी बढ़कर थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि चौल में इतनी लंबी जिंदगी बिताने के बाद जब से टावर में घर लेने का सपना पूरा हुआ तो घर की एक मुश्त रकम का इंतजाम चाचा ने किया था। लोन अमाउंट भी उनका ज्यादा था। घर खरीदने में पापा की पूंजी कम लगी थी, जबकि दिव्या 3 भाई बहन मिलाकर 5 लोग हैं और चाचा के परिवार में विनोद भैया, चाचा चाची, कुल मिलाकर 3 लोग। मतलब ये एक आदर्श संयुक्त परिवार था। दिव्या सिर झुकाकर अपराधी की तरह सामने सोफे पर बैठ गई। विनोद भैया की लगाई आग चाचा की जबान के जरिए घर में धधक रही थी। उनकी लाल आंखें शोले उगल रही थीं और उसमें वो जल रही थी। ऊपर से तो वो बुद्ध बनी थी, लेकिन उसके मन में विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ रहा था। दिव्या अपने आप से ही पूछ रही थी कि आखिर उसका दोष क्या है, जमाना कहाँ पहुंच गया है। स्त्रियां धरती के हर छोर पर पहुंच गई हैं, स्पेस तक में अपना परचम लहरा रही हैं। ये संकुचित सोच के चाचा लड़कों के साथ घूमने क्या चली गई, घर सिर पर उठाए हुए हैं। खुद तो चाची की सहेलियों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर रस ले लेकर बतियाते हैं। हाँ, लेकिन दिव्या इस घर की बेटी है और वो लड़कों के साथ घूमने गई तो गलत करार दिया गया और उसे चाचा से बेवजह मार भी खानी पड़ी। इस आदर्श परिवार में बड़े होकर भी बात बात में पिट जाना आम बात है और ये उनके संस्कार में शुमार है। विनोद भैया ने दिव्या और इरफान को लेकर अफसाना गढ़कर चाचा और पापा से कह सुनाया था, वो भी इस तरह जैसे दिव्या कई दोस्तों के साथ न गई हो बल्कि अकेली इरफान के साथ गई हो, जबकि इरफान भी अन्य लड़कों की तरह महज एक दोस्त था। मम्मी ने भी चाचा पापा के पंचम सुर में अपना मंद्र सप्तक का सुर मिला दिया था। दिव्या, ए दिव्या, लड़की हो, इरफान से मिलना जुलना कम करो, समझी कि नहीं। लड़की का चरित्र सफेद चादर की तरह होता है, एक छींटा भी दाग लगा देता है उसमें, तुम जानती हो।

हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। उस दिन दिव्या का दिल दर्द से कराह रहा था, अनगिनत खरोंचे लगी थीं। मानशेष घाट में देखे फूल मुरझा गए थे, बेचैन मन आंसुओं का झरना बन बहता रहा बहुत देर तक। कमरे का दरवाजा अंदर से उसने बंद कर लिया।

रोने के बाद मन हल्का हुआ तो दिव्या ने मोबाइल उठाया, फेसबुक पर मालशेज घाट की पहाड़ियों की तस्वीरें अपलोड की और व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बहुत देर तक चैट करती रही और तस्वीरें भेजती रही। इसी बहाने अपना जी बहलाती रही। दिव्या हमेशा ऐसा करती थी, जब उसे ज्यादा डांट पड़ती या मार पड़ती तो पहले खूब रोती थी, लेकिन उसके आंसू उसे सख्त बनाते थे और फिर इस तरह परिस्थितियों से जूझने का हौसला उसके भीतर पैदा हो जाता था। उस दिन के मार के बाद दिव्या ने अपने आप को काफी निस्संग पाया, डांट और मार का असर भी अब कम होने लगा था। उस दिन वो चाचा की डांट और मार से पिकनिक का सुखद एहसास कसैला नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोशल नेटवर्किंग का दामन थाम कर सुकून महसूस कर रही थी। उन दिनों घर में एक सिलसिला सा बन गया था। बात बात में दिव्या को एहसास कराया जाता कि वो एक लड़की है

सलीके से रहना चाहिए। इसके उलट दिव्या कॉलेज के माहौल के अनुरूप खुद को बदल रही थी और ढाल रही थी। रायमा अक्सर उसे खुलेपन की तरफ खींचती। वो कहती, अरे यार थोड़ी आजाद ख्याल बनो, वरना किसी भी मर्द के पल्लू में बांधकर कैद कर दिया जाएगा और सारी जिंदगी गृहस्थी की चक्की पीसती रहोगी। समझ में आई बात?

दिव्या, ओ दिव्या, हाय हाय स्वीटहार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहाँ खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूँ मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ड्रामा की रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओह, अरे हाँ, अरे तेरा लिखा अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया। जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने? तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसी चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था। चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार सी पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख लें तो जाने क्या हो जाएगा, दिव्या सोचती है। घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी

घर में जो गलत है वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या, चल, तू ड्रामा की हीरोइन है और जानती है हीरो का रोल कौन अदा कर रहा है पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा पूछ तो सही, कौन है, पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणव सर, पता है प्रणव सर। अनमनी सी दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, राइमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, चल ना चल। नहीं मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा के स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी, और एक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, अपने आप से ही वो गुफ्तगू करती है। आखिर ये चमकीला सपना मैंने ही तो देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये, फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है, क्यों क्यों घबरा रही हूँ मैं? अगर अपनों से दूर होने की कसक आज इतनी ज्यादा क्यों सता रही है, आखिर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। भारी मन से स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगती है दिव्या, साथ में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। जब भी मन के भीतर तूफान मचा हो, हवाओं का रुख बार बार एक ही दिशा में भागा जा रहा हो, तो मन को संभालना समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिव्या का मन खुद से ही जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी। उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं? अगले दोनों सेमेस्टर में ज्यादा फीस की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट वर्क में लगने वाली सामग्री बहुत महंगी होती है, कहाँ से आएगी ये रकम? दिव्या का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जब मन से परेशान होती है तो अपने आप को अकेलेपन के महासागर में डुबो देती है। अपने एकाकीपन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहती। अपनी पीड़ा को वो तार तार महसूस करती है, अपनी बेचैनी को सहलाती है और उससे जूझती भी है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर भी, घर वालों पर भी। लेकिन एकाकीपन के उसके ये लम्हे उसके प्रिय होते हैं। ऐसे में वो या तो अपनी डायरी उठाती है या फिर खिड़की से बाहर खाली खाली नजरों से दूर तक देखती है।

शून्य में देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात। ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर अंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेली निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और राइमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी। लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? और किसके साथ रहोगी हैं? वहां न कोई नातेदार न रिश्तेदार। हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन राइमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था। आंटी, दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसकी देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ राइमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। फिर मम्मी, आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना। मम्मी प्लीज एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर जैसे आरी चल रही थी और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी, कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसी होगी? क्या होगा मेरा? कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के बिना? वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई। चलते चलते दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था। गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य बिल्कुल निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का ना तो नियत समय था और ना ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है,

लेकिन किस ट्रेन से जाना है ये तो दिव्या ने भी नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराये शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो उहापोह में थी। पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं, क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करती हुई खुद ही हौसले से डग भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थीं। हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदें चिपक गई थीं। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलेटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा।

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम महिला जगत।

हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम का मतलब अंत ही नहीं होता, बल्कि एक नए वाक्य की शुरुआत भी होता है। नमस्कार सखियों, महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी सखी आरती गुप्ता। सखियों, अपने इस कार्यक्रम में हम करते हैं ढेर सारी बातें, देते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और सुनते हैं मधुर गीत संगीत। सखियों, हमारी आदतें हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होती हैं, कुछ आदतें हमारे चरित्र और व्यक्तित्व की नकारात्मक छवि बनाती हैं और कुछ आदतें व्यक्तित्व की सकारात्मक छवि बना देती हैं। आदतें बदली भी जा सकती हैं और नई आदतें अपनाई भी जा सकती हैं। सखियों, हर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कुछ खास व्यवहार करते हैं, चाहे वह उसके बोलचाल का ढंग हो, विचार हो, पहनावा हो या देखने का तरीका, पर एक खास आदत व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। सखियों, आज हमारी चर्चा का विषय भी यही है कि एक खास आदत जो आपको बेहतर इंसान बनाती है। आज कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में बात करेंगे जो जीवन को निर्णायक दिशा देती हैं। सखियों, समय की पाबंदी एक ऐसी आदत है जो जीवन में सफलता का आधार बनती है। समय किसी का सगा नहीं है। कहा जाता है टाइम इज मनी, समय कभी

लौटकर नहीं आता। संसार भर की दौलत भी समय का एक पल नहीं लौटा सकती। धन चला जाए तो पुनः अर्जित किया जा सकता है, परंतु समय को किसी भी उपाय द्वारा वापस नहीं लौटाया जा सकता। सखियों, सफल लोगों के जीवन पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि सफलता के लिए उन्होंने समय के साथ चलना सीखा। समय कीमती है, लक्ष्य से भटकाने के अनेक साधन हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल आज हमारे समय को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके कारण नींद पूरी न होना, तनाव, डिप्रेशन, आलस जैसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। सखियों, समय का सदुपयोग हर काल हर स्थिति में आवश्यक है। कहा जाता है, समय चूक पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय पर किया गया हर काम शुभ फलदायी होता है। समय का पालन अनुशासन का ही एक भाग है। अनुशासन से

हो जाते हैं। सखियो, समय का सदुपयोग हर काल हर स्थिति में आवश्यक है। कहा जाता है, समय चूक पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय पर किया गया हर काम शुभ फलदायी होता है। समय का पालन अनुशासन का ही एक भाग है। अनुशासन से जीवन में सफलता प्राप्त होती है, चाहे वह विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, नेता हो या कोई गृहिणी। सखियो, समय प्रबंधन हर समय में प्रासंगिक रहेगा। प्रातः जल्दी उठना, व्यायाम करना, ध्यान करना भी ऐसी आदतें हैं जो कि हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके पास अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा समय होता है। समय न होने की शिकायत उस व्यक्ति को नहीं रहती। सखियों, हम सभी को बराबर समय मिलता है, पर फिर भी कुछ व्यक्ति यही शिकायत करते हैं कि टाइम नहीं मिलता, जबकि कुछ लोग उसी समय में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो लोगों के लिए उदाहरण बन जाता है। सखियों, ऐसी ही एक आदत जो हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है, वह है अपने दिन की योजना बनाना, यानी प्लानिंग करना, समय प्रबंधन। एक रात पहले अगले दिन की योजना बना लेने से उलझने और भागदौड़ नहीं होती। योजना अनुसार सभी काम समय से हो जाते हैं। सखियों, अपने दिन भर के कामों की योजना बनाकर काम करने से कोई असमंजस नहीं होता। टू डू लिस्ट हमारे दैनिक कार्यों को व्यवस्थित रखने और समय का सही उपयोग करने का सबसे प्रभावी तरीका है। कार्यों की सूची बनाने के लिए प्राथमिकता तय करना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे ऊपर रखें। बड़े काम या प्रोजेक्ट को छोटे छोटे और आसान चरणों में बांट लेना उचित रहता है। सखियों, ऐसे समय प्रबंधन के साथ योजनाबद्ध रूप से काम करने से काम व्यवस्थित रूप से और सरलता से संपन्न हो पाते हैं। सखियों, हमारे जीवन को बदलने वाली और हमें बेहतर इंसान बनाने वाली एक और आदत है, वह है कृतज्ञता व्यक्त करना। कृतज्ञता यानी जो है उसके लिए धन्यवाद करने की प्रवृत्ति, आभार व्यक्त करने की आदत। इस आदत से हर व्यक्ति अधिक खुश और अधिक सफल बन सकता है। सखियों, मनुष्यों में अक्सर नकारात्मक पूर्वाग्रह होता है, लेकिन कृतज्ञता के अभ्यास से इसे बदलने और जीवन के प्रति अधिक आशावादी दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है। सखियों, कृतज्ञता भाव के बिना अपने जीवन से संतुष्टि नहीं मिल सकती है। आभार व्यक्त करने से जीवन, ईश्वर और संसार के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। यह आदत हमें बताती है कि जो कुछ हो रहा है उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। हर सुख के पीछे दुख है और दुख के पीछे सुख का आगमन होता है। सखियों, जिस व्यक्ति ने हमें जो भी दिया है उसके प्रति कृतज्ञता भाव रखने से हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, तनाव दूर होता है। रात को सोते समय और प्रातःकाल उठकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि उस प्रभु ने हमें एक और दिन दिया है जिससे हम स्वयं के जीवन और संसार को बदल सकते हैं। सखियों, ऐसी ही एक रोचक आदत है पढ़ना। पढ़ना ज्ञान बढ़ाने, दिमाग को तेज करने और तनाव से मुक्ति पाने का बेहतरीन तरीका है। यह आदत बच्चों के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने में भी सहयोगी है। कुछ समय अखबार पढ़ने, सामान्य ज्ञान के विषय को पढ़ने या कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने के लिए अवश्य निकालें। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके लिए हम आसपास किसी लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं। अपने घर पर भी इस आदत को हम बनाए रख सकते हैं। दिन भर में केवल 10 से 15 मिनट पढ़ने से ही हमारा तनाव समाप्त हो सकता है। आज के समय में ज्ञान ही पूंजी है और यह ज्ञान पढ़ने से ही मिलता है। 10 से 15 मिनट पढ़ने से

हम कुछ ही दिनों में साहित्यिक ग्रंथों और धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। यह एक अच्छी आदत है जो हमारी नई पीढ़ी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। सखियों, पर्याप्त नींद लेना यानी हमें 7 से 9 घंटे की नींद लेना जरूरी है। हालांकि आज के व्यस्त जीवन में यह कठिन हो सकता है, पर यह एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। जैसे पर्याप्त नींद लेने से मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार देखने को मिलता है। पर्याप्त नींद ना लेने से मानसिक तनाव और थकान बनी रहती है। हार्मोन असंतुलन के कारण अनेक रोग जैसे मधुमेह, थायराइड जैसे जीवन शैली से संबंधित रोग हो जाते हैं। सखियों, पर्याप्त नींद लेने से दिमाग शांत रहता है और कार्य करते समय एकाग्र रहता है, जिससे हमारी कार्यकुशलता बढ़ती है। दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। जीवन में अनुशासन बनाए रखना भी एक अच्छी आदत है, जिसके बल पर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि स्व अनुशासन की आदत है तो वह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। स्व अनुशासन से हमें अपने जीवन के साथ साथ अपनी संतान एवं भावी पीढ़ी के चरित्र निर्माण में भी सहायता मिलती है। इसके लिए जल्दी सोना और जल्दी उठना बहुत जरूरी है। सखियों, यह अनुशासन घर बाहर हर जगह होना जरूरी है। जैसे आसपास की स्वच्छता, सार्वजनिक स्थलों की और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा स्वानुशासन का ही रूप है। सखियों, अपनी बातों के क्रम को देते हैं कुछ विराम और चलते हैं संगीत के संसार में। आइए सुनते हैं यह गीत।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: सखियों, आपने सुना यह गीत, आशा है आपको पसंद आया होगा। सखियों, गीत सुनने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि एक ऐसी खास आदत जो आपको बेहतर इंसान बनाती है। सखियों, ऐसी अनेक आदतें हैं जो हमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाती हैं, जैसे सच बोलना, स्वाभिमानी होना, दयालु होना, मितव्ययी और मितभाषी होना, संवेदनशील होना, चरित्रवान होना और परिश्रमी होना। सखियों, यदि हम बेहतर दुनिया चाहते हैं तो सुधार की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। आशावादी होना और आत्मविश्वास रखना ऐसी खास आदतें हैं जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हारने नहीं देती। सखियों, ये आदतें हमारे चरित्र को सुदृढ़ बनाती हैं, बल प्रदान करती हैं। जैसे हमारी सेनाएं हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करती हैं। सखियों, आज है 9 अक्टूबर और आज है टेरिटोरियल आर्मी डे। आज जानकारी में हम जानेंगे इस विशिष्ट दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को भारत में प्रादेशिक सेना दिवस यानी टेरिटोरियल आर्मी डे मनाया जाता है। भारत में 9 अक्टूबर 1949 को भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राज

गोपालाचारी द्वारा टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना की गई थी। सखियों, टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना अंशकालिक स्वयं सेवकों से बना एक सैन्य आरक्षित बल है जो भारतीय सेना को सहायक सेवाएं प्रदान करता है। इसमें अधिकारी, कनिष्ठ कमीशन्ड अधिकारी, गैर कमीशन्ड अधिकारी और अन्य कर्मी शामिल हैं जिनके पद भारतीय सेना के समान हैं और वे नागरिक व्यवसाय भी करते हैं। प्रादेशिक सेना से निपटने और प्रादेशिक सेना की प्राथमिक भूमिका नियमित सेना को स्थिर कर्तव्यों से मुक्त करना और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और आवश्यक सेवाओं के रखरखाव में नागरिक प्रशासन की सहायता करना तथा आवश्यकतानुसार नियमित सेना के लिए इकाइयां प्रदान करना है। सखियों, टेरिटोरियल आर्मी भारतीय सेना के बाद देश की रक्षा की दूसरी पंक्ति है। इसमें देश के नागरिक स्वयं सेवक के रूप में आंशिक समय के लिए सेवा देते हैं जो सामान्य नागरिक व्यवसाय के साथ साथ राष्ट्र रक्षा में योगदान करते हैं। सखियों, टेरिटोरियल आर्मी का आदर्श वाक्य सावधानी व शूरता है। सखियों, आज विश्व डाक दिवस भी है। आज 9 अक्टूबर है और आज ही के दिन विश्व डाक दिवस भी मनाया जाता है जो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 1874 में सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना की वर्षगांठ है। इसे 1969 में टोक्यो जापान में आयोजित यूपीयू कांग्रेस द्वारा विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था। तब से दुनिया भर के देश प्रतिवर्ष इस उत्सव में भाग लेते हैं। 1 जुलाई 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। सखियों, भारत में पहली बार 1766 में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई। सखियों, विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों और व्यवसायों के दैनिक व्यवहार में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के प्रति जागरूकता पैदा करना है। यह दिवस यूपीयू के सदस्य देशों को राष्ट्रीय स्तर पर जनता और मीडिया के बीच डाक की भूमिका और गतिविधियों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कार्यक्रम गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सखियों, विश्व डाक दिवस 2026 का विषय है विश्व डाक दिवस, एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएं। समय के साथ सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप्स से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स तक डिजिटल तकनीकों से लगातार प्रभावित हो रही दुनिया में मानवीय संबंधों का स्वरूप गहराई से बदल रहा है। ये साधन लोगों को आपस में जोड़ने की क्षमता रखते हैं। बदलाव के बीच डाक व्यवस्था मानवीय संबंधों का एक शक्तिशाली और स्थायी साधन बनी हुई है। सखियों, हमारी बातों का क्रम जारी रहेगा, पर आइए सुनते हैं पहले यह गीत।

सखियों आपने सुना यह गीत, आशा है आपको पसंद आया होगा। सखियों आजकल खानपान से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, इसलिए सरकार ने भी गेहूं चावल के अलावा मोटे अनाजों यानी मिलेट्स यानी श्री अन्न को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए श्री अन्न अभियान योजना चलाई है। सखियों आज विविधा में जानेंगे मोटे अनाजों से बने व्यंजनों के बारे में। मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी और मक्का सामान्य गेहूं और चावल की तुलना में स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण के लिए कई गुना बेहतर माना जाता है। हाई फाइबर, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अधिक पोषक तत्व और खनिज के कारण अधिक लाभदायक है और वजन नियंत्रण में सहायक है। सखियों, ज्वार, बाजरा और रागी के आटे से बनी रोटियां, मिस्सी रोटी या बाजरे की भाकरी सर्दियों में बहुत पसंद की जाती है। नाश्ते के लिए स्नैक्स में रागी से बने लड्डू, निमकी, कुकीज़ और मट्ठी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उबले हुए ज्वार से हेल्दी सलाद और खिचड़ी बनाई जाती है। सखियों, आजकल मोटे अनाजों के उपभोग पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुतायत में पाया जाता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। रागी से खिचड़ी, इडली, हलवा, पराठा आदि बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बाजरे में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और कैरोटीन होता है जिससे शरीर को ताकत मिलती है। बाजरे से रोटी, स्वादिष्ट लड्डू, पुए, कटलेट, चूरमा आदि बनाए जाते हैं। सखियों, ज्वार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कॉपर, आयरन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ज्वार बेबी फूड, ब्रेड, बिस्किट आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। मक्का विटामिन ए, फॉलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इससे रोटी, पराठा, कटलेट आदि बनाकर इसका उपयोग किया जाता है। सखियों, जौ भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। जौ में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं। जौ से दलिया, रोटी बनाकर प्रयोग किया जाता है। मल्टीग्रेन वेजिटेबल पराठा जिसमें कटी सब्जियां, नमक, हींग, जीरा मिलाकर स्वादिष्ट और पौष्टिक पराठा बना सकते हैं। रागी इडली बनाने के लिए 1 कप रागी के आटे को 1 कप दही में घोलकर 15 मिनट रखें। इसमें बारीक कटी प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर डालें, नमक और फ्रूट साल्ट मिलाकर इडली बनाएं। इसे चटनी के साथ खाएं अथवा फ्राई करके खाएं। सखियों, बाजरे का दलिया बनाने के लिए 1 कप बाजरे के दलिये को पैन में बिना घी के भून लें। इसमें मटर, कॉर्न,

मूंगफली के दाने और मनचाही सब्जियां और मसाले डालकर प्रेशर कुकर में 3-4 सीटियां देकर पकाएं। ऊपर से घी डालकर सर्व करें। सखियों, इसी तरह जौ और मक्का के भी व्यंजन बनाए जाते हैं। सखियों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपनी सखी आरती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके मन पसंद कार्यक्रम युववाणी में। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। और अब समय हो गया है आप लोगों से कुछ बातचीत करने का, तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारी आज की बात को। दोस्तों, हमारी जिंदगी में परेशानियाँ हमेशा बड़ी नहीं होती, कई बार हमारी उम्मीदें बड़ी होती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी तारीफें करें, हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उनके साथ करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम सोचे वही हो और जो हम चाहे वही मिले, और जो रिश्ता हमारे लिए खास है उसमें कभी कोई चेंजेस ना आए। लेकिन जिंदगी हमारी इच्छाओं की लिस्ट देखकर नहीं चलती। कहते हैं ना, इच्छाएं और अपेक्षाएं जितनी कम होंगी जीवन में शांति उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सपने देखना छोड़ दें। बड़े सपने देखिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, लेकिन हर चीज़ से अपनी खुशी को जोड़ देना ये छोड़ दीजिए। किसी ने आपकी तारीफ नहीं की इसका मतलब ये नहीं ना कि आप अच्छे नहीं हैं। किसी ने आपकी उम्मीदों के मुताबिक आपका साथ नहीं दिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिश्ता बेकार है। और कभी आपकी मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार गई। क्योंकि परेशानी तब शुरू होती है जब हम कहते हैं मैंने इतना किया तो सामने वाला भी मेरे लिए उतना ही करे। लेकिन हर इंसान का तरीका अलग होता है, हर किसी की प्राथमिकताएं अलग हैं, और सबसे बड़ी बात, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ज़रा सोचिए, अगर हम अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार से थोड़ा अलग कर दें, अगर हर बात पर कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बजाय हम बातों को जाने दें, अगर मुझे ये चाहिए कि जगह कभी कभी जो मिलेगा उसमें खुशी ढूंढ लूंगा ये कहना सीख जाए तो शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। क्योंकि सुकून हमेशा बहुत कुछ हासिल करके नहीं मिलता, कभी कभी सुकून उन चीज़ों को छोड़ देने से मिलता है जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, अपनी इच्छाओं की लिस्ट में से एक ऐसी इच्छा चुनिए जिसके पूरा ना होने पर बार बार आप परेशान होते हैं, और खुद से कहिए कि मैं कोशिश करूंगा लेकिन अपनी शांति इसकी कीमत पर नहीं खोऊंगा। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, हर उम्मीद का हिसाब रखने के लिए कुछ सपने रखिए, कुछ उम्मीदें रखिए, लेकिन अपने हिस्से का सुकून भी बचा कर रखिए। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि इच्छाएं थोड़ी कम कीजिए, अपेक्षाएं थोड़ी हल्की कीजिए, शायद आपको एहसास हो कि खुश रहने के लिए ज़िंदगी में जितना सोचा था उससे कहीं कम ही काफ़ी है। इसी के साथ चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा।

दोस्तों, कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जिन्हें सुनते ही किसी किरदार की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। और भारतीय सिनेमा में एक ऐसी ही आवाज़ थी नाना पाटेकर की। एक ऐसा अभिनेता जिसने सिर्फ डायलॉग नहीं बोले बल्कि अपने हर किरदार में जान डाल दी। आज बात है ऐसे कलाकार के सफ़र की जिसने थिएटर से शुरुआत की, फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई और आखिरकार पद्मश्री तक का सफ़र तय किया। नाना पाटेकर का असली नाम था विश्वनाथ पाटेकर। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने मुंबई के सर जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से पढ़ाई की, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा। वो आविष्कार थिएटर ग्रुप से जुड़े और विजय तेंदुलकर के नाटक पाहिजे जातीजे और जयवंत तलवी के पुरुष जैसे नाटकों में काम किया। यही थिएटर उनके अभिनय की वो पाठशाला बना जिसने आगे चलकर नाना पाटेकर को एक अलग पहचान दी। फिर आया ईयर 1978 और फिल्म गमन से नाना पाटेकर का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन 1986 में आई अंकुश ने उनके करियर को एक नई दिशा दी। इसके बाद प्रतिघात और सलाम बॉम्बे जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने लोगों का ध्यान खींचा। और फिर आई परिंदा। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने अन्ना सेठ का किरदार निभाया। उनका अभिनय इतना दमदार था कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहकाय अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। लेकिन नाना सिर्फ अभिनेता बनकर नहीं रुके, 1991 में उन्होंने प्रहार द फाइनल अटैक से निर्देशन में भी कदम रखा। उन्होंने इसमें अभिनय किया और लेखन में भी योगदान दिया। इसके बाद आई क्रांतिवीर और उनके अभिनय को एक और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिर अग्निसाक्षी के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों, नाना पाटेकर की सबसे खास बात क्या थी? वो खुद को किसी एक तरह के किरदार तक सीमित नहीं रखते थे। एक तरफ खामोशी, राजनीति और द अटैक ऑफ 2611 जैसे गंभीर किरदार और दूसरी तरफ वेलकम के उदय शेट्टी, यानी एक ही अभिनेता लेकिन हर बार एक बिल्कुल अलग अंदाज। और उनके इसी शानदार योगदान के लिए साल 2013 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नाना पाटेकर का सफर हमें एक बात जरूर सिखाता है, सफलता सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि लोग आपको पहचानने लगे। सफलता तब है जब आप जिस भी किरदार को छुए लोग उसे लंबे समय तक याद रखें। थिएटर से शुरू हुआ ये सफर सिनेमा के बड़े सम्मानों तक पहुंचा और नाना पाटेकर ने साबित किया कि असली कलाकार वो होता है जो पर्दे पर खुद को नहीं अपने किरदार को दिखाता है।

सोचिए आपने देश के लिए मेडल जीता हो, तिरंगा लहराया हो, पूरा देश आपकी जीत का जश्न मना रहा हो और अब आपसे मिलने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री। जी हाँ, भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक खास मुलाकात होने जा रही है। 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एशियन गेम्स 2026 के भारतीय मेडलिस्ट से मुलाकात करेंगे। ये खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आवास पर आयोजन होने की संभावना है। इस बार एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने सच में कमाल कर दिया। आईटी नागोया में हुए इन खेलों में भारत ने कुल 85 मेडल अपने नाम किए हैं। इसमें शामिल है 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल। और इसी शानदार प्रदर्शन के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा है। अब जरा सोचिए, इन 85 मेडल्स के पीछे कितनी कहानियां होंगी। किसी खिलाड़ी की सुबह जल्दी शुरू हुई होगी, किसी ने घंटों मैदान में पसीना बहाया होगा, किसी ने हार के बाद दोबारा शुरुआत की होगी और किसी ने शायद पहली बार एशियन गेम्स में देश के लिए इतिहास रचा होगा। यही तो खेल की खूबसूरती है। मेडल सिर्फ गले में नहीं आता, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। एशियन गेम्स 2026 में भारत ने कई यादगार उपलब्धियां हासिल की है। हॉकी में मेल और फीमेल दोनों टीम्स ने गोल्ड जीता है। मेल टीम ने फाइनल में मलेशिया को 5-1 से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा है और फीमेल आर्चरी में कुमकुम अनिल ने गोल्ड जीतकर इतिहास रचा है। वे इस इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। और बॉक्सिंग में लवलीना बारगोह ने 75 किलो के वेट में गोल्ड जीता है। और क्रिकेट में भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड अपने नाम किया है। अब 15 अक्टूबर को जब ये सारे मेडलिस्ट प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो सिर्फ मेडल की बात नहीं होगी। इस मुलाकात में खिलाड़ियों के प्रदर्शन, उनके अनुभव और खेलों से जुड़ी कई मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करते रहे हैं और शायद यही पल किसी युवा खिलाड़ी के लिए सबसे मोटिवेशन बन जाए, क्योंकि जब मेहनत को पहचान मिलती है तो मेहनत करने वाले का हौसला और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, एशियन गेम्स में भारत के 85 मेडल्स सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 85 मेडल्स मेहनत के, जुनून के, हार ना मानने के और तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए है। अब 15 अक्टूबर का इंतजार है, जब देश के ये सितारे प्रधानमंत्री के साथ एक खास मुलाकात में अपनी जीत और अपने अनुभव साझा करेंगे, क्योंकि मेडल जीतने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, कई बार वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है।

दोस्तों, आपने सेना के जवानों को सीमा पर देश की रक्षा करते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी सामान्य जिंदगी में किसी और प्रोफेशन से जुड़े हैं और जरूरत पड़ने पर देश की वर्दी पहनकर खड़े हो जाते हैं? जी हाँ, आज की कहानी है प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी की। और आज 9 अक्टूबर को प्रादेशिक सेना दिवस मनाया जाता है। दरअसल प्रादेशिक सेना की स्थापना 9 अक्टूबर 1949 को हुई थी। इसका उद्देश्य था देश की नियमित सेना को जरूरत के समय अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय सुरक्षा में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अब जरा सोचिए, सुबह कोई अपने ऑफिस में काम कर रहा है, कोई अपने बिजनेस में व्यस्त है, लेकिन जब देश को उसकी जरूरत पड़ती है तो वही व्यक्ति अपनी सामान्य जिंदगी से निकलकर सैनिक की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाता है। यही है टेरिटोरियल आर्मी की खासियत। प्रादेशिक सेना को अक्सर सिटीजन्स आर्मी यानी नागरिकों की सेना भी कहा जाता है। इससे जुड़े लोग अपने सामान्य पेशे और जिम्मेदारियों के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण भी लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें देश की सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। और दोस्तों, इसकी कहानी सिर्फ वर्दी तक सीमित नहीं है। प्रादेशिक सेना ने अलग अलग समय पर देश की सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियों में भी योगदान दिया है। यानी जब हालात सामान्य हो तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, और जब देश पुकारे तो सबसे पहले राष्ट्र की जिम्मेदारी। शायद इसी भावना को समझने के लिए एक ही लाइन काफी है। देश की सेवा सिर्फ सीमा पर खड़े होकर नहीं होती, देश की सेवा की भावना अपने भीतर रखकर भी होती है। प्रादेशिक सेना हमें ये संदेश देती है कि देश के लिए योगदान देने के कई रास्ते हो सकते हैं। आज प्रादेशिक सेना दिवस के मौके पर हम उन सभी लोगों को सलाम करते हैं जो अपने पेशे और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के साथ साथ देश की सुरक्षा में भी योगदान देने का संकल्प रखते हैं। तो अगली बार जब आप किसी सैनिक को देखें तो सिर्फ उसकी वर्दी मत देखिएगा, उसके पीछे छिपी जिम्मेदारी, अनुशासन और त्याग को भी महसूस कीजिएगा। और शायद यही प्रादेशिक सेना दिवस का सबसे खूबसूरत संदेश है। देश को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, हिम्मत, जिम्मेदारी और सेवा का जज्बा भी जरूरी है।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से

0: है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा है कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसैट वन वेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉक्टर जयशंकर ने इथियोपिया के विदेश

मुख्यमंत्री गिदियोन तिमोथियोस हेसेबोन के साथ आज राजधानी अदिस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जीत हासिल कर ली है। उधर तमिलनाडु की दारापुरम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीवीके ने जीत हासिल की है, जबकि मधुरंतकम सीट पर टीवीके आगे चल रही है। पुदुचेरी की तटान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने जीत हासिल की। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 889 अंक बढ़कर 72472 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 289 अंक की वृद्धि के साथ 22520 पर पहुंच गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आज 889 अंक बढ़कर 72,472 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 289 अंक की वृद्धि के साथ 22,520 पर पहुंच गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं हमारे आज शाम प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में और कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, आज शाम 6:10 पर आप सुनेंगे काव्य गोष्ठी। प्रतिभागी होंगे कवि श्री योगेश चंद वशिष्ठ, श्री हेमंत शर्मा और श्री मांगीलाल शर्मा। 6:30 हिंदी में और उसके बाद राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। 7:00 कार्यक्रम ग्राम भारती में चर्चा का विषय रहेगा सरसों की बुआई की तैयारी। साथ ही एक भेंट वार्ता हम अपने किसान भाइयों को सुनवाएंगे, रबी सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करें। वार्ताकार होंगे ग्राम धमाला के प्रगतिशील किसान लाला राम यादव। जानकारी दी जाएगी अपने खेत की मिट्टी को पहचाने, साथ ही होगा मौसम और बाजार भाव की जानकारी। 7:30 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का, 8:15 लोक संगीत का आनंद आप उठा सकेंगे। 9:15 समाचार संध्या हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:00 अंग्रेजी में समाचार भी आप दिल्ली केंद्र से ही सुन सकेंगे। 9:15 विविध भारती के कार्यक्रम हम मुंबई से रिले करेंगे। 11:00 हिंदी में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये थी हमारी आज शाम प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। और आइए अब जानकारी देते हैं कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, कल सवेरे 8:30 बजे आप सुनेंगे बातें फिल्मों की। 90 के दशक के थिरकते हुए तराने, स्वर आलेख अर्चना जैन का और प्रस्तुतकर्ता शिव कुमार शर्मा। 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला आप सुन सकेंगे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सवेरे 11 बजे जैविक खेती पर आयाम विषय पर कृषि आयुक्त राजस्थान श्री नरेश कुमार गोयल की उपस्थिति में सजीव फोन इन कार्यक्रम किया जाएगा।

श्रोताओं, कल शाम 5:30 बजे युवाणी कार्यक्रम में आज की बात में आप सुनेंगे मुस्कुराहट कठिन वक्त की बेहतरीन प्रतिक्रिया है, सक्सेस स्टोरी प्रिया कुमारी आईएएस के बारे में। साथ ही जानकारी दी जाएगी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में और राष्ट्रीय डाक दिवस के बारे में। कल शाम 5 बजे महिला जगत कार्यक्रम में पितृतर्पण अमावस्या आप सुन सकेंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। छोटी छोटी बचत का महत्व भी आपको बताया जाएगा। श्रोताओं, कल शाम 6:10 पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर डॉक्टर प्रियंका शर्मा, वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ से शिव कुमार शर्मा की बातचीत आप सुन सकेंगे। कल शाम 7 बजे किसानवाणी कार्यक्रम हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये थे कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं सुनते हैं काव्य गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं श्री योगेश चंद्र वशिष्ठ, श्री हेमंत शर्मा और श्री मांगीलाल शर्मा।
1: श्रोताओं को मेरा नमस्कार पहुँचे। मैं मनीष मनु अलवर से आपके साथ उपस्थित हूँ आकाशवाणी अलवर के काव्य संध्या के इस विशेष कार्यक्रम में। मेरे साथ उपस्थित हैं अलवर के ही वरिष्ठ कवि आदरणीय योगेश वशिष्ठ जी, जो राष्ट्रीय कवि संगम जयपुर संभाग के अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय विषय और मानवीय संवेदनाओं पर अपनी गहरी अनुभूति रखते हैं। और साथ में उपस्थित हैं हेमंत शर्मा विप्र, जो युवा कवि हैं, अलवर से ही अपने बीच उपस्थित हैं, जो पौराणिक और समसामयिक विषयों पर अपनी कविताएं लेकर आते हैं। आइए काव्य संध्या की शुरुआत करते हैं और पहले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं भाई हेमंत शर्मा विप्र को, आए अपनी कविताओं के साथ उपस्थित हो।
2: नमस्कार, मैं हेमंत विप्र अलवर से। रामायण में दो माओं का विशेष योगदान रहा है, एक केकसी और एक केकई। केकई ने एक साधारण राजकुमार को राजा बनने के बाद भगवान का दर्जा दिलवा दिया और एक ने प्रखांड पंडित को ब्रह्म राक्षस बना दिया। तो आज केकई पे मैं चार लाइनें आपको सुना रहा हूँ कि जिसके तप से इंद्र का सिंहासन हिल जाता था, जिसके तप से इंद्र का सिंहासन हिल जाता, तीनों लोक में त्राहिमाम ही त्राहिमाम मच जाता था, ना उसके जैसा प्रतापी ना कोई है होने वाला, काल को जिसने पैरों तरे रोंद निरी बना डाला, शंकर को जिसने प्रसन्न किया चढ़ा अपने मुंडों की माला, हे केकसी तूने उस प्रखांड पंडित को क्यों ब्रह्म राक्षस बना डाला।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: स्वर्ण नगरी का वो स्वामी, स्वर्ण नगरी का वो स्वामी जो नित कैलाश जाता था, जिसके नाम से धरती तो क्या ब्रह्मांड भी थर रहा था, ईश्वर ने सदबुद्धि दी जो नारायण से बैर लिया, सदगति पाने को ही उसने सीता का फिर हरण किया, कुल का नाश करा सबको जिसने मोक्ष दिला डाला, हे केकसी तूने उस प्रकांड पंडित को क्यों ब्रह्म राक्षस बना डाला।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
2: तू चाहती तो रावण ऋषि पुलिस सा आदर पाता, ऋषि विश्रवा के जैसे ही विश्व विख्यात हो जाता, लेकिन लगता है तू इस जग की है कुमाता, तेरा नाम आज भी आदर से नहीं लिया जाता, अपने छद्म उद्देश्य का भार क्यों उसके सिर डाला, हे केकसी तूने उस प्रकांड पंडित को क्यों ब्रह्म राक्षस बना डाला, क्यों ब्रह्म राक्षस बना डाला।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
2: मेरी दूसरी रचना है, तकनीक वर्तमान में डे बाय डे अपडेट होती जा रही है। हम जब छोटे थे तो नाना के से चिट्ठी के लिए पोस्ट कार्ड या अंतरदेशी आता तो हम बड़े खुश होते कि आज चिट्ठी आई है, महीने छः महीने में एक जाके हम भी लिखा करते थे, स्कूलों में भी लिखना सिखाया जाता था। लेकिन मोबाइल के युग ने हमारे साथ वो सब कुछ खत्म कर दिया, क्रेज खत्म हो गया जो चिट्ठियों का होता था। तो तकनीक के इस युग में साधन बहुत हो गए, तकनीक के इस युग में साधन बहुत हो गए, चेहरे की रंगत बदलने को प्रसाधन बहुत हो गए, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर खुल गए, कलर बदल देते हैं चेहरे का ही। कि तकनीक के इस युग में साधन बहुत हो गए, चेहरे की रंगत बदलने को प्रसाधन बहुत हो गए, समय बचाने को जो भी खोज की गई वो समय की ही कातिल हो गई, मोबाइल नूतन का तो पुरातन की पाती हो।
1: बहुत बढ़िया,
2: मोबाइल नूतन का तो पुरातन की पाती हो गई,
1: पाती हो गई।
2: कबूतर अब फुर और लाल डिब्बे भी ना जाने कहाँ खो गए, कबूतर अब फुर और लाल डिब्बे भी ना जाने कहाँ खो गए, डाकघर भी तो अब बहुत ही हाईटेक हो गए, तार अब बेतार तो ट्रंकॉल इतिहास की बात हो गई, वो पीसीओ के लाइन में लग अपनी बारी का इंतजार करना, सिक्के वाला फोन भी तो युगो पुरानी बात, सिक्कों वाला फोन भी तो युगो पुरानी बात।
1: बहुत बढ़िया।
2: ये जमाना 5G का है जनाब, ये 5G का जमाना है जनाब, रिश्ते निभाने को अब समय कहाँ है, तेरे लब जो मेरे कान का संबंध अब कहाँ रहा, ये 5G का जमाना है जनाब, रिश्ते निभाने को समय कहाँ, तेरे लब जो मेरे कान का संबंध अब रहा कहाँ, एक दूजे के टच में अब कोई रहना नहीं चाहता हेमंत, एक दूजे के टच में अब कोई रहना नहीं चाहता हेमंत, बस टच के मोबाइल में नजरे गड़ाए उंगलियां घुमाई जा रही हैं, कागज और कलम में भी दूरियां बढ़ाई जा रही हैं, रिश्ते तो बस अब उंगलियां निभाई

0: जा रही है,
1: क्या बात,
0: रिश्ते तो बस अब
1: बहुत
0: उंगलियां
1: अच्छी,
0: निभाए जा
1: बहुत
0: रही है।
1: बढ़िया,
0: धन्यवाद।
1: बहुत
0: जय हिंद, जय भारत।
1: बहुत सुंदर। हेमंत भाई ने कविताएं आज चिट्ठी पर इन्होंने कविता पढ़ी, वहीं से मैं मनीष मनु अपनी कविता की शुरुआत करता हूँ कि चिट्ठियाँ सफ़र चली तो थी फिर कहाँ रह गई।
0: वाह, बहुत अच्छे।
1: चिट्ठियाँ सफ़र चली तो थी फिर कहाँ रह गई, डाकिये से पूछते पूछते मेरी जुबां रह गई।
0: क्या बात है,
1: चिट्ठियाँ सफ़र चली तो थी फिर कहाँ रह गई, डाकिये से पूछते पूछते मेरी जुबां रह गई। और भाई छोटा था पर जिद बड़ी थी उसकी,
0: क्या बात है। आहा,
1: भाई छोटा था पर जिद बड़ी थी उसकी, उसके हिस्से माँ मेरे हिस्से दुकान रह गई।
0: क्या बात है,
1: चिट्ठियाँ सफ़र
0: बहुत बढ़िया
1: चली तो
0: मनीष जी,
1: थी
0: बहुत अच्छे।
1: फिर कहाँ, बहुत स्वागत, धन्यवाद। चिट्ठियाँ सफ़र चली तो थी फिर कहाँ रह गई, डाकिये से पूछते पूछते मेरी जुबां रह गई। और तरक्की में ढह गए बरगद सारे गांव के, तरक्की में ढह गए बरगद सारे गांव के, फिर धूप में जलती हुई पगडंडियां रह गई।
0: वाह,
1: चिट्ठियाँ सफ़र चली तो थी फिर कहाँ रह गई,
0: बहुत अच्छे, बहुत
1: डाकिये से
0: बढ़िया।
1: पूछते पूछते मेरी जुबां रह गई। और बच्चे बड़े हुए तो कमाने शहर चले गए, बच्चे बड़े हुए तो कमाने शहर चले गए,
0: बढ़िया,
1: फिर चूल्हों पर सिकती हुई विरहन सी रोटियां रह गई। चिट्ठियां सफ़र चली तो थी फिर कहाँ रह गई, डाकिये से पूछते पूछते मेरी जुबां रह गई।
0: बहुत अच्छे,
1: और एक
0: बढ़िया।
1: मुक्तक देखें इसी क्रम में कि शाम उदास लगी तो हम अपने गांव चले आए, शाम उदास लगी तो हम अपने गांव चले आए, हम गजलों की महकी सी छांव चले आए।
0: क्या बात है,
1: जैसे ही सुना आया है सुदामा मिलने को,
0: वाह,
1: जैसे ही सुना आया है सुदामा मिलने को, तो माधव मेरे नंगे पांव चले आए।
0: वाह
1: शाम
0: वाह
1: उदास लगी तो अपने गांव चले आए,
0: वाह,
1: हम
0: वाह,
1: गजलों
0: बहुत
1: की
0: बढ़िया,
1: महकी
0: बहुत
1: सी
0: बढ़िया,
1: छांव
0: बहुत
1: चले
0: बढ़िया।
1: आए। और कलियों फूलों कलियों कलियों न परियों के किस्से थे, फूलों कलियों न परियों के किस्से थे, कुल शहर में उन दो अखियों के किस्से थे। मेरे मन में मरुथल पसरा बैठा था, मेरे मन में मरुथल पसरा बैठा था, उसके होठों पर नदियों के किस्से थे, फूलों कलियों न परियों के किस्से थे,
0: जिंदाबाद
1: कुल
0: मनीष जी,
1: शहर में
0: जिंदाबाद।
1: उन दो अखियों के किस्से थे। और एक गजल से आप लोगों को जोड़ता हूँ कि थका हुआ दिनकर है साहब, थका हुआ दिनकर है साहब, शाम नशे में तरह साहब,
0: क्या बात है,
1: थका हुआ दिनकर है साहब, शाम नशे में तरह साहब, वीराना है शहर में तेरे, वीराना है शहर में तेरे, अनजाना सा डर है साहब, थका हुआ दिनकर है साहब,
0: बहुत
1: शाम
0: अच्छे,
1: नशे में तरह साहब। यादें नींदें आंखें सपने, यादें नींदें आंखें सपने, फिर सूना बिस्तर है साहब,
0: क्या
1: थका
0: बात है,
1: हुआ
0: क्या बात,
1: दिनकर है साहब,
0: क्या बात,
1: शाम नशे में तरह साहब। जाने क्यों दर दर भटका हूँ, जाने क्यों दर दर भटका हूँ, जबकि मेरा भी घर है साहब,
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी
1: थका
0: बात,
1: हुआ दिनकर
0: बहुत
1: है
0: बढ़िया,
1: साहब, शाम नशे में तरह साहब, संगत साथ चले है उसकी,
0: वाह,
1: संगत साथ चले है उसकी, वो खुशबू का घर है साहब,
0: क्या बात
1: संगत साथ चले है उसकी, वो खुशबू का घर है साहब, थका हुआ दिनकर है साहब, शाम नशे में तरह साहब। और एक गजल ये भी देखें कि धूप के गांव में एक नदी याद है,
0: हाँ,
1: धूप के गांव में एक नदी याद है, नीम के पेड़ की छांव भी याद है,
0: वाह,
1: धूप के गांव में एक नदी याद है, नीम के पेड़ की छांव भी याद है, वो बिछड़कर भी दिल से गया ही नहीं,
0: वाह,
1: वो बिछड़कर भी दिल से गया ही नहीं, आज भी मुझे वो अजनबी याद है, धूप के गांव में एक नदी याद है, नीम के पेड़ की छांव भी याद है। और जिंदगी में मेरा कोई था ही नहीं, जिंदगी में मेरा कोई
0: था ही
1: था ही
0: नहीं,
1: नहीं, बस मुझी को मेरी बेबसी याद है, धूप के गांव में एक नदी याद है, नीम के पेड़ की छांव भी याद है। जिंदगी में मेरा कोई था ही नहीं, बस मुझी को मेरी बेबसी याद है। और जिंदगी ने मेरी सब भुला भी दिया, जिंदगी ने मेरी सब भुला भी दिया, फिर भी बचपन की वो बांसुरी याद है,
0: वाह,
1: धूप के गांव में एक नदी याद है, नीम के पेड़ की छांव भी याद है। और एक इसका खास शेर जो मुझे अच्छा लगता है वो भी देखें
0: स्वागत,
1: कि मैं भटकता रहा हूँ मेरे होठ को,
0: वाह,
1: मैं भटकता रहा हूँ, मेरे होठ को

0: एक पूरी सदी याद है, धूप के गांव में एक नदी याद है, नीम के पेड़ की छांव भी याद है। और मैं अगले क्रम में आमंत्रित करता हूं अपने अलवर शहर के वरिष्ठ कवि आदरणीय योगेश वशिष्ठ जी को। स्वागत है बच्चे।
1: धन्यवाद मनीष जी। मनु, आप के गीत और गजलों में अनुभूति की गहराइयां हैं और आप गागर में सागर भर देते हैं। लीजिए, मैं एक छोटी कविता सुनाता हूँ, मातृभूमि।
0: स्वागत स्वागत
2: स्वागत गुरुदेव।
1: हमें

0: माँ ने सब कुछ दिया, उसे कुछ दे कर जाना है, निज फर्ज निभाना है। इन 9 महीने तक कोख में रख कर अपना खून दिया उसने, 9 महीने तक कोख में रख कर अपना खून दिया उसने, सारे दुख खुद के पाले में हमें सुकून दिया उसने। उसका वत्सल भाव कभी ना तनिक भुलाना है, हमें कर्ज चुकाना है,
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
0: निज फर्ज निभाना है। और सुनिए, दूध दही का दिया कलेवा, लौरी गा मन बहलाया, दूध दही का दिया कलेवा, लोरी गा मन बहलाया, गढ़ करके व्यक्तित्व हमारा जीना हमको सिखलाया। हम काना यशमत के हैं, जग को दिखलाना है, निज फर्ज निभाना है, हमें कर्ज चुकाना है।
1: बहुत बढ़िया बहुत सुंदर।
0: कि अपनी संस्कृति और धरोहर पर रिपुदल आघात करे, कि अपनी संस्कृति और धरोहर पर रिपुदल आघात करे, सीमाओं का करे उल्लंघन, जन जन में

0: बहुत बढ़िया।
1: निज फर्ज निभाना है, हमें कर्ज चुकाना है। और लीजिए दूसरी कविता मेरी है आजादी के क्रांतिकारी आंदोलन पर।
0: स्वागत स्वागत
1: कि आजादी के क्रांतिकारी आंदोलन की बात सुने, हौसले बुलंद मेरे देश के जवान के। मातृभूख की बेड़ियों को काटने की होड़ लगी, लाखों नौजवान हुए देश पे कुर्बान थे। कि निज जाति लाभ की ना सोच के शहीद हुए, सपने संजोए रखे सभी के कल्याण के। अपने पीछे कोई बात नहीं छोड़ गए, सच्चे राष्ट्रभक्त उच्च श्रेणी के इंसान थे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर चलकर अपना देश बनाएंगे। दिव्य साधना राष्ट्र भावना वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे। और शहीदों के बारे में देखिए कि पिता चाहते थे पुत्र पंडित प्रकांड बने, संस्कृत अध्ययन को ज्ञान व्यापी आ गए। कि पिता चाहते थे पुत्र पंडित प्रकांड बने, संस्कृत अध्ययन को ज्ञान व्यापी आ गए। काशी विश्वनाथ जब स्वप्न प्रत्यक्ष हुए, सार्थक नाम करना मंत्र समझा गए। और दूसरे ही दिन देखा सड़क पे दमन चक्र, तो जिम्मेदार दरोगा का सिर फोड़ आ गए। कि जज को निर्भीक होके परिचय बताया, ऐसा उसी दिन शेखर आजाद नाम पा गए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: शेखर के संकल्पित पथ पर, कि शेखर के संकल्पित पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। दिव्य साधना राष्ट्र भावना वंदे मातरम गाएंगे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
1: वंदे मातरम गाएंगे,
0: बहुत सुंदर।
1: और देखो बालकों का दृढ़ संकल्प देखिए, कि खेल कूद की उम्र में

0: खेल कूद की उम्र में जेल गए चंद्रशेखर, बैंत के प्रहार से वो जरा भी झुके नहीं। खेल कूद की उम्र में जेल गए चंद्रशेखर, बैंत के प्रहार से वो जरा भी झुके नहीं। भारत माता के जयकारे और वंदे मातरम बोलते रहे थे वो, जरा भी रुके नहीं। कि फांसी की सजा मिली तो भगत सिंह की बाहें खिली, मौत को समक्ष देख जरा भी डरे नहीं। बिस्मिल्लाह सुफाक सुख देव जैसे बलिदानी प्राणों का लगाया दाव, लक्ष्य से हटे नहीं। कि बलिदानों का स्वप्न सुपूरा करके ही दिखलाएंगे दिव्य साधना, राष्ट्र भावना वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे। और कुछ नाम लेता हूँ जनाब, कि लाल बाल पाल ने जगाया स्वाभिमान यहाँ राष्ट्र प्रेम की बयार, बहने लगी जोर से। कि लाल बाल पाल ने जगाया स्वाभिमान यहाँ राष्ट्र प्रेम की बयार, बहने लगी जोर से। राणा का स्वतंत्र प्यार लक्ष्मीबाई की ललकार से, बनी क्रांति की धार चलने लगी जोर से। कि ओज भरा बोस रूप सूर जब उदित हुआ, अंधकार की दीवार ढहने लगी जोर से। कि जोश भरा चंद्रपुरा आया धरती के पास, सागर में बलंदा निजार उठा जोर शोर से।
1: बहुत बढ़िया बोल।
0: कि खौप रहे दुश्मन में ऐसे कर्तव्य करते जाएंगे, दिव्य साधना राष्ट्र भावना वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे। और क्या करना है हमको, कि आजादी बचाने हेतु लोकतंत्र को बनाने, आओ सारे भाई बहन मिल के विचार करें, जाति पे गर्व करें किंतु वाद दूर करें, एक दूसरे से समरसता व्यवहार करें। कि अपना बनाए तंत्र याद रहे मूल मंत्र, कुटुंब प्रबोधन कर नित्य संस्कार भरे, तन मन रहे स्वस्थ स्वच्छ पर्यावरण हो, जल को बचाएं पेड़ पौधों का विस्तार करें, जल को बचाएं पेड़ पौधों का विस्तार करें। कि जो कर्तव्य नागरिक के आचरणों में दिखलाएंगे, दिव्य साधना राष्ट्र भावना वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे। और है क्या वंदे मातरम, देखिए इसको परिभाषित किया है मैंने, कि वंदे मातरम गीत मातृभू की वंदना है, सर्जना है पालना है सारे संसार की। कि वंदे मातरम गीत मातृभू की वंदना है, सर्जना है पालना है सारे संसार की। जननी से बड़ा सारे जग में नहीं है कोई, कल्पना भी नहीं कोई इससे बड़े प्यार की। कि तन मन जीवन की कीमत भी आंक ले, सम नहीं होती माँ के तनिक दुलार की। इसके विरोध में यदि स्वर कोई निकले तो जीभ काटने को यह धार है तलवार की। कि क्रांतिकारियों का प्रेरक यह गीत नित्य दोहराएंगे, दिव्य साधना राष्ट्र भावना वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वशिष्ठ जी का। आकाशवाणी के सभी सुधी श्रोताओं, उपस्थित साथी कवियों और आकाशवाणी अलवर के प्रबंधन का बहुत बहुत आभार। कविता से यूं ही संवाद संबंध और संपर्क बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि थे श्री योगेश चंद वशिष्ठ, श्री हेमंत शर्मा और श्री मांगीलाल शर्मा। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद राजस्थानी भाषा में।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल दोपहर तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। राजस्थान की भी कई रेल सेवाएं निरस्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जोधपुर आएंगे। तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत कल लगेगी। प्रदेश में 8,38,000 से ज्यादा प्रकरण सूचीबद्ध। और राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे जागरूकता माह का समापन कल डिजिटल शपथ अभियान के साथ होगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी CJP के कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या अन्य किसी प्रकार के आयोजन के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य है। इस बीच रेल मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती गंतव्यों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच इन स्टेशनों पर पहुंचने वाली ट्रेनों को निरस्त किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि ये निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। इधर उत्तर पश्चिम रेलवे की भी कई गाड़ियां आज और कल इसके कारण रद्द हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण और महिलाओं की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण शामिल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के युवा प्रतिभागियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन युवाओं ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के 20 मेडल हासिल किए हैं। भारत इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 10वें स्थान पर रहा है। ये प्रतियोगिता पिछले महीने चीन के शंघाई में आयोजित की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कल जोधपुर दौरे का कार्यक्रम है। वे सुबह जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री जोधपुर एयरबेस में चल रहे बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के एयर शो और अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह भारतीय वायुसेना के जवानों और विभिन्न देशों से आए वायुसेना के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। आज विश्व डाक दिवस है। ये दिन डाक सेवाओं के योगदान को रेखांकित करता है। विश्व डाक दिवस की इस वर्ष की थीम एक डाक नेटवर्क अनंत संभावनाएं रखी गई हैं। आज

0: राष्ट्रीय डाक सप्ताह का भी आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान परिमंडल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल सुशील कुमार ने बताया कि इस सप्ताह के दौरान हर दिन विशेष थीम के साथ कई गतिविधियां होंगी। इसका उद्देश्य डाक सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, सुलभ और लोगों की बदलती जरूरत के अनुरूप बनाना है। साथ ही डाक विभाग भी लोगों की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को अपडेट कर रहा है।
1: डाक विभाग फाइनेंशियल सर्विसेज भी देता है और डाक जो मेल्स है हमारा पार्सल लॉजिस्टिक्स और अन्य जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो चिट्ठियां हैं, इन सारे दो प्रमुख कैटेगरीज में हम काम करते हैं। ऐसा हुआ है कि जो पर्सनल मेल है, जो लोग अपने आपसी चिट्ठियां लिखते थे, वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो पार्सल्स है, जो बिजनेस पोस्ट है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसको हम केंद्र बिंदु में रखे हुए हैं और उनकी जरूरतों के अनुसार बदलाव ला रहे हैं। और जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज है, उस विभिन्न प्रकार के खाते हैं, और जो हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है और रूरल लाइफ इंश्योरेंस है, इन सारी चीजों के साथ हम लोगों के बीच में है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल होगा। प्रदेश में उच्च न्यायालय सहित सभी अधीनस्थ अदालतों, राजस्व न्यायालयों और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि लोक अदालत में पक्षकार आपसी सहमति और राजीनामे के माध्यम से मामलों का त्वरित निस्तारण करवा सकेंगे। लोक अदालत के लिए 8,38,000 से ज्यादा प्रकरण सूचीबद्ध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जोधपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल समारोह का उद्घाटन करेंगे। वहीं जयपुर तथा विभिन्न न्यायालयों में कार्यक्रम का आयोजन न्यायाधीशों की अध्यक्षता में होगा। राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 10 सितंबर से शुरू हुए मानसिक स्वास्थ्य माह का कल समापन होगा। इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों में रैलियां और जागरूकता सत्र सहित विभिन्न कार्यक्रम रखे गए। इनके माध्यम से लोगों को तनाव प्रबंधन के बारे में भी बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि अत्यधिक तनाव और अवसाद की स्थिति में डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत जरूरी है। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य माह का समापन कल डिजिटल शपथ अभियान के साथ होगा।
2: मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को शपथ दिलाई है। लगभग 95,000 से अधिक लोगों ने शपथ ली है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। मेंटल वेलबींग है, उसमें युवा मन कार्यक्रम हमने आयोजित किए थे और 33,000 से ज्यादा लोगों को हमने इसमें लाभान्वित किया गया है कि जो युवा व्यक्ति है उनमें किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को जो है स्वस्थ रख सके, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस किया गया है। तो लगभग 63,000 से अधिक युवाओं को हमने तैयार किया है, जो अपने आसपास, जो अपने सहपाठी हैं या जो दूसरे लोग हैं उनके समाज में या उनके परिचित हैं, उनको अगर किसी प्रकार का मानसिक तनाव होता तो उनकी मदद करने में कारगर रहेंगे। सभी लोगों को जो है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो है, चाहे वो वर्कप्लेस मैनेजमेंट हो, चाहे वो युवा हो या अन्य जो दूसरे हैं, उन सबको जो है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का इसमें काम किया गया है।
0: 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 देश भर में लागू किए गए। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट।
3: नए आपराधिक कानूनों में FIR, चार्जशीट, सुनवाई और फैसलों के लिए समय सीमा तय की गई है, जिससे त्वरित न्याय मिल सके। पुरानी व्यवस्था में डिजिटल साक्ष्य, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन शिकायत के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। नए कानूनों में इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराना संभव किया गया है। जीरो FIR की शुरुआत के साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करवा सकता है। पीड़ित को FIR की प्रति निशुल्क मिलेगी। वहीं गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को सूचना देने का अधिकार होगा। गंभीर मामलों में घटनास्थल की फोरेंसिक वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की

0: जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सूचना दर्ज करवाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी हो सके। वहीं कई छोटे अपराधों में जेल की बजाय सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है। नए आपराधिक कानून नागरिक केंद्रित, सुलभ और कुशल न्याय प्रणाली की दिशा में अहम है। न्यूज रूम से सलेहा गाजी।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज बूंदी पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और सिंचाई तथा पीएचईडी विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को हिंडौली, नैनवा, गरड़दा और नवनैरा परियोजनाओं सहित एआरसीपी के तहत चलाए जा रहे कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जल संचय जल संवर्धन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने जल जीवन मिशन के कामों को गति देने की बात कही।
2: लगभग 5,500 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, सभी विभागों में गति है। पीएचईडी के स्कीम्स का भी मैंने रिव्यू किया था और इरिगेशन डिपार्टमेंट के स्कीम्स का भी रिव्यू किया था। कई मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, राम जल सेतु का प्रोजेक्ट में काफी कार्य चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजिट हुआ था एक्वेडक्ट पे और उसका प्रोग्रेस भी मुझे अवगत कराया। गरड़ा डैम प्रोजेक्ट के बारे में, पीएचईडी प्रोजेक्ट के बारे में भी मुझे अवगत कराया। कुछ टीम वहाँ साइट पे जा रहे हैं, उसका भी कुछ पेमेंट इश्यूज के बारे में अवगत कराया है। ओवरऑल संतुष्ट हूँ, काम अच्छा चल रहा है।
1: डीग महोत्सव का आयोजन कल किया जाएगा। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से होने वाले इस महोत्सव में लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। कार्यक्रम की शुरुआत डीग महल से शोभा यात्रा के साथ होगी। इसके बाद मेला मैदान में दिन भर रोचक प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं शाम के समय डीग महल में सांस्कृतिक संध्या रखी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल दोपहर तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। राजस्थान की भी कई रेल सेवाएं निरस्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जोधपुर आएंगे, तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राष्ट्रीय लोक अदालत कल लगेगी। प्रदेश में 8,38,000 से ज्यादा प्रकरण सूचीबद्ध। और राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे जागरूकता माह का समापन कल डिजिटल शपथ अभियान के साथ होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख अविनाश मल्होत्रा ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों पंचायती राज चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। पहले चरण में जिला परिषद और 6 पंचायत समितियों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र जमा नहीं करवाया। नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर को होगी और 15 अक्टूबर को नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। पहले चरण में 22 अक्टूबर को मतदान होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन व्यवस्था का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। पंचायत चुनाव के अलग अलग चरणों के लिए मतदान और निर्वाचित प्रतिनिधियों के चयन का कार्यक्रम भी तय किया गया है। 23 और 24 अक्टूबर को पंच तथा सरपंच के चुनाव होंगे और 25 अक्टूबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। दूसरे चरण का मतदान 28 अक्टूबर को कराया जाएगा। त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया के तहत जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर, उप जिला प्रमुख का 26 नवंबर, प्रधान का 27 नवंबर और उप प्रधान का चुनाव 28 नवंबर को होगा। अलवर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। जिले में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए वोटिंग 25 और 31 अक्टूबर को होगी। पहले चरण में रामगढ़, कठूमर, खेडली, सौखर, गोविंदगढ़, मुबारकपुर और रैणी शामिल हैं, जबकि दूसरे चरण में उमरैण, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, थानागाजी पंचायत समिति शामिल है। इससे पहले जिले में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुए। अलवर नगर निगम को अपनी पहली महिला महापौर मिली। भाजपा की सुमन लता अग्रवाल ने कांग्रेस की कमलेश शर्मा को 19 मतों से हराकर ये पद हासिल किया। उप महापौर पद पर भी भाजपा के अजय पूनिया निर्वाचित हुए, उन्हें 40 मत मिले जबकि कांग्रेस की ममता सैनी को 24 मत प्राप्त हुए। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर में रोड शो किया। इस दौरान केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र

0: भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। वहीं दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। अलवर में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अलवर के ठेकड़ा गांव स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में रिक्रूट कांस्टेबल बेसिक प्रशिक्षण बैच में प्रशिक्षणरत 279 रिक्रूट कांस्टेबल का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने कहा कि पुलिस समाज सेवा का सबसे अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा कि पुलिस एक टीम के रूप में काम करती है। कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक हर स्तर के पुलिसकर्मी की मेहनत से पुलिस व्यवस्था मजबूत होती है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कुशालगढ़ तिराहे से सरिस्का होते हुए थाना गाजी तक 20 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। साथ ही अलवर शहर के प्रताप बांध से माच का तिराया तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 4 किलोमीटर डामर सड़क का लोकार्पण किया। वहीं मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर जैसलमेर काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नगर निगम अलवर की ओर से सिलिसेड परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में 250 से अधिक कलाकारों, आमंत्रित अतिथियों, पर्यटकों और प्रतिभागियों ने प्ले कार्ड और सेल्फी स्टैंड के माध्यम से स्वच्छ पर्यटन और स्वच्छ पर्यटक स्थलों का संदेश दिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू हुई। मॉनसून सत्र के दौरान 3 महीने तक सफारी बंद रहने के बाद पर्यटक एक बार फिर सरिस्का के जंगलों का भ्रमण कर रहे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर जिले की प्रमुख पर्यटन पहचान है। अरावली की पहाड़ियों के बीच फैला ये वन क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और बाघों की मौजूदगी के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का में वर्तमान में कालीन पांडुपोल हनुमान मंदिर में लक्खी मेले का आयोजन हुआ। मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मेले के दौरान सरिस्का क्षेत्र में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए भंडारे लगाए गए, जहां भक्तों को भोजन और प्रसाद वितरित किया गया। कई स्थानों पर ठंडे पानी, शरबत और अन्य पेयजल पदार्थों की व्यवस्था की गई। अलवर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। नई दिल्ली अर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन माथे काल दोपहर ताई पूगण वाली रेलगाड़ियां रद्द करी जी। राजस्थान में कई रेला नी जावेला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रो काल जोधपुर दौरा रो कार्यक्रम। तरंग शक्ति 2026 युद्ध अभ्यास कार्यक्रम में शामिल भेला। साल 2026 री तीजी राष्ट्रीय लोक अदालत काल लगाई जावेला। 8,38,000 बत्ता मामला री सुनवाई भेला। और राज्य में मानसिक स्वास्थ्य रे बारे में जाग जगह बनसारू चलाई जो जागरूकता महीनो काल डिजिटल शपथ अभियान सागे पूरो फैला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। दिल्ली पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी CJP कान्यू काल जंतर मंतर सामी प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन री मंजूरी देवण नटगी है। दिल्ली पुलिस रा संयुक्त आयुक्त आज नई दिल्ली में खबर नवीसा ने बतायो कि जंतर मंतर सामी विरोध प्रदर्शन या किणी भांत रा दूजा आयोजन सारू कमू कम 10 दिन पहली अर्जी देवनो जरूरी है। इ बीचे रेलवे नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन माथे आज दोपहर पाछे 2 बजे या ई पाछे 4 अर काल तड़के 4 दोपहर पाछे 2 बजे बीचे पुगण वाली सगली गाड़ियां रद्द कर दीनी है। रेल मंत्रालय रे मुजब आ दोनों स्टेशन RSR रे हल्का माए काल भारी भीड़ री शंका न ध्यान रखता थका वो फैसलो करी चियो है। उत्तर पश्चिम रेलवे री कई गाड़ियां ही आज अर काल सारू रद्द करती री ची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आज नई दिल्ली माए महिला और बाल विकास विभाग रा 2 दिन रा शिखर सम्मेलन रा समापन सत्र माए शामिल फेवन रो कार्यक्रम है। काल नू चाल रिया इन सम्मेलन माए सगला राज्यां रा राजनीतिक अगुआ और महिला और बाल विकास हलकाओं जुड़िया अहलकार शामिल फे रिया है। इनरो मकसद सहकारी संघवाद ने मजबूत कर और

0: भेली जिम्मेदारी री भावना ने बधावो देवणो है। सम्मेलन में पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण और महिलाओं री हिफाजत रा मुद्दा माथे खास ध्यान दियो चार्यो है। इनु पहले श्री मोदी नई दिल्ली में वारा रहवास माथे वर्ल्ड स्किल्स होड 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाला भारत रा नौजवान प्रतिभागियां सागे मुलाकात कीनी। वे सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो के ए नौजवान चांदी रा छे और उत्कृष्टता रा 20 तमगा हासिल कीना। लारला महीना चीन रा शंघाई माए भी ई होड़ माए भारत 10वीं ठौड़ माथे रहो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रो काल जोधपुर दौरा रो कार्यक्रम है। वे समारे जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पधारेला। रक्षा मंत्री जोधपुर एयरबेस माए चाल रहा कई देशा रा भेड़ा युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति 2026 रा एयर शो और दूजा कार्यक्रम माए भाग लेवेला। इन दौरान रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना रा जवाना और दूजा देशा री वायुसेना रा नुमाइंदा सा गई मुलाकात करेला। आज विश्व डाक दिवस है। ओ दिन डाक सेवाओं रा योगदान री याद दिरावे है। विश्व डाक दिवस रो ई साल रो मुद्दो एक डाक नेटवर्क अनंत संभावनाएं राखी चियो है। आज राष्ट्रीय डाक सप्ताह ई सरूफियो। राजस्थान परिमंडल रा मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल सुशील कुमार बतायो के सप्ताह रे दौरान रोजिना खास थीम सागे भांत भांत रा कार्यक्रम राख्या जावेला। इन रो मकसद डाक सेवावां ने 32 सुविधाजनक, आसान और जनता री बदलती जरूरतां रे मुजब बनावणो है।
1: डाक विभाग फाइनेंशियल सर्विसेज भी देता है और डाक जो मेल्स है हमारा पार्सल लॉजिस्टिक्स और अन्य जो पत्र पत्रिकाएं हैं जो चिट्ठियां हैं इन सारे दो प्रमुख कैटेगरीज में हम काम करते हैं। ऐसा हुआ है कि जो पर्सनल मेल है जो लोग अपने आपसी चिट्ठियां लिखते थे वो थोड़ा कम हुआ है लेकिन जो पार्सल्स है जो बिजनेस पोस्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसको हम केंद्र बिंदु में रखे हुए हैं और उनकी जरूरतों के अनुसार बदलाव ला रहे हैं। और जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज है उस विभिन्न प्रकार के खाते हैं और जो हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है और रूरल लाइफ इंश्योरेंस है इन सारी चीजों के साथ हम लोगों के बीच में है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। ई साल री तीजी राष्ट्रीय लोक अदालत काल लगाई चावेला। प्रदेश में हाई कोर्ट समेत सगली निचली अदालतां, राजस्व अदालतां और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में लोक अदालत लगाई चावेला। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव हरिओम अत्री बतायो के लोक अदालत में पक्षकार आपसी रजामंदी और राजीनामा रे जरिए मामला निपटा सकेला। आ लोक अदालतां में 8,38,000 बत्ता मामला माथे विचार करियो चावेला। वे बतायो कि राजस्थान हाई कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल इनरो उद्घाटन करेला जदके जयपुर और दूजी अदालतां में लोक अदालत न्यायाधीशां री सदारत में लगाई जावेला। राज्य में मानसिक स्वास्थ्य रे बारे में जाग जगावण सारू 10 सितंबर चलाई चियो मानसिक स्वास्थ्य महीनो काल पूरो फैला। इन दौरान स्कूल कॉलेजों में रैलियां और जागरूकता सत्र समेत भांत भांत रा कार्यक्रम रखी जिया और तनाव प्रबंधन रा बारा में जानकारी दी रीजी। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश बतायो के मानसिक स्वास्थ्य महीनो काल डिजिटल शपथ अभियान सागे पूरो फैला।
2: मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को शपथ दिलाई है। लगभग 95,000 से अधिक लोगों ने शपथ ली है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। मेंटल वेलबींग है उसमें युवा मन कार्यक्रम हमने आयोजित किए थे और 33,000 से ज्यादा लोगों को हमने इसमें लाभान्वित किया गया है कि जो युवा व्यक्ति है उनमें किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को जो है स्वस्थ रख सके उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस किया गया है। तो लगभग 63,000 से अधिक युवाओं को हमने तैयार किया है जो अपने आसपास जो अपने सहपाठी हैं या जो दूसरे लोग हैं उनके समाज में या उनके परिचित हैं उनको अगर किसी प्रकार का मानसिक तनाव होता है तो उनकी मदद करने में कारगर रहेंगे। सभी लोगों को जो है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो है चाहे वो वर्क प्लेस मैनेजमेंट हो चाहे वो युवा हो या अन्य जो दूसरे हैं उन सबको जो है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का इसमें काम किया गया।

0: देश माए खेतीबाड़ी रा हलका माए महिलावां रा खास काम और दूजा हलका माए वारा योगदान रोमान करन रा मकसद 15 अक्टूबर ने राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनायो जावेला। इनरो खास जलसो नई दिल्ली माए राख्यो जावेला, जिन माए हर राज्यों खेतीबाड़ी रा हलका माए बेहतरीन काम करन वाली एक एक प्रगतिशील महिला किसान शामिल भेला। राजस्थान सीकर जिला रा बेरी गांव री महिला किसान संतोष देवी खेदड़ चुनी ची है। वह तपती गर्मी माए सेब रा पौधा उगावन माए कामयाबी हासिल कीनी। इरे अलावा वह जैविक खाद काम लेर हर साल अनार, पपीता, नींबू और मौसमी समेत कई फलानी पौध तैयार करे है। कोटा जिला रा कैथून हलका माए बालापुरा और गोपालपुरा टोल बिच है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे माथे एक ट्रक रे सड़क री कोर माथे उबी दूजी ट्रक टकरा चावन रे कारण दो जना री मौत वेगी और 10 जना जख्मी हो गया। पुलिस आ जानकारी टीनी। अरब मौसम राज्य में काल सक्रिय भेवन वाला एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रा असर बीकानेर संभाग सीकर और झुंझुनू जिला में आवता दो दिन आंधी बारिश भेवन रा आसार है। ए बीचे प्रदेश का कई हलका माए रात्रि बगत पारो उतरियो है। शेखावाटी हलका माए कम से कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर क्यों। टोंक, नागौर और सिरोही समेत कई हलका माए समारे और मोड़ी सिंजा हल्की ठंड महसूस होवन लगी है। हालांकि झुंझुनू, चूरू और जैसलमेर जिला माए दिन री बगत तेज तावड़ा और गर्मी रो असर बनेड़ो है। वठे दिन और रात्रि बगत तापमान माए मोटो आंतरो रिकॉर्ड करियो चारियो है। इबीचे चौमासारी बिरखा बंद हुआ पाछे तापमान माए उतार चढ़ाव रो दौर चाल रियो है। इसा गई मौसमी बीमारियां रो कोप भी बदबा लग्यो है। एड़ा हालात माए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री ओर स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान रो तीजो दौर शुरू करीजियो है। इरतेज चिकित्सा विभाग रा कर्मचारी घर घर जार मलेरिया और डेंगू समेत मौसमी बीमारियों बचाव बाबत जाग चका रहा है। 1 जुलाई 2024 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 देश भर में लागू करी चिया है। तीन नुआ आपराधिक कानून जनता ने और मजबूत बनावन सारू घना खास है। पेश है एक रपट।
1: नए आपराधिक कानूनों में FIR, चार्जशीट, सुनवाई और फैसलों के लिए समय सीमा तय की गई है, जिससे त्वरित न्याय मिल सके। पुरानी व्यवस्था में डिजिटल साक्ष्य, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन शिकायत के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। नए कानूनों में इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराना संभव किया गया है। जीरो FIR की शुरुआत के साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन

0: सलेहा गाजी।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज बूंदी माए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और सिंचाई और पीएचईडी महकमा री न्यारी न्यारी परियोजनावां रा काम रो जायजो लीनो। वह अहलकारा ने हिंडौली नैनवा गरड़दा और नवनेरा परियोजनावां समेत ईआरसीपी रातेत चलाया जा रहा काम माए तेजी लावन रा हुक्म दीना। जल संचय जल संवर्धन कार्यक्रम रा तहत कामा रो जायजो लेता था का मुख्य सचिव इन माए बत्तियों बत्ती जनता री भागीदारी तय करण सारू कहो। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन माथे काल दोपहर ताई पुगन वाली रेलगाड़ियां रद्द करी जी। राजस्थान हुई कई रेलां नी जावेला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रो काल जोधपुर दौरा रो कार्यक्रम। तरंग शक्ति 2026 युद्ध अभ्यास कार्यक्रम माए शामिल फैला। साल 2026 री तीजी राष्ट्रीय लोक अदालत काल लगाई जावेला। 8,38,000 बत्ता मामला री सुनवाई फैला। और राज्य माए मानसिक स्वास्थ्य रे बारा माए जाग जगावन सारू चलाई चियो जागरूकता महीनो। काल डिजिटल शपथ अभियान सागे पूरो फैला। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी खूब खूब राम राम सा। किसान भाइयों, आज ग्राम भारती में हम आपसे चर्चा करेंगे सरसों की बुवाई की तैयारी। आपको कुछ आवश्यक संदेश भी सुनवाएंगे, हम आपको भेंटवार्ता भी सुनवाएंगे जिसका शीर्षक है रवि सब्जियों की नर्सरी की तैयारी कैसे करें, ग्राम धवाला के प्रगतिशील कृषक लाला राम यादव जी से। आपका मनोरंजन भी करवाएंगे और जानकारी देंगे अपने खेत की मिट्टी को पहचाने और मौसम की आपको जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, आइए हम बात करते हैं सरसों की बुवाई की तैयारी। इस समय सभी किसान भाई कर रहे हैं और आप सभी को पता है सरसों कम लागत और कम पानी में अन्य फसलों की तुलना में अधिक उपज प्रदान करने वाली फसल है। खेत का चुनाव इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। सरसों के लिए उस खेत का चयन करना चाहिए जिसकी जो मिट्टी है वो दोमट हो या हल्की दोमट हो और जिसमें जल निकास अच्छा हो। जो मिट्टी लवणीय और क्षारीय होती है वो सरसों की फसल के लिए ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। और अगर बुवाई की बात करें तो किसान भाइयों, अक्टूबर के पहले पखवाड़े में ही खेत तैयार करके सरसों की बुवाई करें। अगर अभी आपने पलेवा कर रहे हैं, सरसों की बुवाई अगर आपने अभी तक नहीं की है, तो अक्टूबर के अंत तक सिंचित ज़मीन में आप सरसों की बुवाई कर दें। और अगर आपकी बारानी क्षेत्र है तो 15 अक्टूबर तक सरसों की बुवाई पूरी कर लेनी चाहिए। खेत की तैयारी की जहाँ तक बात आती है, खेत को अच्छी तरह 4 से 6 जुताई खेत की करें और अच्छी तरह तो उसको भूमि को भुरभुरी करें। और अगर भूमि में आपको लगता है कि दीमक या अन्य भूमिगत कीट मौजूद हैं खेत में, तो अंतिम जुताई के समय क्यूनालफॉस 1.5% जो डस्ट आता है, चूर्ण आता है, वो 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल करके जुताई करें। और जुताई करने के बाद पाटा भी लगाएं ताकि बारानी क्षेत्रों में नमी का संरक्षण हो सके। किसान भाइयों, जब हम सरसों की बुवाई की बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं जो किसान साथियों को काम में लेनी

कुछ उन्नत किस्में हैं जैसे पूसा बोल्ड है, लक्ष्मी है, वसुंधरा है, RGN 145 है, RRN 573 है, RB 50 है। इनमें से जो भी किस्म आपको मिल जाए, आपको सरसों की जो किस्म मिल जाए उसकी बुवाई करना चाहिए। इसके अलावा बीज की मात्रा की भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि बीज कितना रखना चाहिए। कई बार बीज किसान भाई ज़्यादा डालते हैं तो बहुत सघन पौधे उगाते हैं और उपज में विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाई, सिंचित क्षेत्र में 2.5 किलोग्राम बीज 4 बीघा के पक्के के लिए पर्याप्त है, और असिंचित क्षेत्र है, बारानी क्षेत्र में अगर आप सरसों बो रहे हैं तो 4 से 5 किलो बीज आपको 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं और कतारों में 5 सेंटीमीटर गहरा बीज को बोते हैं, और कतार से जो कतार की दूरी है वो करीबन 1 फुट के आसपास 30 से 35 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस तरीके से आप सरसों की बुवाई करें, बीज उपचार भी अवश्य करें। बीज उपचार करने के लिए 2 ग्राम मैनकोजेब काम में ले सकते हैं 1 किलो बीज के लिए, या 3 ग्राम थायरम 1 किलो बीज में डाल करके बीज का उपचार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सफ़ेद रूली आपके ज़्यादा लगती है तो मेटालेक्जिल एक दवाई आती है, एप्रोन 35 SD के नाम से भी आती है, 6 ग्राम प्रति किलो बीज

0: स्टेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: किसान भाइयों, ये तो सुने आपने कुछ जरूरी संदेश। आइएगा अब आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, रवि सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करें। और भेंट वार्ताकार हैं ग्राम धवाला के प्रगतिशील कृषक लाला राम जी यादव।
5: किसान भाइयों, राम राम। देखो, आज हम ग्राम धवाला में उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं जो सब्जी की नर्सरी तैयार करते हैं, लाला राम जी यादव। तो आइए इनसे लेते हैं जानकारी और इनके अनुभव को अपने किसान भाइयों को देंगे जानकारी। नमस्कार जी।
6: नमस्कार साहब।
5: लाला राम जी कहाँ रहते हो?
6: धवाला रहते हैं साहब।
5: अच्छा अच्छा, तो हम आपके यहाँ देख रहे हैं भाई, आपने बहुत ही सब्जियों की नर्सरी लगा रखी है, तो ये रबी की जो फसल जिसमें लगा रहे हैं अब अक्टूबर नवम्बर में, तो इस समय कौन कौन सब्जियों की आपने नर्सरी तैयार कर रखी है?
6: इस टाइम साहब बैंगन की, टमाटर की, गोभी की, मिर्ची की, ये सारी लगती है इस टाइम।
5: अच्छा अच्छा, तो जो नर्सरी आपने बताई, तो ये करीब कितने दिन में तैयार हो जाती है?
6: ये साहब 25 दिन से 20-30 दिन के बीच में होती है।
5: तो जैसे आपने टमाटर की बैंगन की और मिर्ची की तैयारी किस तरह से करते हैं, जमीन की अपने को नर्सरी लगानी है, और कहाँ से आप बीज लाते हैं, कौन सा बीज लगाते हैं?
6: बीज तो साहब हाइब्रिड का ही चल रहा है आजकल, तो अलवर से ही लेते हैं हम, तो जयपुर से मंगाले में।
5: अच्छा, तो इनकी वैरायटियों की जानकारी आपको रहती है या किसी से जानकारी लेते हो?
6: जानकारी कोई से ले साहब, डॉक्टर से, कंपनी ने जो डॉक्टर छोड़ रखे है इनसे ले लेते हैं।
5: अच्छा, जो कंपनी के सलाहकार जो रहते हैं वो आपके पास से क्षेत्र में आते रहते होंगे, उनसे जानकारी?
6: हाँ, उनसे ही लेंगे साहब।
5: तो ये जो पौध लगाने के लिए आप जमीन की जो क्यारी बनाते हैं वो किस हिसाब से बनाते हैं, उनमें पौध लगाने से पहले क्या क्या करते हैं?
6: लगाने से पहले साहब, पहले तो उसको 2-3 बार तो ट्रैक्टर से जुतवा लेते हैं, फिर रूटर लगवाते हैं, बारीक के लिए भुरभुरी चीज हो जाती है वो जमीन उससे।
5: अच्छा, रूटर द्वारा?
6: हाँ, रूटर से। फिर उसको बेड बनाते हैं ऊंचा, जमीन से 4-5 इंची 6 इंची ऊंचा होता है।
5: तो क्यारी की साइज कितनी रखते हैं करीब?
6: करीब रखते हैं साहब 4x6-7 तक रख लेते हैं।
5: 4x6-6 फीट?
6: हाँ,
5: 4 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी।
6: हाँ जी।
5: और जमीन से क्या उठा के बनाते हैं?
6: जमीन से 4-5 इंची उठा लेते हैं, उसमें डोली होती है उसकी बजाय खाली होती है, उसकी मिट्टी डोली की उसमें आ जाती है तो ऊंचा हो जाता है।
5: अच्छा अच्छा, तो इसमें जैसे जमीन आपने तैयार की, उसमें कोई रासायनिक खाद या देसी खाद कुछ डालते हैं?
6: नहीं, दवाई वही डलवाते हैं डॉक्टरों से पूछ के, जैसे जड़ गलन की होती है, एक फफूंदी नाशक में लगती है, कौन सी है पता नहीं, दवाई तो अंग्रेजी आती है ना, हम तो सब।
5: अच्छा, मतलब जो भूमि का उपचार आप कर देते हैं, जैसे भूमि से जो रोग या कीड़े जो लगते हैं वो नहीं लग पाते फिर उससे?
6: हाँ, डालते हैं साफ वाफ पर ये वो डालते हैं।
5: अच्छा, और खाद भी डालते हैं क्या, कोई जैसे गोबर की खाद है या कोई रासायनिक खाद है?
6: खाद बकरीन की मेंग नहीं डालते हैं साहब ज्यादा करके।
5: अच्छा अच्छा, दोबारा यहाँ जो देसी खाद होती है वो
6: डालते हैं, देसी खाद वो डालते हैं।
5: तो क्या डीएपी और पोटास इनका प्रयोग करते हैं?
6: नहीं साहब, डीएपी तो कोई मामूली डालते हैं 1-2 किलो।
5: रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करते हैं,
6: कम से कम।
5: तो जैसे आपने नर्सरी जो, फिर उसमें क्यारी बनाने के बाद क्या करते हैं?
6: क्यारी बनाने के बाद साहब उसको साफ सुथरी करके उसमें बीज मिलाते हैं,
5: सूखी क्यारी में।
6: हाँ, सूखी क्यारी में बीज डाल के मिला देते हैं, फिर उसको पानी छिड़कते हैं, तब उसमें खाद और भूडा मिला के छान के ऊपर से डालते हैं।
5: उससे क्या फायदा रहता है, जैसे मैं आपने रेतीली मिट्टी जो भूडा बता रहे हैं आप, उससे ऊपर
6: डाल क्या है, जो बीज है ना वो दुब जाता है, ऊपर जो पड़ा रह जाता है ना वो निकलता नहीं है,
5: ढक जाता है।
6: हाँ, उससे बीज जो दुब जाता है अंदर तो सारा निकलता है।
5: अच्छा, अंकुरण क्षमता उसकी बढ़ जाती है, सारा पूरा अंकुरित हो जाता है।
6: हाँ जी।
5: तो सिंचाई किस हिसाब से करते हैं, कोई हजारा या कुछ इस तरह यंत्र ले रखा है या वैसे सीधी मोटर से सिंचाई?
6: नहीं जी, वैसे डिब्बा सा है उससे वो बना रखा है ठेक करके।
5: हाँ, आगे
6: वो हमारा टाइप में ही है।
5: हाँ, वो हजारा जिसको बोलते हैं,
6: जहरा जैसा होता है ना, वैसा ही पानी देता है वो भी।

0: कम कम छेद वाला है।
1: उससे क्या फायदा रहता है जैसे?
0: उससे साहब क्या है कि पौधा वौधा खराब ना होए, हल्का पानी गिरता है ना, एक तो अपन उससे दबा के भर दे में, और उससे फवारा टाइप में लगता है तो हल्का पानी से नुकसान नहीं होता। तो
1: कितने दिन में करीब सिंचाई करते हैं आप?
0: इसकी सिंचाई तो साहब कम से कम करते हैं 15 दिन बाद।
1: अच्छा अच्छा,
0: 15 दिन तक तो यही से करते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो हजारे से क्या रोज छिड़काव करते हो?
0: नहीं नहीं, दूसरे तीसरे दिन करते हैं साहब।
1: हाँ, जहाँ मौसम के अनुसार ज्यादा गर्मी रहती है तो जल्दी कर देते हैं। और इसमें जो निकाई गुड़ाई होती है, घास वास भी उगता होगा तो उसके लिए क्या करते हैं?
0: घास के लिए साहब हाथ से घास ही निकालते हैं और कुछ नहीं करते।
1: अच्छा, खुरपी द्वारा निकालते हैं।
0: हाँ।
1: और जैसे ये अब आपको कैसे पता लगेगा कि अपनी पौध तैयार हो गई? अब
0: पौध तैयार हो जाती है साहब, हम मालूम डेली का काम करने वाले 7-8 इंची की हुई लगाने लाग हो जाती है तो ग्राहक को दे देते हैं।
1: अच्छा, आपको अंदाज रहता है इतने टाइम की होगी, इतनी इसकी ऊंचाई होगी?
0: 25 दिन के बाद में बिकने चालू हो जाती है सब।
1: तो आपके के पास यहाँ क्या ग्राहक आते जाते रहते हैं?
0: ग्राहक तो आएगा ही, जब उनको पता है यहाँ माल मिल रहा है तो वो तो आएगा जाएगा ले जाएगा।
1: तो आप घर के लिए भी काम लेते हैं जो तैयार करते हैं?
0: नर्सरी से घर के लिए भी लेते हैं ना साहब, लगाते हैं साग सब्जी के लिए।
1: तो आप ये लाला राम जी और बताएं कि जैसे अपने नर्सरी अपनी तैयार होगी करीब 25 दिन की होगी यार, जो आप लंबाई बता रहे हो 7-8 इंची की होगी, तो उसको उखाड़ते समय क्या सावधानी रखें? जैसे
0: उखाड़ते तब साहब थोड़ा आला रखना पड़ता है, सूखा में नहीं पड़े, जड़ टूट जाती है।
1: अच्छा,
0: थोड़ा
1: नम करके उखाड़ते हैं,
0: पानी छिड़क के थोड़ा। अच्छा। तब उपाड़ते हैं तो आधा घंटा या घंटा बाद।
1: अच्छा अच्छा, तो उसकी जड़ सुरक्षित रहनी चाहिए।
0: हाँ जी।
1: और जो उसको कहीं कोई दूर ले जा रहा है, कोई किसान जैसे को 10-5 किलोमीटर दूर ले जाना है या 20 किलोमीटर ले, तो उसकी पैकिंग किस हिसाब से करते हैं जिससे सुरक्षित रहे?
0: एक तो ज्यादा करके बोरी में करते हैं, जो बोरी को भिजो लेते हैं आली करके
1: जी,
0: नहीं तो कार्टून होता है उसमें साइड में छेद कर दो, गैस बंद ना हो जैसे,
1: वायु का संचरण बना रहे।
0: हाँ जी।
1: तो वो मतलब जैसे आपने उखाड़ के लगाई और वो ले जाए, कितने दिन तक वो सुरक्षित रहे जो लगाने में? उसको अगर समय लग जाए 1-2 दिन का तो क्या सुरक्षित रह जाती है?
0: उसको साहब ढंग से रखेगा, वो तो धनी के पीछे है, थोड़ी हवा में या नमी बना के रखेगा, छाई में ठंडी जगह में, तो 2-3 दिन में भी लगा सकता है।
1: जो आपसे ले गया, जो बोरी में ले गया या कार्टून ले गया, उसको ठंडी जगह में रख दे, छायादार जगह में रख दे।
0: और जी, खुली करके थोड़ी, उसमें क्या है अंदर ही अंदर बंद रहेगी नहीं तो खराब हो जाती है।
1: छायादार जगह पे खुली रखी रहनी चाहिए,
0: खुली रखी रहनी चाहिए, 3 दिन बाद में भी लगा सकते हो।
1: और उसको जब खेत में वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लगा रहे हैं पेड़ को, तो खेत की तैयारी किस हिसाब से उसको करनी चाहिए, जो कुछ विशेष सावधानी हो रखी?
0: खेत में तो साहब देखो, उसको जुताई उताई ढंग से करके, खातवार डाल के, दवाई ववाई भी डालते हैं लोग, गल्ला कीड़ा मकोड़ा के लिए।
1: और जो आपकी पौध होती है करीब 25 दिन तक, इसमें कोई जैसे कीड़े वीड़े कर, जैसे कोई बीमारी या कीड़ा लगे तो उसके लिए क्या दवा का स्प्रे भी करते हैं क्या आप?
0: दवा का स्प्रे तो कम से कम करते हैं साहब, बिल्कुल हल्की डाल के 2-4 ml, 10 ml ज्यादा कोई कभी वो जरूरत पड़ी तो नहीं करते, नहीं है इतनी
1: जी। तो लाराम जी बहुत अच्छी जानकारी अपने किसान भाइयों को दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार
2: भैया, ये तो सुनिए आपने एक भेंटवार्ता, रवि सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करें। भेंट वार्ताकार थे ग्राम धवाला के प्रगतिशील कृषक लाला राम यादव जी। आइएगा अब सुनवा देते आपको कुछ और जरूरी संदेश।
3: संभव है।
4: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: किसान साथियों, ये तो सुने आपने जरूरी संदेश। आइएगा अब आपका हम मनोरंजन करवा देते हैं, आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में, और आपको सुनवाते हैं एक मीठा सा लोकगीत सीमा मिश्रा की आवाज में।

किसान भाइयों, ये तो सुना आपने एक प्यारा सा लोकगीत सीमा मिश्रा एवं साथियों की आवाज़ में कुएं पर एकली। आइएगा, अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं अपने खेत की मिट्टी को पहचाने। किसान साथियों, लगातार फसल लेते रहने से तथा गोबर आदि जैविक खाद का कम प्रयोग करने से हमारे खेत की मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। हमारी मिट्टी में कितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं, पौधों की क्या क्या आवश्यकता है, पोषक तत्वों की मांग को पूरा करने के लिए कौन कौन से उर्वरकों की कितनी कितनी मात्रा आवश्यक है, ये सभी चीज़ों का पता करने के लिए ज़रूरी है मिट्टी की जांच। मिट्टी की जांच से आपको पता चलेगा कि हमारे खेत में कौन कौन से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हैं, कौन से कम हैं, मिट्टी का पीएच कितना है, मिट्टी का ईसी कितना है, विद्युत चालकता कितनी है। विद्युत चालकता से किसान साथियों मिट्टी की लवणीयता का पता चलता है, और जो पीएच है

उससे मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का पता चलता है। मिट्टी की जांच से हमें जैविक कार्बन का पता चलता है और जैविक कार्बन के आधार पर मिट्टी में उपलब्ध नत्रजन की मात्रा का पता चलता है। फास्फोरस और पोटाश जो तत्व हैं वो सीधे सीधे मिट्टी की जांच से पता चल जाती है कि उनकी उपलब्धता कितनी है। किसान साथियों, जो ये पोषक तत्व हैं ये पौधों के अलग अलग भाग पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर नत्रजन हमारे खेत में कम है तो इसकी पहचान है कि जो पौधे की जो निचली पत्तियां हैं सबसे पहले उन पर नत्रजन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि आपको समझने वाली बात यह है कि कुछ पोषक तत्वों की कमी के लक्षण ऊपर की पत्तियों पर आते हैं, कुछ पोषक तत्वों की कमी के लक्षण सबसे पहले नीचे की पत्तियों पर आते हैं, कुछ पोषक तत्वों की कमी के लक्षण बीच की पत्तियों पर सबसे पहले आते हैं। तो नत्रजन अगर कम है तो सबसे पहले नीचे की पत्ती है वो पीली पड़ने लगती है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, जड़ों का विकास रुक जाता है, और जैसे ही निचली पत्ती पीली पड़ने लगे आप पहचान जाएंगे कि नत्रजन कम हो सकता है। ऐसे ही फास्फोरस भी एक आवश्यक तत्व है। फास्फोरस की कमी पर पौधे की निचली पत्तियों पर, तने पर बैंगनी रंग आ जाता है, पत्तियों का जो रंग है वो हल्का सा बैंगनी हो जाता है, इससे पता चलता है कि ये फास्फोरस की कमी हो सकती है। पोटेशियम की कमी पे हमने देखा है कि पत्तों का जो बाहरी किनारे हैं वो पीले पड़ के सूखने लगते हैं या लाल रंग के हो जाते हैं, और वो भूरे भूरे से जले जले से हो जाते हैं। यानी कि पत्ती के नीचे वाले पत्ते, पौधे की पत्ती के नीचे वाले जो पत्तियां हैं पौधे की और उनके किनारे अगर सूख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये पोटाश की कमी के लक्षण हैं। पौधे के मध्य भाग पे जो पत्तियां होती हैं उनमें मैग्नीशियम, जिंक, इनके कमी के लक्षण जनरली दिखाई देते हैं। पौधे की जो ऊपर की पत्तियां होती हैं उन पे कैल्शियम के, बोरोन के, तांबा के, मैग्नीज के, गंधक के, ये लक्षण सबसे पहले आते हैं। अगर कैल्शियम की कमी है तो नए पत्ते हल्के पीले से काले रंग के या मुड़े हुए हो जाते हैं, प्यालीनुमा हो जाते हैं। अगर बोरोन की कमी है तो बढ़ती हुए जो कलिकाएं हैं, सिराएं हैं, वो गुच्छे में बदल जाती है, मर जाती हैं। अगर तांबे के लक्षण हैं तो नई पत्तियां मुरझा जाती हैं या हल्की हरी हो जाती हैं। अगर मैग्नीज के लक्षण हैं तो नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है। गंधक के लक्षण हैं तो नए पत्ते पीले पड़ते हैं, सिराएं उनकी हरी रहती हैं, वो पीली नहीं होती हैं। इस तरीके से अपना जो खेत है वो बता देता है कि हमारा खेत के अंदर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है या नहीं, पोषक तत्व जो पौधे को चाहिए वो आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको जाननी है, आपको पहचाननी है, ताकि आपको आपका जो फसल है वो अच्छी पैदावार आपको दे सके। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी कि मिट्टी की जांच करवा करके आप अपने खेत को पहचानें कि उसके पोषक तत्व कितने हैं और कौन से पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हैं और कौन से पोषक तत्व कम मात्रा में हैं। आइएगा अब चलते चलते आपको मौसम की जानकारी दे देते हैं। मौसम के पूर्वानुमान में अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड और आज का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। मौसम आज साफ रहने की भी पूरी पूरी उम्मीद है। किसान साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने की ओर अग्रसर है। हमारे स्टूडियो की घड़ी की सुइयां हमें आपसे बात करने की अब इजाज़त नहीं दे रही हैं। आप प्रतिदिन सुनते रहिएगा आकाशवाणी, ग्राम भारती, किसानवाणी, और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। हमें इजाज़त दीजिएगा। जय जवान, जय किसान।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती आकाशवाणी अलवर का। ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है फिल्म संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी फरार, गीत राजेंद्र कृष्ण का था और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।

फिल्म थी खूबसूरत और आप सुन रहे थे कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति को। गीत के बोल लिखे गुलजार ने और संगीत से सजाया जतिन ललित ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी आरजू। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी साहब ने और संगीत सजाया अनु मलिक जी ने।

अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति को अभी आपने सुना, फिल्म थी बागी। गीत समीर का था और संगीत था आनंदराज आनंद का।

गीत और संगीत राजेश रोशन का था और फिल्म थी पापा कहते हैं। इस गीत को गा रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक।

0: شهوه.
1: هاي غم کا فسانہ بن گیا اچھا
0: اچھا جی.

आनंद बख्शी का लिखा हुआ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया ये गीत हमने आपके लिए लिया मनचली फिल्म से, और इस गीत को गा रहे थे किशोर कुमार।

नक्श लायलपुरी और का लिखा हुआ और खयाम का संगीतबद्ध किया ये गीत हमने आपके लिए लिया फिल्म दर्द से। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोंसले की।

कुमार सानू और आशा भोसले के गाए सलामी फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा ये फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। लोक संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं हनुमान सहाय शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप सुन रहे हैं हनुमान सहाय शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये अगला लोकगीत, थारी गाड़ी गाड़ी मन में आवे रे।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे हनुमान साहिब शर्मा और साथियों के गाए लोक गीत। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक

0: सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नविपिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया NR कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोकनगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपद क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति J.D. वेन्स की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
3: There are three parties that have got licenses.
4: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
5: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
6: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए IT विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
7: सेमीकंडक्टर जर्नी,
8: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय

0: चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूर संचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
1: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
2: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
4: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
3: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने पुदुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. BJP wins assembly polls for Rajinagar and Nandigram constituencies in West Bengal. In Tamil Nadu, ruling TVK wins assembly by polls for Madurantakam and Dharapuram seats. All India NR Congress retains Thattan Chowri assembly.

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे सनम फिल्म का गाना। मजरूह सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं ओ पी।

ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिये मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिल

0: सिर्फ विविध भारती पर, विविध भारती आपका जीवन संगीत।
1: आज के फनकार।

संगीतकार रविंद्र जैन की धुनों में रंग है भारतीयता का। वाद्यों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग सुनाई देता है रविंद्र जैन की धुनों में। गीत की भावभूमि चाहे जो हो, रविंद्र जैन का संगीत उस मूड और दृश्य के साथ न्याय करता है। इसीलिए गीत को पर्दे पर न देखें तो भी उसे सुनते हुए हम उसका भरपूर आनंद ले पाते हैं।

28 फरवरी सन 1944 को अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन को युवावस्था से ही संगीत में रुचि थी और वो भक्ति संगीत की रचनाएं गाया करते थे। संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने ली पंडित जी एल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम से। रविंद्र जैन की रचनात्मक सक्रियता का एक लंबा समय बीता कोलकाता में और फिर संयोग बना मुंबई आने का। सन 1972 के जनवरी महीने में रविंद्र जैन ने बतौर शुरुआत की स्वतंत्र रूप से संगीत देने की। फिल्म जगत में अपने करियर का पहला गीत उन्होंने महान गायक मोहम्मद रफी के स्वर में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म रिलीज न हो पाई। खैर, नसीब का पासा पलटा और 80 के दशक में रविंद्र जैन को उन फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला जो कामयाब होने के साथ साथ बेहद लोकप्रिय भी हुई। उस दौर की ये मशहूर फिल्में हैं चोर मचाए शोर।

रविंद्र जैन की प्रतिभा इस मायने में दूसरे संगीतकारों से अलग है क्योंकि रविंद्र जैन फिल्मों में संगीत देने के साथ साथ गीत भी लिखते रहे और उन्होंने कई गीत गाए भी।

0: भारत जाए।
1: रविंद्र जैन संगीत के मर्मज्ञ तो थे ही, भाषा और व्याकरण पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। उनके संगीत में विशुद्ध भारतीय रंग था, इसलिए उसमें भारतीयता की आत्मा झलकती है। रविंद्र जैन उर्दू शायरी और कविता के गहरे जानकार थे। एक उम्दा संगीतकार होने के लिए ये जरूरी भी है। वो भारत की सांस्कृतिक धार्मिक लोक परंपरा की गहरी समझ रखते थे, इसलिए विषयानुकूल संगीत सृजन करने में उन्हें महारत हासिल थी।

0: आशियां।
1: रविंद्र जैन की कई धुनें ऐसी हैं जो जब भी सुनाई पड़ती हैं अपने जादुई असर से हमें बांध लेती हैं। उनके शब्दों में, गीतों में कभी भी ओछापन या सस्ती तुकबंदी नहीं रही। रविंद्र जैन किसी भाव की मर्यादा क्या होगी इसके प्रति सजग थे। उनके गीतों में लालित्य है, भाषा और भावों का सौंदर्य है, और सौंदर्य है आंचलिकता का।

0: व्याकरण की मर्यादा तोड़ते, पहचान के लिए छटपटाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भौंडे फूहड़ प्रयोगों में, सस्ती तुकबंदियों में करहाते, शिष्ट से अशिष्ट होते, चीखते चिल्लाते, शोर करते और स्मृतियों से स्खलित होते गीतों की भीड़ में रविंद्र जैन के रस भरे, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण गीत लगातार हमें मंत्रमुग्ध करते चले जाते हैं।
1: ओ ठंडे ठंडे पानी।

रविंद्र जैन ने एक ओर जहां फिल्म जगत के प्रतिष्ठित बैनर राजश्री की कई स्तरीय फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा, तो वहीं उन्होंने शोमैन राज कपूर के प्रतिष्ठित बैनर की फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

रविंद्र जैन की संगीत प्रतिभा केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी परिधि और विराट थी। रविंद्र जैन ने गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम, भोजपुरी, बांग्ला, उड़िया, राजस्थानी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी संगीत दिया। इससे पता चलता है कि क्या थी उनकी प्रतिभा की ऊंचाई। हिंदी सिने संगीत को गायक येसुदास का अद्भुत स्वर मिला रविंद्र जैन जी के ही कारण। रविंद्र जैन गायक येसुदास को भारत का स्वर कहते थे। येसुदास जी ने रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में गाए कुछ बेहद लोकप्रिय और यादगार गीत।

0: आज से पहले।
1: संगीत और अपना काम रविंद्र जैन के लिए पूजा की तरह था। फिल्म सौदागर के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इस हृदय विदारक समाचार के मिलने के बाद भी रविंद्र जैन पूरे समर्पण से रिकॉर्डिंग करते रहे। भीतर से बहुत विचलित, किंतु बाहर से वो यूं प्रदर्शित करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिल्म सौदागर रविंद्र जैन के सुरीले संगीत का एक और उदाहरण है।

फिल्मों के अलावा रविंद्र जैन ने कई गैर फिल्मी रचनाओं को भी संगीतबद्ध किया। इनमें भक्ति रचनाओं के अलावा कई दिलकश गजलें भी शामिल हैं। रविंद्र जैन ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अनेक लोकप्रिय धारावाहिकों को भी अपने संगीत से संवारा। इनमें से कुछ के नाम हैं अलिफ लैला, इतिहास की प्रेम कहानियां, लवकुश, दादा दादी की कहानियां और

कुछ प्रसिद्ध बैले कृतियां हैं महालक्ष्मी, दुर्गा, नृत्य मालिका, रामायण, कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण। रविंद्र जैन के संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं नदिया के पार, सौदागर, चित्तचोर, गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तपस्या, पहेली, हिना, राम तेरी गंगा मैली, पति पत्नी और वो, फकीरा और विवाह।

एक टेलीविजन चैनल के संगीत कार्यक्रम में उन्होंने महागुरु का दायित्व भी संभाला था। उनकी शायरी का एक दीवान भी प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था उजालों का सिलसिला। उनकी जीवनी का शीर्षक है सुनहरे पल। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से साहित्य और संगीत में अपने अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी जीवन संगिनी बनकर आई दिव्या जैन। रविंद्र जैन जी के सुपुत्र का नाम है आयुष्मान। 9 अक्टूबर सन 2015 को संगीत के साधक रविंद्र जैन ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। रविंद्र जैन सदैव याद किए जाएंगे अपने मधुर संगीत के लिए, मीठे गीतों के लिए।

0: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन पर केंद्रित ये कार्यक्रम। प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिरों में आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल की कलम से जब निकलते हैं चाहतों के किस्से, तो वो बातें छपती हैं दिल की गहराइयों में। अरमानों के बादल रचते हैं नित नई इबारत प्रेम की। मन डूबने लगता है एहसासों की गहराइयों में, उमड़ते हैं जज्बातों के सैलाब, और नजर आता है यादों में बस वही चेहरा।

प्रेम की मासूम चाहतों में क्या कुछ किए जाते हैं हम, लिखते हैं तेरा नाम कभी कभी छुपाते हैं हम। दिल की बातों को कह पाना कहाँ आसान रहा, लिखने लगूं तो शब्द भी पढ़ते हैं कम। जो कहना था तुमसे मिलकर हमें, वो जज्बात कागज में कहाँ समाएंगे, कभी मिलो।

भूली जो प्यार की पहली पाती, हुए मेरे पैर हवा अब। कभी उड़ती हूँ यहाँ, कभी उड़ती हूँ वहाँ, कदमों ने मेरे छू लिया जैसे आसमां। न होश खुद का न खबर जमाने की, कहने लगी सखियाँ मेरी हुई तो उस दीवाने की। इश्क मोहब्बत प्रेम की पींगे खेलने लगी हैं दिल से, अब राज ये छुपाना मुश्किल हुआ है इस दिल से।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। भेज तो दिया दिल का पैगाम उन्हें, न जाने क्या लिखा इस दिले नादान ने। अब घबराते हैं अरमान, डरते हैं खुदा जान उन्हें। प्रेम में नाराजगी न मिले कहीं अंजाम हमें। ये प्रेम की पाती लिखना कहाँ आसान रहा, जब तक न मिले जवाब उनका दिल रहे परेशान मेरा।

आया है खत तो देंगे जवाब भी हम, कैसे कह दें किसी अनजान से अपने दिल की ये बात हम। कहनी तो थी उनसे लाखों बातें दिल की, मगर किसी और से कहते वो बातें झुकती हैं शर्म से नजर। लिखा था मेरे सांवरिया ने, जानते हैं वो मेरे दिल की हर बात, लिखा सलाम छुपाए हैं उसमें ही दिल के सारे जज्बात।

लिख तो दिया था सलाम खत में छुपा कर दिल के जज्बात, वो क्या समझेंगे मेरे विरह की ये रात, क्या जान जाएंगे मेरी उलझी लटों की उलझने, मिलेंगी आंखों की कोर में छुपी उनके इंतजार की वो रात, न जाने कब आएंगे साजन इस गली, उनके बिना न दिन भले लगे न लगी भली रात।

ये है विविध भारती। ढलती जाए रात,

0: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
3: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
2: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
5: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं, जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
4: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
5: जो हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
4: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मधुरांतकम में सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में